0: सभा की शुरुआत करते हैं अनमोल विचार के साथ।
1: करुणा वो भावना है जो मनुष्य को मानव बनाती है। दूसरों के दुख को समझना और मदद का हाथ बढ़ाना, यही सच्ची इंसानियत है। जब समाज में करुणा होती है तो नफरत मिटती है और प्रेम का वातावरण बनता है। आइए हम अपने व्यवहार में करुणा को स्थान दें, क्योंकि जहाँ करुणा होती है वहीं सच्ची शांति और सुख बसता है।
0: अनमोल विचार के पश्चात अब आरंभ होता है हमारा भक्ति रस का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। सबसे पहले सुनिए मातृ वंदना।

0: ये है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। सुबह के 5:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए एग्री टिप्स।
1: आइए आज कुछ बातें करते हैं डेयरी प्रबंधन में नवजात बच्चों के देखभाल के संदर्भ में। जन्म के तुरंत बाद बछड़े या बछिया के मुंह और नाक को साफ करें और गाय को बच्चे को अच्छी तरह से चाट कर सुखाने दें। इससे नवजात बच्चों को सांस लेने और उनके शरीर में रक्त संचार में भी मदद मिलती है। अगर गाय बच्चे को ठीक ढंग से नहीं चाटती है तो किसी सूखे कपड़े से आप खुद बच्चे के शरीर को रगड़कर सुखाएं। अगर नवजात बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उसकी छाती को हाथों से हल्के से दबाएं और छोड़ें। नाक में अगर म्यूकस फंस गई है तो उसे निकालने के लिए बच्चे के पिछली टांगों को पकड़कर ऊपर उठाएं। इससे नाक और मुंह में अगर कुछ फंसा है तो वो बाहर निकल जाएगा और बच्चे को सांस लेने में आसानी होगी। पशुओं के नवजात बच्चे के गर्भनाल को शरीर से 2 से 2.5 इंच छोड़कर कीटाणु रहित धागे से बांध दें और गांठ से 1 सेंटीमीटर छोड़कर काट दें और उस पर कोई एंटीसेप्टिक लगा दें। नवजात बच्चे को रखने की जगह बिल्कुल साफ और सूखी होनी चाहिए। इसके साथ ही हवादार भी होना चाहिए। पशुओं के नवजात बच्चे को माँ का पहला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, पीने देना चाहिए। इससे बच्चों में रोग प्रतिरोध की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है। साथ ही कोलेस्ट्रॉम में मौजूद विटामिन और प्रोटीन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होता है। कम से कम 3 दिनों तक बच्चे को कोलेस्ट्रॉम पिलाना चाहिए। सामान्यतः जन्म के 1 घंटे के अंदर ही नवजात बच्चे खुद खड़े होकर दूध पीने लगते हैं। ऐसा ना कर सकने वाले कमजोर बच्चों को दूध पिलाने में हमें मदद करनी होगी। जन्म के तुरंत बाद पशुओं के नवजात बच्चे का वजन ले लेना चाहिए। नवजात बच्चों को दिन में 2 बार तथा कमजोर बच्चों को 3 बार दूध पिलवाएं। 6 से 8 सप्ताह तक बच्चों के शारीरिक भार का 10% के हिसाब से और अधिकतम 5 से 6 लीटर दूध बच्चों को पिलाना उचित रहता है। 1 महीने बाद से बच्चों को काफ स्टार्टर देना ठीक रहता है। 4 महीने के बाद हरा चारा दिया जा सकता है। जन्म के 7 से 10 दिनों के भीतर ही बच्चों का डीहॉर्निंग यानी सींग हटा देना चाहिए। इसके लिए कास्टिक सोडा, गर्म रॉड या अन्य तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। 1 महीने के अंतराल पर कीड़े मारने की दवा और टीके पशु चिकित्सक के सलाह के अनुसार दिया जाना चाहिए। जन्म के 2 से 3 सप्ताह बाद से बच्चों को साफ उबला हुआ पानी पीने के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। नवजात बछड़े या बछिया को 3 महीने बाद माँ से अलग कर समूह में रखना चाहिए और 9 महीनों बाद बछड़ों को बछिया से अलग कर दें। नवजात बच्चों में 1 महीने के अंदर निमोनिया, डायरिया और कीड़ों के कारण मृत्यु होने की आशंका रहती है। इससे बचने के लिए बच्चों का आवास साफ सुथरा, सूखा, गर्म और हवादार होना चाहिए। बछड़ों का बधियाकरण 8 से 10 सप्ताह की आयु में कर देना ठीक रहता है। बच्चों के शरीर को हमेशा साफ करते रहना चाहिए और सूखा रखना चाहिए ताकि किसी प्रकार के फफूंद का संक्रमण न होने पाए। पशुओं के बच्चों को मिनरल मिक्सचर या मिनरल ब्लॉक्स देने से उनमें होने वाले खनिज की कमी को रोका जा सकता है। इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और बढ़ोतरी अच्छी होती है।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एग्री टिप्स।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-5 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्क द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारत के व्यक्तियों की डीएनए प्रोफाइलिंग कराएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में रहने वाले संबंधी कुछ सुविधाओं पर अपने जैविक नमूने एकत्र करवाकर डीएनए प्रोफाइल तैयार करवा सकते हैं। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। डीएनए प्रोफाइल नेपाली अधिकारियों द्वारा आवश्यक प्रारंभिक जानकारी के साथ अज्ञात शवों से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल से तुलना के लिए dnacodis@nepalpolice.gov.np पर ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या ना खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकियां और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार किया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी जॉली बॉय आज सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए प्रस्थान करेगा। जलियान कल 5 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी भारत सीमा कल 5 तारीख को रात 8 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर जाएगा। जलियान अगले दिन 6 तारीख को दोपहर बाद 2 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कैमल भी लिटिल अंडमान की यात्रा पर आज रात 9 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। वापसी कल 5 तारीख को सुबह 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बुका आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा और आज ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप तथा 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी बाराटांग आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप जाएगा तथा 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप तथा 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी स्टेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानी लक्ष्मी आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप जाएगा और कल 5 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी बम्बुका कल 5 तारीख को सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए प्रस्थान करेगा। जलियान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कमोटा कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा। वापसी कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। अपनी अगली यात्रा पर एमवी कमोटा कल ही दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा। वापसी कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्टेट आइलैंड स्वराज द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। वापसी कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी पाराटांग कल सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्टेट आइलैंड कदम तला व लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत जाएगा। जलियान अगले दिन 6 तारीख को सुबह 7 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रंगत कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा और कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप तथा 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल 5 तारीख को दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलियान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप तथा 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। और एमवी रानी चंगा कल 5 तारीख को शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप जाएगा और अगले दिन 6 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा।

0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सुबह के 6:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष

प्रिय श्रोताओं को सुमित पवन बेक का नमस्कार। दोस्तों, मुस्कान, एक छोटी सी मुस्कान कितनी बड़ी खुशी दे सकती है, इसका अंदाज़ा शायद वही लगा सकता है जिसने कभी किसी उदास चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की हो। मुस्कान के लिए ना किसी भाषा की ज़रूरत होती है और ना ही किसी खास मौके की, यह बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती है। किसी किसी की मुस्कान दिल को अपना बना लेती है, तो कभी मुश्किल समय में एक छोटी सी मुस्कान हमें हिम्मत दे जाती है। दोस्तों, किसी खास इंसान की मुस्कान में एक अलग ही जादू होता है। कभी वह मुस्कान पहली मुलाकात की याद बन जाती है, तो कभी बिना किसी वजह के हमारे चेहरे पर भी मुस्कान ले आती है। प्यार में अक्सर शब्दों से ज़्यादा किसी की आंखें और मुस्कान बातें करती है। एक चुपचाप दी गई मुस्कान कई अनकहे जज्बातों को बयां कर देती है, और जब कोई अपनी मुस्कान से हमारे दिल में जगह बना ले तो उस मुस्कान को बार बार देखने का मन करता है।

दोस्तों, मुस्कान सिर्फ खुशी की रोशनी नहीं होती। कई बार इंसान अपने दर्द को छुपाकर भी मुस्कुराता है। जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, चेहरे पर बनी एक मुस्कान यह एहसास दिलाती है कि उम्मीद अभी बाकी है। यही मुस्कान हमें मुश्किल परिस्थितियों से लड़ने और आगे बढ़ने की ताकत देती है। किसी की चेहरे की मुस्कान देखकर हमारा मन भी हल्का हो जाता है। शायद इसलिए मुस्कान को दिल की सबसे खूबसूरत भाषा कहा जाता है।

0: हमारा दिल है।
1: दोस्तों, कुछ मुस्कानें ऐसी होती है जिनमें बनावट नहीं होती। बच्चों को भोली मुस्कान, किसी अपने की सादगी भरी मुस्कान या किसी मासूम चेहरे पर आई हल्की सी मुस्कान, ये सब हमारे दिल को छू जाती है। ऐसी मुस्कान के पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, बस एक मासूमियत होती है जो सामने वाले के चेहरे पर भी खुशी ले आती है। और जब किसी की यही भोली मुस्कान हमारी यादों का हिस्सा बन जाए तो वह मुस्कान हमेशा दिल के करीब रहती है।

0: दोस्तों, आज की इस खूबसूरत मुलाकात में हमने जाना कि मुस्कान कितनी अनमोल होती है। एक मुस्कान किसी के चेहरे की रोशनी बढ़ा सकती है, किसी उदास दिल को सुकून दे सकती है और कभी कभी किसी अजनबी को भी अपना बना सकती है। इसलिए मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास के लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने का सबसे आसान तरीका है एक सच्ची मुस्कान। इसी खूबसूरत मुस्कान के साथ मैं सुमित पवन बेक आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की 391वीं कड़ी।

लंका से विदा होने की घड़ी है। पुष्पक विमान उत्तर दिशा में उड़ रहा है। ऊंचे सिंहासन पर सीता सहित श्री राम विराजमान हैं। वे जनक नंदिनी को वे स्थान दिखाते हैं जहां मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण आदि का वध हुआ, वो स्थल जहां से सेतु बांधा गया, वो भी जहां रामेश्वर महादेव की स्थापना की गई।

श्रोताओं, अभी आप रामचरित मानस कान की 391वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर, भूपेंद्र सिंह और अनुराधा पौडवाल, तथा संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है, लीजिए अब सुनिए गांधी चर्चा।

नमस्कार श्रोताओं, गांधी चर्चा में बातें शांतिदूत गांधी की। गांधी जी ने कस्तूरबाई के साथ भारत यात्रा शुरू कर दी। वह रेल के तीसरे दर्जे में यात्रा करते थे। वह शहर, कस्बे और गांवों में गए। जनता की गरीबी ने गांधी जी का मन छू लिया। वे भारतीय जनता की तत्पर सेवा करने के उपाय सोचने लगे। उन दिनों कांग्रेस भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन गए। कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वे कलकत्ता गए। सम्मेलन में उन्हें ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाग लेने वाले अधिकतर लोग पश्चिमी तौर तरीके के कपड़े पहने हैं। वे अंग्रेजी बोलते थे। उनके सोचने का ढंग भी पश्चिमी था। गाँव से आए प्रतिनिधि सब चुप रहते थे। अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि जिन शिविरों में ठहरे थे, वहां के शौचालय बहुत गंदे थे। चारों ओर दुर्गंध फैली थी। बस गांधी जी ने बाल्टी और झाड़ू ढूंढ निकाली और शौचालयों की सफाई में जुट गए। जब वे सफाई कर रहे थे, एक आदमी ने उन्हें पहचान लिया और उनसे पूछा, गांधी जी, आप शौचालय क्यों साफ कर रहे हैं? ये तो हरिजनों का काम है। गांधी जी ने नाराज होकर कहा, हाँ क्यों, ऊंची जात वालों ने इस संस्था को गंदा और ना छूने लायक बना दिया है। ये कहते हुए उन्होंने और पानी डाला व झाड़ू से जमीन रगड़ने लगे। वे तब तक रगड़ते रहे जब तक शौचालय एकदम साफ ना हो गया। अधिवेशन के बाद गांधी जी बम्बई आ गए और वकालत करने लगे। वकालत शुरू ही की थी कि उनके पास नाटाल से उनके एक भारतीय मित्र का पत्र आया। गांधी जी, इंग्लैंड से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि यहाँ के भारतीयों की ओर से आप ही हमारा मामला उनके सामने रखें। आपके आने की प्रतीक्षा है। गांधी जी झटपट तैयार हुए और पानी के जहाज से नाटाल दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। नाटाल में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने उनका स्वागत किया। गांधी जी भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता थे। वे अंग्रेज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मिले। मुलाकात निरर्थक रही। जब वे अपने घर वापस आए, उन्हें एक पत्र मिला। अब ट्रांसवाल में रहने वाले

आप ही हमारा मामला उनके सामने रखे, आपके आने की प्रतीक्षा है। गांधी जी झटपट तैयार हुए और पानी के जहाज से नाटाल दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। नाटाल में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने उनका स्वागत किया। गांधी जी भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता थे। वे अंग्रेज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मिले। मुलाकात निरर्थक रही। जब वे अपने घर वापस आए, उन्हें एक पत्र मिला। अब ट्रांसवाल में रहने वाले भारतीयों ने उन्हें तुरंत बुलाया था। वह जल्दी से ट्रांसवाल पहुंचे। उन्होंने वहां भी भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया और अंग्रेज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से फिर भेंट की। यहां भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने उनसे उदासीन बर्ताव किया। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों ने गांधी जी से प्रार्थना की, गांधी जी अब आप यहाँ ठहर जाइए, हम भारतीयों के समान अधिकार के लिए संघर्ष करें। गांधी जी उनकी बात मान गए। उन्होंने कस्तूरबाई और बच्चों को भी दक्षिण अफ्रीका बुला लिया। कस्तूरबाई ने सबसे बड़े बेटे को पढ़ाई पूरी करने के लिए भारत में ही छोड़ दिया और तीनों छोटे बेटों के साथ दक्षिण अफ्रीका आ गई। गांधी जी ने सबका स्वागत किया। गांधी जी नाटाल में अच्छी तरह जम गए थे। उन्होंने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू कर दिया। वे अपने विचार व्यक्त करने के लिए बराबर लेख लिखते थे। उनका एक ऑफिस नाटाल में था और दूसरा ट्रांसवाल में जोहानसबर्ग में था। अब उन्होंने सोचा वे ऐसा स्थान बनाए जहां उनके सब अनुयायी एक साथ रहकर सादा जीवन बिता सके। गांधी जी ने 100 एकड़ जमीन प्राप्त की और उन्होंने फिनिक्स में एक फार्म की स्थापना की। ये फार्म डर्बन से 14 मील दूर था। फार्म के चारों तरफ गन्ने के खेत थे, एक मीठे पानी का सोता भी था। गांधी जी और उनके मित्रों ने अपने परिवारों के लिए 8 छोटे छोटे छप्पर वाले घर बनाए। फिनिक्स फार्म में रहने वालों को अपने लिए स्वयं सोते से पानी भर कर लाना पड़ता था। सुबह सुबह वहाँ के बच्चे गेहूं से आटा पीसने में अपने माता पिता की सहायता करते। सामुदायिक रसोई घर में भोजन बनवाने में भी बच्चे मदद करते थे। एक बड़े हॉल में छापा खाना लगाया गया। इसी में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र छापा जाता था। बैठने के लिए कुर्सी मेज के स्थान पर फर्श पर चटाइयां बिछी थी। रोटी पकाने के लिए गांधी जी ने एक खास तरह का तंदूर बनाया जिसमें गेहूं के आटे की डबल रोटी बनाई जाती थी। भारी काम करने के लिए एक नौकर रखा गया, लेकिन उसे भी आश्रम निवासियों की तरह ही माना जाता था। इतवार को सब आश्रम निवासी गांधी जी के साथ मिलकर प्रार्थना करते थे। वे सब एक साथ गीता के श्लोक, कुरान की आयतें और बाइबल के धर्म गीत गाते थे। गांधी जी के घर में उनके परिवार के सभी सदस्य बारी बारी से घर का काम करते थे। गांधी जी स्वयं अपने कपड़े धोते थे और सबसे भी ऐसा ही करने को कहते थे। वे शौचालय भी साफ करते थे और दूसरों से भी करवाते थे। और जब कभी वह घर के शौचालय को गंदा देखते तो स्वयं उसकी सफाई कर देते। अब लोग उन्हें सफाई करने वाला कहकर बुलाने लगे। जब कभी उन्हें कोई सफाई करने वाला कहकर पुकारता तो उनको बड़ा मजा आता। कस्तूरबाई अपने पति के नए नए प्रयोगों से अक्सर परेशान हो जाती। एक बार गांधी जी के मित्र उनके घर में ठहरे। जब वे शौचालय होकर आए तो गांधी जी ने कस्तूरबाई से कहा कि वे शौचालय साफ कर दें। कस्तूरबाई चिढ़ गई, बोली मैं नहीं साफ करूंगी। गांधी जी ने उनका हाथ पकड़ा और चिल्लाकर बोले मेरा घर छोड़कर अभी चली जाओ। कस्तूरबाई ने पति की ओर देखा और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह बोली आप मुझे विदेश में घर से निकाल रहे हैं जहां मुझे कोई आसरा देने वाला भी नहीं है। गांधी जी का क्रोध ठंडा हो गया। उन्होंने कस्तूरबाई से क्षमा मांगी। इसके बाद से वे कभी किसी से बुरी तरह नहीं बोले। गांधी जी ने गंभीरता से सोचा कि पहले उन्हें अपने पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने भोजन नियंत्रण से की। उन्होंने चाय व कॉफी छोड़ दी। वे जब तक उपवास रखने लगे और उपवास में पानी भी ना पीते। किसी किसी दिन वे केवल फल

दिखाकर रह जाते। उन्हें विश्वास हो गया था कि प्राकृतिक चिकित्सा सब रोगों का इलाज है। एक बार जब वे बीमार पड़े, उन्होंने केवल प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग किया। इसमें जल चिकित्सा, सूर्य स्नान और उपवास से उपचार होता था। वे स्वस्थ हो गए। तो श्रोताओं, गांधी चर्चा में आज बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। अब सुनिए मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार जनसेवाओं तथा मछुआरों के लिए कोई चेतावनी नहीं है। कल सुबह तक के मौसम के बारे में बताया जाता है कि द्वीपों के एक आध स्थानों पर हवाएं चलेंगी और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 7:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम देश रागनी और ठीक इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर वार्ता सुनेंगे, साथ ही कुछ फिल्मी गीतों का आनंद भी ले पाएंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर फनकार होंगे नीना मेहता, राजेंद्र मेहता, तलत अजीज और रूप कुमार राठौर। सुबह 9:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम तराने सुहाने। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर पंडित जितेंद्र अभिषेकी का गायन प्रसारित किया जाएगा। दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग सुनवाई जाएगी सुबह 10:00। दिन में 11:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1365वीं कड़ी। 11:30 पर निकोबारी कार्यक्रम के तहत लोक गीत सुनवाए जाएंगे। तेलुगु में दोपहर 12:00 युवाओं के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी। 12:30 पर मलयालम में जन्माष्टमी पर विशेष कार्यक्रम होगा। महफिली कव्वाली कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 1:10 पर, कव्वाल होंगे असलम साबरी। 1:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होगी, जबकि FM 100.9 MHz चैनल पर स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे जिसमें आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स और 3:30 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यू ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा की शुरुआत होगी शाम 5:00 तमिल कार्यक्रम के साथ, जिसमें एक ही श्रोता के पसंद के गीत सुनवाए जाएंगे। बांग्ला कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 5:30 जिसमें आप सुन पाएंगे रविंद्र संगीत। शाम 6:00 कृषि जगत कार्यक्रम में कुमारी राखी से बातचीत का विषय रहेगा श्री कृष्ण के जीवन संदेश और उसकी महत्वता। समाचार तरंगिणी का समय रहेगा शाम 6:30। 6:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की तीसरी कड़ी प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 6:55 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 7:05। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं आप सुन पाएंगे 7:15 पर। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया आप सुन पाएंगे शाम 7:20 पर। युवा

में शाम 7:30 पर होगा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। रात्रि 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत, रोजगार समाचार व गौरव गान आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर, और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेशे आते हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, और रात्रि 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम करंट अफेयर्स, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जबकि रात्रि 10 बजे विविध भारती मुंबई से आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 MHz पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं जन सूचनाएं।

इसके तहत पहले सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा विमान 2937 आज दोपहर 12:05 पर श्री विजयपुरम पहुंचेगा और विमान संख्या 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए वापसी उड़ान भरेगा 12:40 पर।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया

0: जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: आइए श्रोताओं, एक नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर। सुबह 7:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम देश रागनी और ठीक इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर आप जन्माष्टमी पर वार्ता सुनेंगे, साथ ही कुछ फिल्मी गीतों का आनंद भी आप ले पाएंगे। सुबह 9:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम तराने सुहाने। श्रोताओं, इसी के साथ जन सूचनाएं समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।

नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ग्रामीण विकास निदेशालय की ओर से ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण के लिए अभियान शुरू किया गया है। इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया और अंडमान निकोबार प्रशासन ने टुगापुर नंबर 7 में स्टील ब्रिज के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी है। सुबह के समाचारों के साथ मैं अनामिका सेन गुप्ता। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म और उनकी शिक्षाएं भारत की सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत को नई दिशा देती है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाएं कठिन समय में सही निर्णय लेने और नैतिक मूल्य पर कायम रहने की प्रेरणा देती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि भगवद गीता कर्तव्य नैतिकता न्याय साहस और जीवन में संतुलन का मार्ग दिखाती है। पूरे देश के 7 द्वीप समूह में भी आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर द्वीपों के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डीके जोशी ने द्वीपवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का प्रतीक है, जिनका जीवन और शाश्वत शिक्षाएं मानवता को ज्ञान, नैतिक साहस और निस्वार्थ सेवा को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। श्रीमद् भगवद्गीता का कालजयी संदेश भक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना, सत्य का पालन करना और हर चुनौती का धैर्य के साथ सामना करना हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बना हुआ है। जन्माष्टमी के अवसर पर दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम की ओर से आज रात 11:25 से मथुरा और द्वारका से जन्माष्टमी उत्सव का सीधा प्रसारण किया जाएगा। ग्रामीण विकास

पंचायती राज संस्था और स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के तहत ग्रामीण युवाओं के लिए मुफ्त आवासीय और रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण के लिए अभियान शुरू किया गया है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 100% प्लेसमेंट सहायता प्रदान की जाएगी। ऐश्वर्य विज्ञान एजुकेशनल सोसाइटी नेल्लोर और फोर ओरियंट एजुकेशनल सोसाइटी कोलकाता के तहत विभिन्न ट्रेडों में 8वीं से 12वीं पास विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। पुरुष उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 35 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह के सदस्य AAY, BPL, PHH, मनरेगा और PMJAY के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण परिवार पात्र है। सभी प्रशिक्षण केंद्र दक्षिण अंडमान में स्थित होंगे। निदेशालय की टीमें ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर युवाओं को मार्गदर्शन और दस्तावेज प्रक्रिया में सहायता प्रदान करेंगी। इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी और नामांकन के लिए अपने संबंधित खंड विकास अधिकारी या ग्रामीण विकास निदेशालय से संपर्क कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपण और पुल निर्माण। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म X, YouTube, Facebook और Instagram पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अनुसार प्रक्षेपण के करीब 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह का जियोसिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-05 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी। इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। अंडमान निकोबार प्रशासन ने माया बंदर के टुगापुर नंबर 7 में 5,91,00,000 रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से एक स्टील ब्रिज के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। यह पुल ग्रामीणों और स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं की लंबे समय से चली आ रही मांग थी। इस पुल का निर्माण कार्य 12 महीनों की अवधि के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस स्टील ब्रिज के बन जाने से टुगापुर और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को काफी सुविधा होगी। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत द्वीप समूह के छात्रों के लिए मुख्य भूमि के संस्थानों में आरक्षित विभिन्न व्यावसायिक तकनीकी और गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को कहा गया है कि सरेंडर की गई सीटों के लिए परामर्श 11 सितंबर को सुबह 10 बजे से टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में रखा गया है। परामर्श में योग्यता सूची में शामिल सभी उम्मीदवारों को अपने सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों और आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्वयं उपस्थित रहना होगा। सरेंडर की गई सीटें सबसे पहले उसी श्रेणी से भरी जाएगी जहां से वे सरेंडर हुई है। यदि संबंधित श्रेणियों में सीटें खाली रहती है तो उन्हें मेरिट के आधार पर श्रेणी 5 से आवंटित किया जाएगा। यदि इसके बाद भी सरेंडर सीटें खाली रह जाती है तो परामर्श में उपस्थित नए पात्र उम्मीदवारों को मेरिट के अनुसार सीटें आवंटित की जाएगी। कैंबलबे स्थित गोविंद नगर के जिला परिषद सदस्य संजय कुमार सिंह ने मुख्य सचिव ज्ञानेश भारती से मुलाकात कर कैंबलबे की समस्याओं से अवगत कराया। बैठक में LPG की अनुपलब्धता, यात्री जहाज सेवा में कमी, नियमित हेलीकॉप्टर उड़ान, कार्गो जहाज कनेक्टिविटी और ग्रेट निकोबार में प्रस्तावित बड़ी विकास परियोजनाओं के लिए परिवहन और संचार सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने इस संबंध में जल्द से जल्द उचित कदम उठाने तथा समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।

0: छोलदारी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में कट पॉइंट स्ट्रक्चर HT पोल तथा HT एवं LT लाइन में मरम्मत कार्य किए जाने के कारण कल बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। SBFG फीडर से सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और टाइगर फीडर से सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली की कटौती की जाएगी। यह सभी कार्य मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगा। मध्योत्तर अंडमान पुलिस ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 200 लीटर अवैध लहन नष्ट किया है। बिलीग्राउंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत OP बादाम नाला की टीम ने गोविंदपुर के घने जंगल में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान लोहे के एक ड्रम में करीब 200 लीटर लहन बरामद हुआ, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने लोगों से अपराध या किसी भी अवैध गतिविधि की विश्वसनीय जानकारी निकटतम थाने या 100 और 112 नंबर पर देने की अपील की। सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ग्रामीण विकास निदेशालय की ओर से ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण के लिए अभियान शुरू किया गया है। इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया और अंडमान निकोबार प्रशासन ने टुगापुर नंबर 7 में स्टील ब्रिज के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 7:15 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम देशरागनी।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आज के देश रागनी कार्यक्रम में, जहां बातें होंगी हमारे देश की मिट्टी की, देश की संस्कृति की और उन वीर सपूतों की जिनके कारण हमारा तिरंगा शान से लहराता है। भारत केवल एक देश नहीं बल्कि भावनाओं का नाम है। यहाँ की मिट्टी में अपनापन है, हवाओं में संगीत है और हर दिल में बसता है हिंदुस्तान।

श्रोताओं, जब भी देश की सुरक्षा की बात आती है, हमारे वीर सैनिकों का साहस हमारे आंखों के सामने आ जाता है। देश की सीमाओं पर तैनात हमारे वीर सैनिक दिन रात देश की रक्षा करते हैं। उनके साहस, त्याग और समर्पण को हमारा शत शत नमन।

श्रोताओं, देश प्रेम कोई एक दिन की भावना नहीं, यह तो हमारे व्यवहार में, हमारे जिम्मेदारियों में और हमारे कर्मों में दिखाई देना चाहिए। आइए अपने भारत को ऐसा भारत बनाने का संकल्प लें जहां पर हर बच्चा सपने देख सके, हर युवा आगे बढ़ सके और हर नागरिक गर्व से कह सके कि हम हैं हिंदुस्तानी।

श्रोताओं, हम जहाँ भी रहे, जो भी काम करे, अपने देश का नाम रोशन करते रहिए। इसी संदेश के साथ अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 MHz पर यह है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। इस समय सुबह के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

0: नमस्कार श्रोताओं, सज गए हैं मंदिर, महक उठी है गलियां, क्योंकि आज आ रहे हैं हम सबके दुखों को हरने नंद किशोर। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान और आज मैं हूं आपके साथ सोनिया। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं। आइए आज के इस विशेष कार्यक्रम में चलते हैं गोकुल की गलियों में, मथुरा के कारागार में और कान्हा की उन मधुर लीलाओं की दुनिया में, जहां प्रेम, करुणा, साहस और कर्म का संदेश मिलता है। सुनते हैं जन्माष्टमी पर ये पुनः प्रसारित वार्ता।
1: भगवान श्री कृष्ण का चरित्र मानव को धर्म, प्रेम, करुणा, ज्ञान, त्याग, साहस व कर्तव्य के लिए प्रेरित करता है। भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को देश व विदेश में कृष्ण जन्म को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे कृष्ण का संपूर्ण जीवन विविध लीलाओं से युक्त है। श्री कृष्ण को इस युग में सबसे ज्यादा लोकप्रिय देवता माना जाता है। कई रूपों में पूजे जाने वाले कृष्ण को समाज के हर वर्ग के श्रद्धालुओं में सबसे ज्यादा स्वीकार्यता मिली। कृष्ण अकेले ऐसे देवता भी माने जा सकते हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में पूरे वर्ष भर अपने अपने तरीके से पूजे जाते हैं। कृष्ण का हर रूप पूजनीय है। श्री राम एवं श्री कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं, परंतु दोनों की प्रकृति और आचरण में काफी भिन्नता है। श्री राम ने कठिन से कठिन परिस्थिति में भी

मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया, वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। वहीं श्री कृष्ण का अवतरण विपरीत परिस्थितियों में हुआ। अपने आविर्भाव से स्वधाम गमन तक श्री कृष्ण ने इतनी विविधता के साथ तमाम लीलाएं की कि वे बन गए लीला पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लीलाधर कृष्ण की तुलना कभी नहीं हो सकती। हिंदुस्तानी पौराणिक कथाओं के मुताबिक कृष्ण का अवतार राम के 100 साल बाद हुआ था। इन 100 सालों में समाज की हर स्तर पर अवनति हुई। कृष्ण को राम की अपेक्षा कई अधिक कठिन सामाजिक राजनैतिक परिदृश्यों का मुकाबला करना पड़ा था। राम जहां अपनी दार्शनिक सोच और उसे लागू करने में एकदम स्पष्ट और पारदर्शी रहे, वहीं कृष्ण को अपने समय काल में दार्शनिक सिद्धांतों में व्यावहारिक बदलाव करना पड़ा था, क्योंकि उनके सामने विराट और जटिल समस्याएं खड़ी थीं। उन्होंने हमेशा सभी की संपूर्ण भलाई का विचार किया, तभी तो उनकी सारी चतुराइयों को नीतियां और छल को अन्याय के खिलाफ विवेकपूर्ण युक्तियां माना गया। पौराणिक ग्रंथों व कथाओं में भगवान श्री कृष्ण का लीला विलास अनंत है। जन्म लेते ही चतुर्भुज के रूप में प्रकट होकर फिर छोटा बालक बन जाना, कारागार के पहरेदारों का सो जाना तथा पिता वासुदेव जी की हथकड़ी, बेड़ी एवं दरवाजों का स्वयं खुल जाना, यमुना में बाढ़ आने पर भी रातों रात बालक श्री कृष्ण का गोकुल पहुंच जाना सामान्य बातें नहीं थी। अपनी छठी दिन में ही राक्षसी पूतना का शिशु श्री कृष्ण ने संहार किया। यशोदा माता को मुख के अंदर ब्रह्मांड दिखलाना, ब्रह्मा जी को सबक सिखाने के लिए गोप बालक और बछड़ों की नवीन सृष्टि करना, अक्रूर जी को मार्ग और जल के अंदर एक ही साथ दोनों जगह पर एक ही रूप में दर्शन देना तथा बालकृष्ण द्वारा काकासुर की गर्दन मरोड़कर उसे फेंक देना आश्चर्यजनक था। बचपन से ही श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीला में कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों का वध करना शुरू कर दिया। तृणावृत, केशी, अरुष्टासुर, बकासुर, प्रलंबासुर और धेनुकासुर जैसे बलवान राक्षसों को उन्होंने मार डाला। हयासुर, नरक, जंब, पीठ, मुर आदि असुरों का भी उन्होंने संहार किया। बाल्यावस्था में ही कालिया नाग के सहस्त्र फणों पर नृत्य करके उसे यमुना जी से भगा दिया। मात्र 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की छोटी अंगुली पर धारण करके मूसलाधार वर्षा से ब्रजवासियों की रक्षा की तथा देवराज इंद्र का घमंड चूर कर डाला। चीरहरण लीला के माध्यम से श्री कृष्ण ने गोपियों को यह समझा दिया कि जब तक जीवन अज्ञान के आवरण में रहेगा तब तक परमात्मा से उसका मिलन ना हो सकेगा। इस लीला का एक अन्य अभिप्राय जीव का देहाभिमान समाप्त करना है। श्रीकृष्ण की रासलीला का भी बड़ा गूढ़ अर्थ है। इसमें भोग विलास जरा सा भी नहीं है। रासलीला करके उन्होंने ये संकेत दिया कि जब जीव गोपी भाव धारण करके अपना सर्वस्व श्रीकृष्ण यानी ईश्वर को समर्पित कर देता है तब उन सर्वेश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। मथुरा लौटकर श्री कृष्ण ने कंस का वध करके माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। माता देवकी के आग्रह पर उन्होंने कंस के द्वारा मारे गए उनके 6 पुत्रों को उनसे पुनः मिलवाया। गुरु संदीपनी मुनि के मृत पुत्र को यमलोक से लाकर उसे वापस सौंप दिया। श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसे असंभव कार्य को आज तक कोई अन्य संभव नहीं कर पाया। जरासंध के वध के पीछे भी श्री कृष्ण की ही लीला थी। जब उन्होंने ब्रज के सोते हुए पुरवासियों को सहसा द्वारका पहुंचा दिया, इसी तरह जब पांडव धृतक्रीड़ा में सब कुछ हार गए तब दुशासन द्रौपदी को राजसभा के बीच खींच लाया और चीरहरण करने लगा। द्रौपदी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने उसके सम्मान की रक्षा की लीला रची। कलयुग के प्रारंभ होने के मात्र 30 वर्ष पहले मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के नंदीघोष नामक रथ पर सारथी के स्थान पर बैठकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाकर न सिर्फ उनका मनोबल बढ़ाया बल्कि उनकी विजय का मार्ग भी प्रशस्त किया। पांडव वंश की रक्षा के उद्देश्य से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पुत्र को जीवन दान दिया। महाभारत के युद्ध में ज्ञान योगी कृष्ण ने जीत का श्रेय अर्जुन और भीम को ही नहीं दिया

0: विनम्रता के साथ महाभारत से जुड़ी प्रत्येक महिला को उसकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहायता के लिए दिया। इसमें उनका संदेश निहित था कि यदि मूल्यों की पुनर्स्थापना कर सुधार की कोई बड़ी और महत्वपूर्ण योजना बनाना हो तो जरूरी है कि छोटी से छोटी बात पर भी ध्यान दिया जाए। कृष्ण की दिलचस्पी हमेशा ही समस्या के समाधान की रही, उसका श्रेय लेने की नहीं। श्रीमद् भगवद गीता महापुराण में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस देह से 125 वर्ष तक लोकहित में विविध लीलाएं की, वो देह भी अंत में किसी को नहीं मिली। कृष्ण कर्म को सर्वधर्म कहते थे, क्योंकि कर्म या कर्तव्य इंसानियत के तीन तत्वों को बढ़ाने में है, स्वाधीनता, पक्षपातहीनता और विश्व बंधुत्व। कृष्ण ने अपने कर्मयोग में इन तीनों मूलभूत तत्वों को शामिल किया। वे स्वयं कर्मयोगी थे, इसलिए उन्होंने स्वतंत्र, पक्षपात रहित और विश्व बंधुत्व का प्रदर्शन किया। वे व्यक्ति को पिता, पति, पुत्र और मित्र के तौर पर अपने स्वधर्म पालन करने पर महत्व देते थे। सनातन धर्म प्रत्येक व्यक्ति को छूट देता है कि वो परमात्मा के अपने प्रतीक का चयन कर ले। जो व्यक्ति अपने माता या पिता में इस परम परमेश्वर को देखता है वो भी श्रद्धालु है। इस तरह कृष्ण ने भक्ति के सिद्धांत में जो छूट दी वो असीमित है। श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। जगत गुरु बनकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए हमें गीता के रूप में जो उपदेश दिए हैं वे सदा समाज का मार्गदर्शन करते रहेंगे। वे निसंदेह लीला पुरुषोत्तम ही हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण की स्तुति में कहा गया है, हे देवताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण, आप साक्षात परमात्मा हैं। भक्तों के रक्षार्थ लीलाएं करने हेतु आप शरीर ग्रहण करते हैं। श्री कृष्ण का जन्मदिन संपूर्ण भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। मथुरा और वृंदावन में, जहां श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया, जन्माष्टमी की धूम देखने योग्य होती है। उनके जीवन की घटनाओं को झांकियों में प्रदर्शित किया जाता है और कृष्ण लीला नाटक के रूप में भी खेली जाती है। महाराष्ट्र में ऊंचाई पर दही की हांडी को लटका दिया जाता है और नवयुवकों की टोलियां पिरामिड बनाकर उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे इन द्वीपों में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। आप सबों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं।
1: श्रोताओं, अभी आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ये पुनः प्रसारित वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थे शिबू जॉर्ज। श्रोताओं, आज पूरा देश कन्हैया के स्वागत में पलके बिछाए बैठा है। जब भी श्री कृष्ण का नाम आता है तो सबसे पहले मन में एक नटखट बच्चे की तस्वीर उभरती है, जो अपनी मैया यशोदा को उंगलियों पर नचाता था। कभी मिट्टी खाना तो कभी गोपियों की मटकी फोड़ना, तो कुछ ऐसा ही गीत कर रहे हैं आपकी नज़र।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा एक छोटी सी अंतराल के बाद।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
3: बन गया बजट?
4: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
4: तो नई साड़ी ले ले।
3: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़ी गई।
3: जाओ भाई।
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र और कार्यक्रम चल रहा है गुड मॉर्निंग अंडमान। श्रोताओं, कान्हा सिर्फ माखन चोर या नटखट ग्वाले ही नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक भी हैं। उन्होंने सिखाया कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये संदेश हमें तनाव से दूर रहना सिखाता है।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

श्रोताओं, कान्हा का नाम लेते ही मन में प्रेम और भक्ति की एक मधुर धुन बजने लगती है। आज रात ठीक 12 बजे जब कान्हा का जन्म हो तो अपने मन के अंधकार को दूर करने का संकल्प जरूर लीजिएगा। आकाशवाणी की पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर आप सभी को जन्माष्टमी के पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GLSV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित और आवश्यक कक्षा में स्थापित कर दिया है और हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
0: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
3: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तहरी मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सूले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक शिष्टमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि

0: पाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके निकटतम जैविक रिश्तेदारों की डीएनए जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि रिश्तेदारों के जैविक नमूने कुछ निर्धारित केंद्रों पर लिए जा सकते हैं और प्रोफाइल तैयार की जा सकती है। फिर इस प्रोफाइल का मिलान नेपाल में मिले मृतकों के अवशेषों के डीएनए से कराया जाएगा। ये जांच नेपाल के अधिकारियों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप की जाएगी। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Update rahe, aage rahe. expert@airnewshindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण वाहक होगा। उन्होंने उद्योग से भारत की बढ़ती व्यापारिक साझेदारियों, बढ़ते घरेलू बाजार और विनिर्माण में वैश्विक बदलावों से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सीबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। भारत ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में रक्षा अताशे नियुक्त करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बेल्जियम ने इस वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 13 अरब डॉलर का है। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी

0: और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F-404IN-20 इंजनों की एक नई खेप भेजी है, जिससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। F-404 इंजन HAL और GE एरोस्पेस के बीच 2021 में हुए एक अनुबंध के तहत 99 पावर प्लांटों की आपूर्ति की जा रही है।
1: अपडेट रहे, आगे रहें। expert@airnewshindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है।

0: उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे।
1: हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी मथुरा वृंदावन की गलियों में हर तरफ आज यही शोर है। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहाँ रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर जन्माष्टमी का पर्व गुजरात में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है।
2: पवित्र नगरी द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। तड़के मंगला आरती के साथ शुरू हुआ पूजा अर्चना का क्रम पूरे दिन विविध भोग दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जारी रहेगा। उत्सव का मुख्य आकर्षण आज मध्यरात्रि की महाआरती होगी, जब बाल गोपाल के जन्म लेते ही पूरा मंदिर परिसर हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की के जयकारों से गुंजायमान हो उठेगा। वही प्रभु श्री हरि की प्रतिमा का नयनाभिराम श्रृंगार कर उन्हें दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया गया है। पूरे परिसर में भजन कीर्तन और कृष्ण लीला की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही है। द्वारका के अलावा राज्य के डाकोर के रणछोड़ राय जी और अरवली के श्यामला जी मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत की प्रगति दुनिया के लिए विश्वास का स्रोत, बेल्जियम के साथ समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। लोकसत्ता ने लिखा है, डायमंड से डिफेंस तक पहुंचा भारत बेल्जियम का रिश्ता। बकौल नवभारत टाइम्स, समझौते में रॉकेट, गोला बारूद, ड्रोन और एयर डिफेंस जैसी कई तकनीकें शामिल। अमर उजाला की सुर्खी है, अमरीका से द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अन्य से बेहतर टैरिफ पर अड़ा भारत। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया, प्रतिस्पर्धी देशों से कम टैरिफ मिलने पर ही समझौता अंतिम रूप लेगा। दैनिक जागरण सहित अधिकांश अखबारों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस बयान को प्रकाशित किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कानून के छात्रों का आचरण नियंत्रित करने का अधिकार नहीं। नालसर विवाद में अदालत ने कहा, अनुशासन का अधिकार शिक्षण संस्थान के पास। बकौल हिंदुस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के हवाले से लिखा है, पिछले एक वर्ष में 2 करोड़ बच्चों का हुआ ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, 11 लाख बच्चों की एआई जनरेटेड तस्वीरें साझा हुई। एआई को नहीं किसी रचना का रचयिता बनने का हक। राजस्थान पत्रिका ने भारतीय कॉपीराइट ने एआई सिस्टम दाबूस को रचयिता मानने से

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप चंद गजलों का लुत्फ ले रहे थे। आज के फनकार थे नीना मेहता, राजेंद्र मेहता, तलत अजीज और रूप कुमार राठौर।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने सुहाने। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनुराधा पौडवाल के गाए इस गीत से, जिसे लिखा हसरत जयपुरी ने, संगीत से संवारा अनु मलिक ने, और फिल्म का नाम है राधा का संगम।

लता मंगेशकर व शब्बीर कुमार के युगल स्वरों में आइए सुनते हैं प्यार झुकता नहीं इस फिल्म का गीत। एस एच बिहारी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए फिल्म किशन कन्हैया का गीत। आवाज़ें हैं मनहर साधना सरगम व साथियों की। इंदीवर की लिखी रचना, तर्ज बनाई राजेश रोशन ने।

श्रोताओं, और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म विदाई का गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गायिका है सुमन कल्याणपुर।

0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। श्रोताओं, अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले।
3: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया, जाओ भाई।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित जितेंद्र अभिषेकी का गायन। इनके साथ तबले पर सुभाष कामत, हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वलावालकर तथा तानपुरे पर मेघन श्रीखंडे व शेखर कंभोजकर ने संगति की है। तो सुनिए पंडित जितेंद्र अभिषेकी का गाया राग शिवमत भैरव। विलंबित रचना एक ताल में तथा द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित जितेंद्र अभिषेकी का गाया राग शिवमत भैरव सुन रहे थे। विलंबित रचना एक ताल में तथा द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध था। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 10 बजे हैं।

0: आइए सुनते हैं दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: अक्सर हम यही कहते हैं कि सेना का अर्थ है हमारे तमाम वो फौजी जो मैदान जंग में जाकर लड़ते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे ये फौजी सेना को सशक्त करते हैं, अपने साथियों को सशक्त करते हैं? अब आप पूछेंगे कैसे? वो ऐसे कि हमारे आज के जो गेस्ट है, मेहमान है, ये एक सोल्जर होने के साथ साथ एक मिलिट्री इंजीनियर भी हैं और इन्होंने सेना में रहते हुए असीम योगदान दिए हैं। तो आइए सर्वप्रथम सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान मेजर जनरल अशोक कुमार जी का। अशोक जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।
0: जी, जब भी हमारे इस कार्यक्रम में आप जैसी हस्तियां शिरकत करती हैं, पहुंचती हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरी ओर से यही रहता है कि वो कौन सी कैसी बात थी, कौन सी कैसी चाह थी जो आपको भारतीय सेनाओं की तरफ ले गई? क्या वो बात थी जिसने आपको आकर्षित किया कि अगर जाना है तो बस सेना में ही जाना है और सेना के माध्यम से ही अपने देश प्रेम को स्थापित करना है?
1: सो गीतिका, वो दौर ऐसा था जब हमारे पास विकल्प कुछ थे भी और कुछ नहीं भी थे, पर सब में जो परम विकल्प था वो फौज ज्वाइन करना था। और वह इसलिए भी था कि हमारे पिताजी स्वयं फौज में थे, वो इंडियन नेवी में थे और उनके साथ में हम कई वर्षों तक रहे, अलग अलग जगहों पर हमने गए और दिल में एक ऐसी उम्मीद थी कि हम भी उनके पद्म चिन्हों पर चलेंगे और फौज में जाने की कोशिश करेंगे, जो कि कामयाब हुआ।
0: वाह, क्या बात है। अक्सर ये देखा जाता है जब वो बच्चे जिनकी परवरिश फौजी माहौल में होती है तो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में ज़िंदगी जीते हैं, तो क्या वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था जो बचपन से ही आपको रास आया?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारे पिताजी हमें बचपन से ही, उन्होंने जो सिखलाई करी, वो चाहते थे कि जैसा वो अपने नियमित रूप में करते हैं वैसा ही हम सब करें। हमने कोशिश की कि हम उनके पदचिन्हों पर चल पड़ें और उनके जैसे काफ़ी चीज़ें सीखें। कुछ हमने सीखा, कुछ आज भी हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं।
0: वाह, क्या बात है। तो सीखने सिखाने का सिलसिला बरकरार है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि भले ही घर में माहौल स्ट्रिक्ट रहा हो तो इसके बीच शैतानियां ना हुई हो ऐसा भी मुमकिन नहीं?
1: स्ट्रिक्ट माहौल, आई थिंक उन दिनों में जो तरीके थे काम करने के वो इस तरह के थे कि जब तक बच्चे को एक खुराक ना मिल जाती तो वो आगे नहीं बढ़ते थे। लेकिन आज का ज़माना शायद बदल चुका है, लेकिन हम उन चीज़ों से यूज टू हो चुके थे और हम अपने तरीके से, हम अपने दोस्तों के साथ में शैतानियाँ भी करते थे, खेलकूद भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे और अपने काम में कोशिश की कि हम वो अचीव कर पाएँ जो हम चाहते थे, और फौज का जो हमारा एक लक्ष्य था वो हमने उन सब चीज़ों में रहते हुए हासिल किया।
0: जी, ऐसा भी दौर आता होगा कि पिताजी लंबे समय तक कहीं बाहर रहते हों, टूर्स पे रहते हों, अपने मिशन्स पर रहते हों, तो उस बीच उनके साथ संपर्क ना हो पाता हो, तो ऐसे में किसको अपनी बात कहते और कैसे घर का सामंजस्य माताजी बनाती?
1: ये सब चीज़ें आई थिंक फौज में जब आप रहते हैं, आपके पिताजी, आपके पेरेंट्स, सो आप इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हो जाते हैं और आफ्टर सम टाइम ज़िंदगी का एक रूप जो है वो अपने आप में एक तरीके से ढलने लग जाता है। जब आपको मालूम होता है कि आपके पिताजी जब आपके साथ में नहीं हैं तो आपने क्या क्या कार्य करने हैं, मदर के साथ में कैसे डील करना है, अपने जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ में कैसे करना है और अपनी पढ़ाई का ध्यान कैसे रखना है। उन दिनों में मोबाइल्स नहीं होते थे, कम्युनिकेशन के ज़रिए चिट्ठियों के द्वारा हुए थे, तो उनका एक अलग खुशी थी उसमें, एक अलग तरीका था और हमें मालूम होता था कि कब पिताजी आएंगे और कब हमारी खिंचाई होगी। लेकिन साथ ही साथ हम अपना काम करते रहते थे और वो सारी जिम्मेवारियां भी निभाते थे जो आज कम देखने को मिलती हैं।
0: एक बच्चे के लिए उसके पिता उसके रोल मॉडल होते हैं, तो जब कभी आपने अपने पिता को यूनिफॉर्म में देखा उस वक्त क्या फीलिंग आई, उस वक्त क्या सोचा आपने?
1: सो यूनिफॉर्म में तो जब से हम पैदा हुए और हमारी हम एक उस स्टेज में आए जब, तो हमने अपने पिताजी को हमेशा यूनिफॉर्म में देखा और अच्छा लगता था। वो यूनिफॉर्म सफ़ेद रंग की होती थी और वो नेवी में कार्यरत थे, सो काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पर उन्होंने पोस्टिंग करी, तो हमारा भी इरादा था कि हम भी फौज में जाएँ। हम चाहते थे कि हम एयरफोर्स में जा पाएँ, लेकिन हम फाइनली आर्मी में गए और आज हमें कोई शक नहीं है कि जो भी हमने आर्मी से सीखा वो काबिले तारीफ है और हमारे जीवन की जो कार्यशैली है वो उससे हमने बहुत कुछ सीख कर आज हम एक सशक्त इंसान बने हैं। इसका मैं धन्यवाद अपने पेरेंट्स को, अपने पिताजी को, अपनी माँ को जो आज

0: हमारे बीच में नहीं है, पिताजी हैं, तो उन सबको देता हूँ जिनके वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं।
1: जी निश्चित रूप से। वो पल कौन सा पल था, कैसा पल था और कब घटित हुआ जब आपने आर्मी का एग्जाम क्लियर किया? क्या थी वो पूरी प्रक्रिया जिसके तहत आप एक ऑफिसर बने इंडियन आर्मी में?
0: उन दिनों में जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे और अमूमन फौजी बच्चे ज़्यादातर ऐसे ही स्कूलों में पढ़ते थे और उनका काफ़ी नाम हुआ करता था और काफ़ी अच्छी पढ़ाई हुआ करती थी। तो हमारी ये जिद्दोजहद थी कि हम पहला हमारा जो लक्ष्य होगा वो फौज का होगा। सो पहला जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उन दिनों में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जिसको हम NDA कहते हैं उसके एग्ज़ाम हुआ करते थे। वो उन दिनों में 11वीं के बाद होते थे और मुझे याद है कि हम ग्रुप बना के सारे दोस्त एक साथ पढ़ा लिखा करते थे और कोशिश करते थे कि हम उसको निकल पाएँ। और सबसे अच्छी बात ये रही कि हमने अपना जो इम्तिहान था वो पहली दफ़ा में क्लियर कर लिया था, लेकिन NDA के दौरान में कुछ ऐसे इश्यूज़ आए कि हम ज्वाइन नहीं कर पाए। वो कसक जो है दिल में लगी रही और ये रहा कि हमें फ़ौज में ही जाना है। तो हमने 3 साल और मशक्क़त की, ग्रेजुएशन की, बम्बई यूनिवर्सिटी से BSc में उत्तीर्ण हुए और फिर दोबारा से हमने उसी सेंटर में उसी उम्मीद के साथ फिर एक बार जूझे और फिर पहली दफ़ा में हमने एग्ज़ाम क्लियर किया। और एयरफोर्स में जाने की ख्वाहिश तो थी लेकिन कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से हम आर्मी में आ गए। सो एंड आई हैव नो रिग्रेट्स, मुझे कोई ऐसी शिकायत या गिला नहीं है, लेकिन जो सफ़र रहा बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत लोगों से मुलाकात हुई, हमने ज़िंदगी के कई दायरे कई पहलू ऐसे सीखे जो आज तक हमारे साथ हैं और उम्मीद है कि हम अपने बच्चों में भी ये चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं।
1: जी तो सन 1986 में आपने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया CDS एग्ज़ाम।
0: हाँ जी,
1: और फिर 1987 में आप कमीशन्ड हुए इंडियन आर्मी में।
0: हाँ जी
1: जी, तो फिर पहली पोस्टिंग कहाँ मिली, कौन सी रेजिमेंट ज्वाइन किया आपने?
0: जब हमने ट्रेनिंग के दौरान IMS से निकले तो कुछ दिनों के लिए हम रुड़की में एक छोटा ट्रेनिंग कैप्सूल होता है जिसको करने के बाद में हमारी पहली पोस्टिंग सिक्किम में आई, जो कि आपने सुना होगा नथुला पोस्ट है जो चाइना के अक्रॉस है। सो हमारी यूनिट की एक टुकड़ी वहां पर तैनात थी और हम जैसे ही यूनिट पहुंचे कुछ दिन कैलिमपोंग एक जगह है जहां पर रहने के बाद में तकरीबन 15-20 दिन के बाद हमको वहां भेज दिया गया और ऑलमोस्ट 2 साल हम वहां पर रहे और जो कुछ वो सीखने को मिला उस दौरान में वो काफ़ी काबिले तारीफ था। हमने अपने आप भी काफ़ी कुछ सीखा लेकिन जो हमारे सरदार साहिबान और हमारे जवान और हमारे जो अफसरान थे उनके ज़रिए हमने काफ़ी कुछ सीख ली जो आज तक हमारे साथ में बरकरार है।
1: वाह क्या बात है। एक बात और जानना चाहती हूँ आपसे, वैसे तो भारतीय जो सेना है जो ट्रेनिंग्स आपको दी जाती है टफेस्ट ट्रेनिंग्स कहा जाता है वर्ल्ड में, लेकिन ट्रेनिंग्स के बाद भी जब आप एक ऑफिसर बन जाते हैं आपकी जिम्मेदारियां आपको दी जाती हैं, आप पर कार्यभार दिया जाता है, आपको डिसीजंस लेने होते हैं, कमांड सुनने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है, तो वो मंजर कैसा था? क्या आपकी कल्पनाओं से एकदम अलग था या जो आप सोच के गए थे बिल्कुल वैसा था?
0: आपका जो सोचने का तरीका होता है वो आपकी एक अपनी तरतीब होती है कि आप सोचते हैं कि ज़िंदगी की चीज़ें इस तरह से चलेंगी, लेकिन जब आप ज़मीन पर हकीकत में देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं, कई चीज़ें उसके विपरीत भी होती हैं और आप देखते हैं कि ज़िंदगी के मायने कुछ और भी हैं। और उसमें जो सीखने सिखाने वाले लोग हैं, आपके जो सीनियर अफसरान हैं वो तो है ही हैं, लेकिन जो आपकी टुकड़ी के जवान हैं, जो JCOs हैं, जो तजुर्बेकार हैं, उनके ज़रिए आप बहुत कुछ ऐसा सीखते हैं जो शायद आपको अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में प्रैक्टिकली शायद नहीं सिखाया जाता है। वो जब आप ज़मीनी हकीकत के साथ जुड़ते हैं तो आप वो एक अलग ही सीख होती है और वो आपके साथ ज़िंदगी भर बरकरार रहती है। तो उसके लिए मैं अपने जवानों का और अपने जो सरदार थे उनका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ और उनके साथ में मैं आज भी कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जब भी हमें मौका मिलता है हम उनसे मिलते हैं।
1: जी यही ख़ास बात है हमारी भारतीय सेना की कि वो हर मंजर के लिए हमेशा तैयार रहती है और अपने सैनिकों को, सिपाहियों को, ऑफिसर्स को इसी तरह से तैयार करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी क्यों ना हो, तुम्हें डटे रहना है, टिके रहना है और हर जंग में फतेह हासिल करनी है।
2: कांधे पे सूरज

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका ओनियाल और आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल अशोक कुमार। हम कहते हैं ये कि हम में वो जज्बा है, हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, हम हर जंग में फतेह हासिल कर सकते हैं, पर सच मानिए ये जज्बा भी हमें हमारे सिपाहियों, हमारे सोल्जर्स, हमारी भारतीय सेना से मिलता है और जिसकी जीती जागती मिसाल आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है मेजर जनरल अशोक कुमार। जी अशोक जी, आपसे ये जानना चाहती हूँ मैं कि जब हम सर्विसेज ज्वाइन करते हैं, खासतौर पर जब आपने सर्विसेज ज्वाइन की, उससे पहले ट्रेनिंग थी और ट्रेनिंग के बाद आपको एक ऑफिसर नियुक्त किया गया, आपको पोस्टिंग दी गई, लेकिन इंजीनियरिंग, क्योंकि मिलिट्री इंजीनियर आप रहे हैं, तो इंजीनियरिंग ही इस विभाग को ही आपने चुना या फोर्सेज ने आपके लिए इस विभाग को चुना, किस तरह थी ये प्रक्रिया?
1: सो ट्रेनिंग के दौरान आपकी क्वालिफिकेशन को मद्देनज़र रखते हुए आपको मौका दिया जाता है कि आप किस संस्था में, या इन्वेंट्री में, आर्टलरी में, या इंजीनियर्स में जाना चाहते हैं। तो उनकी क्वालिफिकेशंस होती हैं, अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं तो आप जो तकनीकी ब्रांचेस हैं जिसमें इंजीनियर्स, ईएमई, सिग्नल्स आते हैं, इनमें आप जा सकते हैं। बाकायदा कि आपने बीएससी बैकग्राउंड किया हो और आपके पास वो डिग्री हासिल हो। सो हमारे पास में विकल्प था कि हम इंजीनियर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। उन दिनों में इसमें काफ़ी कंपटीशन था, लोग काफ़ी जाना चाहते थे। तो हमारे कोर्स के दौरान हमारे 28 वैकेंसियां थीं और हम तकरीबन 200 लोग थे जिन्होंने इंजीनियर्स में ऑप्ट किया था। तो आपकी मेहनत के अलावा आपकी किस्मत भी थी, वो बैचेस में बनाते थे और हर बैच में 2 से 3 वैकेंसीज आती थी। सो आई वाज लकी कि हमें जो मुझे ज़रूरत चाहिए था वो मिला एंड खुशी का माहौल था जब आपने कोर ऑफ इंजीनियर्स में ज्वाइन किया। ये एक ऐसा कोर है जिसमें आप लड़ाई के दौरान में सबसे पहले दुश्मन लड़ाई में जाते हैं और लड़ाई ख़त्म होने के बाद में सबसे आखिर में आप पूरा कार्य करके बाहर निकलते हैं। सो दिस इज़ एन एडवांटेज एंड इसमें आपको पढ़ाई लिखाई काफ़ी करनी पड़ती है, जो कि एक आम धारणा है कि फ़ौज में जब बंदा जाता है तो इतनी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। बट एज इंजीनियर्स हमें ज़रूरत है कि हम इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करें और अगर आपकी चेष्टा है तो आप आगे उसको फर्दर एग्ज़ाम दे के आप अपने मास्टर्स भी कर सकते हैं, जो कि मैंने अपने कार्यकाल के दौरान किया। सो कहना कि फ़ौज में जाने के बाद पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई काफ़ी है और आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कितना करना चाहते हैं, बिकॉज इनका उपयोग लड़ाई के दौरान भी आता है।
0: जी, पढ़ाई का सिलसिला तो मुझे लगता है आपका बरकरार रहा, जैसे आपने खुद कहा आपने बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग में, उसके बाद एमटेक भी किया, एमफिल किया आपने मैनेजमेंट स्टडीज।
1: जी हाँ,
0: ये सिलसिला जो था, ये सिलसिला फौज में रहते रहते बरकरार रहा?
1: ये सिलसिला फ़ौज में रहते रहते बरकरार रहा। कई फ़ौज आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है, कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें आपने जद्दोजहद करके और अपने आप को उत्तीर्ण हासिल करना होता है। सबको मौका ज़रूर मिलता है लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है। तो आई वाज वन ऑफ दोज लकी वंस हु कुड मैनेज टू डू दीज कोर्सेज एंड पढ़ाई भी कर पाए और जिससे हमारे को अच्छी ख्याति हासिल हुई और हमारे प्रमोशंस में भी इसके काफ़ी काम आए।
0: बहुत खूब। अब बात की जाए मिलिट्री इंजीनियर की, मिलिट्री इंजीनियरिंग की, अक्सर हम यही सोचते हैं कि फौज का अर्थ है हमारे वो सेनानी, हमारे वीर, हमारे सैनिक जो मैदान जंग में जाते हैं, जंग लड़ते हैं और हमें कहीं ना कहीं सुरक्षित करते हैं। लेकिन जब भारतीय फौज की बात आती है और जब हम बात करते हैं मिलिट्री इंजीनियर्स की, तो इंजीनियर्स हमारी सेनाओं को कैसे सशक्त करता है, क्या भूमिका रहती है इंजीनियर्स, मिलिट्री इंजीनियर्स की?
1: आज का दौर आपने देखा होगा जब प्रेजेंट सिनेरियो में काफ़ी लड़ाइयां देश के बाहर में हो रही हैं और जिस हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं तो तकनीकी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। इसी प्रकार हमारे फोर्सेस में भी इंजीनियरिंग का होना बहुत ही अहमियत रखता है और कहते हैं कि कोर ऑफ इंजीनियर्स का मायने है कि जब आप लड़ाई के दौरान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, आप अपने फोर्सेस को मोबिलिटी प्रदान करते हैं और दुश्मन को मोबिलिटी डिनाई करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपका जो अचीवेबल टारगेट है वो अचीव हो और दुश्मन को आपने टारगेट को अचीव करने में आप बाधा बने। सो आपने चाहे सुरंगें बिछानी हैं, चाहे आपने ब्रिजेस बनाने हैं, चाहे आपने नौका के ज़रिए नदी को पार करवाना है, उसमें बड़ा बड़ा जो असला है, सामान है, टैंक्स हैं, ये सब पार कराने और लाने और ले जाने की जिम्मेवारी कोर ऑफ इंजीनियर्स को दी जाती है। साथ ही साथ जब दुश्मन दूसरी तरफ से हमला करता है तो उसमें मीने या सुरंग लगाने का कार्य भी इंजीनियर्स को दिया जाता है, जो कि हम अपनी सूझबूझ और हमारे सिखलाई के तरीके से करते हैं। इसी प्रकार जब दुश्मन की जो मोर्चा है उसको हम हासिल कर लेते हैं तो वहाँ पर हम रिकूप करके दोबारा से उसको एस्टैब्लिश करते हैं और जो हमारी टुकड़ियाँ हैं पीछे उनको सामने लाके फिर लड़ाई को और आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जब लड़ाई लगती है तो हम एयरफोर्स के साथ में भी मदद करते हैं, जब हमारे हवाई अड्डे होते हैं उनको बनाने में या कोई नुकसान हो गया है उसको दोबारा से रिहैबिलिटेट करने का काम भी हमारा है। सिमिलरली नेवी के जहाज़ों के लिए जो युद्ध पोत वगैरह हैं उसमें जो चीज़ें बनती हैं या कोई चीज़ बिगड़ गई है उसको भी ठीक करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार में लाने का और लड़ाई के लिए सशक्त बनाने का कार्य भी हम लोगों का होता है। सो काफ़ी काम होते हैं जो कि तभी हासिल हो सकते हैं जब आपने पीस दौरान में अच्छी पढ़ाई की हो, उसको अमल में लाए हों और देश के सुरक्षा कार्यों में उसकी आपने एक नीति बनाई है जिसके कारण हम यू नो वी अचीव व्हाट वी वांट टू अचीव।
0: जी, तो ना कि

0: चल रहा है, क्या कुछ नया किया जा सकता है। तो आपके साथ भी लगातार ट्रेनिंग्स का सिलसिला जारी रहा
1: ये
0: होगा।
1: सिलसिला हमेशा जारी रहता है, बिकॉज देश में इतने विकल्प हैं कि आप सोचते हैं कि आप ही कर रहे हैं। आपने लड़ाई है अपने एक दुश्मन से जीतनी है, और वो भी अपने तरफ अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी तकनीक के द्वारा कोशिश में रहता है कि आपसे अच्छा आ सके। जब तक आप उसकी सोच को विफल नहीं कर पाएंगे, और वो होगा जब तकनीक में आप बकाया आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे और उससे बेटर हासिल करेंगे, तभी आप जंग को जीत पाएंगे। सो आने वाले समय का जो दौर है वो एक फिजिकल लड़ाई है और एक है जो तकनीक के द्वारा जीते वाली जाने वाली लड़ाई है। और हम देख रहे हैं कि आज बाहर के देशों में, चाहे वो ईरान की लड़ाई चल रही हो, चाहे यूक्रेन की लड़ाई हो, उसमें छोटे छोटे देश भी अपनी तकनीक को इस्तेमाल करते हुए कितनी बहादुरी से और दिमाग से लड़ने की कोशिश जारी है। तो वो शायद चीज़ें हमें भी हासिल करने की ज़रूरत है, हम इससे अलग नहीं रह सकते हैं।
0: जी, तो 100 बातों की एक बात कि एक सोल्जर को मानसिक शारीरिक रूप से सक्षम होना पड़ता
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल
0: अगर उसे जीत हासिल करनी है, चाहे वो मैदान की जंग में हो या फिर हमारे सिविलियंस की जिंदगियों की बात क्यों ना हो। हमारे जो सिपाही हैं, हमारे जो सोल्जर्स ऑफिसर्स हैं, वो हमेशा मुस्तैद हैं हमारे लिए। एक बात और यहाँ पे आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपने खुद बताया था कि आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन आप बहुत खुश हैं कि आपने इंडियन आर्मी के जरिए अपने देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा को दिखाने का सौभाग्य प्राप्त किया। आपने ये भी कहा कि किस तरीके से मिलिट्री इंजीनियरिंग की जब बात होती है तो आप एयरफोर्स, नेवी सबके लिए काम करते हैं, आपने भी ऐसा किया है,
1: बिल्कुल
0: सभी फोर्सेस के लिए आपने काम किया, उस वक्त खुशी तो बहुत हुई होगी। कहते हैं कि जीवन ना एक चक्र की तरह है, कभी कभी जहाँ छूटता है वहीं जिंदगी को ले आता है।
1: बिल्कुल
0: जब
1: आप सही कह रहे हैं, बिकॉज यू नो एक व्हेन यू आर यंग आप कोशिश करते हैं कि आप वहीं जाना चाहें जहाँ पर आपकी यू नो आप जाना चाहते हैं, लेकिन कई बार भगवान के तरीके अलग होते हैं। तो शायद वो यू नो मुझे पायलट बनाने से किसी तरह से वांछित किया, लेकिन मैंने अपने कार्यकाल के दौरान में एयरफोर्स के साथ, नेवी के साथ खूब जमकर काम किया, और एक ऐसी फीलिंग आई कि हम उन्हीं का एक हिस्सा हैं। चाहे हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई कार्य हो या कहीं भी हो, तो एयरफोर्स की सुविधाएं हमें मिलती थी, और अच्छा लगता था जब हम उनके जहाज़ों में बैठकर दूर दराज के क्षेत्रों में देखते थे कि भाई कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है इंजीनियरिंग की, जिससे उनको सहूलियत मिलेगी और हमारे जो देश के सिपाही हैं उनके कार्यशैली में एक क्षमता बढ़ेगी जिससे जिसका हमें काफ़ी गर्व है। तो हमने काफ़ी अच्छे बड़े बड़े रनवे बनवाए, टैक्सी ट्रैक्स बनवाए, एयरपोर्ट्स हवाई जहाज की जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बनाई, जिनकी वजह से आज हमारी सेनाएं वो सब हासिल कर पा रही हैं जिनकी हमें ज़रूरत है।
0: एक बात और, क्या मिलिट्री इंजीनियरिंग आपको दूरदर्शिता प्रदान करता है? क्योंकि कहते हैं कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित होता है जिसके बारे में किसी को भी पहले से नहीं पता होता है, लेकिन एक मिलिट्री पर्सन के लिए, एक इंजीनियर के लिए, खासकर मिलिट्री इंजीनियर के लिए, क्योंकि वो सशक्त कर रहा है फोर्सेस को, उसके लिए अनफोर्सीन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर कुछ नया इजाद करना कितना महत्वपूर्ण होता है।
1: बहुत दुरुस्त आपने सवाल किया, और ये चीज़ें बहुत ही कारगर हासिल होती हैं जब आप अपनी इंजीनियरिंग के यू नो ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी चीज़ का एहतियात करते हैं जिससे हमारे पूरे फोर्सेस को एक अच्छा मौका मिलता है, और जो कि हमने अपने कार्यकाल के दौरान जो कभी हमने सोचे नहीं थे, हमें जब ऐसे टास्क मिले तो क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग की नॉलेज और हमारे जो लोगों ने हमें सिखाया वो इतनी कामयाब हुई कि हमें खुद सोचकर अच्छा लगा कि हमने सही किया, जो चीज़ें हमने सीखी और हम अपने देश के काम आ सके।
0: जी, सबसे बड़ा जज्बा तो एक फौजी के लिए यही होता है कि वो अपने देश के लिए काम कर रहा है, अपनी कर्तव्य निष्ठा से, अपने देश प्रेम से, और शायद इस सुख से बड़ा सुख कुछ हो नहीं सकता कि आप देश के लिए काम कर रहे हैं। जीवन के 40 वर्ष आपने भारतीय सेना को दिए हैं, तो जब पीछे अतीत के पन्ने पलट कर देखते होंगे, बहुत सारी बातों को याद करते होंगे, तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना एक सुखद सांस, उसको आप रोज भरते होंगे और अपने कार्यकाल को जो आपने जिया है उसे जरूर याद करते होंगे।
1: नहीं, अच्छा लगता है, बिकॉज जो आपकी बचपन की उम्मीदें थीं और आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है। ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ौज में हो या ना हो, हर इंसान, एक हर नागरिक इस देश का अपने देश के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहा है। लेकिन हमें एक सौभाग्य मिला कि हम काफ़ी नज़दीकी से अपने देश के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की, काफ़ी कुछ कर पाए, काफ़ी वर्क इन प्रोग्रेस है जो आने वाली जनरेशन से वो करेंगी, बट इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। और इसमें सबसे बड़ा जो हमारी सिखलाई है, जो हमें बताया जाता है कि देश के लिए 3 चीज़ें बड़ी

0: महत्वपूर्ण है वो है नाम, नमक और निशान।
1: वाह क्या बात।
0: नाम है आपकी अपनी पलटन का, आपके अपने जिस यूनिट में आप काम करते हैं, रेजिमेंट हैं, और उसको आप कैसे ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। एक सैनिक यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ता है कि उसके किसी भी कृत्य से उस गौरवशाली नाम पर कोई आँच ना आ जाए। फिर वो नमक की बात करता है, जब जहाँ पर वफादारी और कर्तव्य निष्ठता काम आती है, और जिस चीज़ जो नमक आप खाते हो उसका यह विश्वास का बंधन है जो सैनिक को वर्दी, कमान और अपने साथियों से कभी विश्वासघात ना करने की प्रेरणा देता है। निशान हमारे झंडे की बात होती है, यहाँ राष्ट्रीय तिरंगे रेजिमेंट के अपने झंडे और उसके इंसिग्निया का प्रतिनिधित्व करता है। निशान को हमेशा ऊँचा रखना देश के लिए एक संप्रभुता और रेजिमेंट के युद्ध समान, जो जिसको हम बैटल ऑनर्स बोलते हैं, कि रक्षा का एक संकल्प है जो कि हमारे रग रग में भर दिया जाता है। और यह एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपके काम आती है, चाहे वो पीस स्टेशन हो चाहे युद्ध का क्षेत्र हो। तो तीन चीज़ें हमेशा याद करें, नाम, नमक और निशान।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। तो हम अपने श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि अगर आप कोई संदेश भेजना चाहते हैं संदेश टू सोल्जर्स इस कार्यक्रम में, तो आप हमें मैसेज भेज सकते हैं 9868107070 इस नंबर पर। और आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल अशोक कुमार। अति विशिष्ट सेवा मेडल से आपको नवाजा गया है आपके योगदान के लिए, और जिस तरह से आपने 40 वर्षों तक अपना योगदान दिया, आपके लिए सुखद पल बहुत सारे अपने आपने अर्जित किए और आप भावी पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल अशोक कुमार। AVSM यानी कि अति विशिष्ट सेवा मेडल से आप अलंकृत हैं, और आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मेजर जनरल अशोक कुमार हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल अशोक कुमार, आपसे जानना चाहते हैं कि हम जीवन में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो हमेशा चाहता है कि वो धीरे धीरे करके आगे बढ़े। आप भी सेना में रहते हुए अलग अलग पोजिशन पर आगे बढ़ते गए, और कहते हैं कि जब आप ओहदे में आगे बढ़ते रहते हैं, आपको हाईएस्ट पोजीशंस मिलती हैं, तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी बहुत सारी बढ़ जाती हैं। बहुत सारे आपने कार्य किए, लेकिन इन सब पोजीशंस में काम करने के साथ साथ कोई एक ऐसी चीज़ थी जो हमेशा एक जैसी रही और साथ चली 40 वर्षों, क्या वो एक ऐसी फीलिंग थी, क्या वो ऐसी बात थी जिसने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा? भले ही ओहदा बढ़ता गया, जिम्मेदारी बढ़ती गई, लेकिन वो फीलिंग जब ज्वाइन किया था फोर्सेस तब भी वैसी थी, और जब फोर्सेस छोड़ी तो आज भी वो बात जिंदा है, आपके दिल में पेवस्ट है।
1: जब आप किसी भी महकमे में जाते हैं, करते हैं, तो सबसे बड़ा जो एहसास है वो खासकर जो फौज का महकमा है, वो एक आपको ऐसी उम्मीद देता है कि ये आप इसी को बिलोंग करते हो और इसी में आप बसते हो, और वो जो चीज़ है वो आज भी ऐसा लगता है कि आप आज भी फौज में हैं। भले ही वर्दी नहीं पहनी है, लेकिन एक एक एक एहसास होता है कि मैं इसी में जिया हूँ और मैं इसी में मरना चाहता हूँ। दूसरा जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें लगता है फौज से, एटलीस्ट मुझे सीखने को मिला है, कि आप जब से फौज में आते हैं और जाते हैं, हमेशा ये सीखने को मिला कि आप अपने जो जिनकी वजह से आप वहाँ तक पहुँचे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो ओहदे के अधिकारी हैं, बट जो जवान हैं, जो सबसे नीचे वाला तबका है, जो आपकी तरफ देखता है कि ये हमारा साहब है, और बिना कुछ कहे आपस में हम एक दूसरे की बात को समझते हैं, वो एक ऐसी उम्मीद रखता है जिसमें आप बिना बताए, चाहे वो लड़ाई का मैदान हो चाहे अदरवाइज हो, आप उनकी उम्मीदों पे अगर खरे उतरेंगे तो आप वास्तविकता में आपने अपने जीवन को कुछ कर दिखाया है। और वो उम्मीद बिना बताए, बिना बोले हुए अगर आप कर पाते हैं और उसको साथ में लेकर चल सकते हैं, तो वो एक ऐसा अचीवमेंट है जो मुझे लगता है कि हमेशा आपके साथ में होना चाहिए। कई बारी आपके जवान आपके लिए इतना कुछ कर जाते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो शायद आप उसे भूल ना पाएं, एक ऐसा कुछ उसकी उम्मीदों पे खरे उतरें, तो वो आपको ज़िंदगी भर याद करता है। और आज भी हमारे जो सैनिक हैं जो रिटायर हो गए, उनसे जब बातचीत होती है तो हम अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और बताते हैं कि हमने उनसे क्या सीखा और उन्होंने हमें क्या सीख दी। एक छोटा सा उदाहरण था, जब मैं फ़ौज में गया तो पहाड़ों के इलाके में थे, हमारे पास गाड़ियाँ थी, तो हमने गाड़ी चलानी अपने एक सिपाही से सीखी। उसने हमें कोशिश की कि जो ट्रेनिंग है वो दे पाए, और गाड़ी चलते समय पहाड़ के स्लोप पर रुक गई, तो उसका नाम मुझे याद है आज भी, सिपाही ओम प्रकाश हुआ करता था। और वो गाड़ी रुकने के बाद में वो बाहर निकला, और उन दिनों में हैंडल मार के गाड़ी को स्टार्ट करते थे, वो गाड़ी इतनी ज़ोर से हैंडल लगा कि गाड़ी उछल के और नीचे रोल होनी शुरू हो गई। तो हमने एक नाले के साइड में गाड़ी उल्टी होके चारों पहिए

0: ऊपर और गाड़ी पलट गई। तो ओम प्रकाश का पहला वाक्य था कि लेफ्टिनेंट साहब आप घबराइए ना, हम ये जिम्मा अपने सर पे लेंगे। हमने कहा ओम प्रकाश ऐसा नहीं होगा, ये गाड़ी हमारी वजह से गिरी है तो हम जिम्मेवार हैं, तुम बस ये करो कि वहाँ से जाके कोई हेल्प लेके आओ। तो वो हादसा एक ऐसा हादसा था जहाँ पर आपका सिपाही आपके लिए आपको आँच नहीं आने देता है और कोशिश करता है कि मेरा जो साहब है वो हमेशा सर्वोपरि रहे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आप सीखते हो कि यदि आपने ऐसे दौरान में आप उनके साथ में खड़े हो, ज़िंदगी भर उन चीज़ों को याद रखता है। और आज भी जब हम पुरानी चीज़ें बातें याद करते हैं तो बताते हैं कि साहब आपने हमारे लिए ऐसे किया था, भले ही वो कुछ अपना प्रमोशन नहीं मांगता है या अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ नहीं मांगता है, लेकिन जो उसकी सच्चाई है और उसका जो काम करने का तरीका है वो उसके साथ में आप ज़िंदगी कुछ ऐसे उसूल सीखते हैं जो आपके दिल को हमेशा छू जाते हैं। और आप समझते हैं कि एक सबसे बड़ा जो आदर है वो एक इंसान का इंसान के प्रति प्यार और उसकी एक ऐसी गरिमा है जिसको अगर आप बरकरार रखें तो वो ज़िंदगी भर आपके शायद काम आती है, भले ही उस मोमेंट में आप शायद कुछ मिस कर जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सब चीज़ें आपको सोच के अच्छा लगता है। एंड उन्हीं उम्मीदों के साथ में हम जीते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने आने वाली जनरेशन्स को भी ऐसा ही कुछ सिखा पाएं।
1: जी फौज की एक खास बात मुझे ये लगी कि जब भी हम इस प्रोग्राम में संदेश टू सोल्जर्स में आप जैसे ऑफिसर से बात करते हैं कि फौज में कोई अकेला नहीं है, हमेशा किसी हर किसी के साथ हर कोई है, ऐसा नहीं एक है, हर किसी के साथ हर कोई है। और ऐसे में जब आप अपने परिवार से दूर है तो आपको लगता है कि मेरा कौन सा ऐसा काम था जो मुझे पता नहीं लगा और वो हो भी गया, तो
0: बिल्कुल,
1: शायद एक
0: हाँ
1: बड़ी खूबसूरत बात
0: हाँ
1: है फौज
0: खूबसूरत
1: की।
0: चीज़ है। और आप जब आप आगे सरहद पर अकेले रहते हैं, अकेले मतलब आप अपने फैमिली से परिवार से दूर होते हैं, आपके जो जवान हैं वो आपको ऐसा एक माहौल क्रिएट करते हैं जब आपको महसूस नहीं होते, और ऐसा महसूस होता है कि आपके परिवार के लोग आपके साथ में बकाया हैं, वो आपका उतना ध्यान रखता है, शायद आपका परिवार भी उस मंजर में शायद इतना ध्यान ना रखे। और ये छोटी छोटी चीज़ें जब बिन बनकर आप एक साथ सोचते हैं तो वाकई एक परिवार का एहसास होता है। और एक फ़ौज में जो सबसे अच्छी सिखलाई है कि आप लास्ट मैन, यू हैव टू टच ग्राउंड विद द लास्ट मैन ऑन ऑन ऑन द फील्ड, यू कांट लीव एनी वन बिहाइंड। लड़ाई के दौरान अगर कोई हादसा हो जाता है, आपका जवान क्षतिग्रस्त होता है, जब तक हम उसको निकाल कर सुरक्षित जगह पर नहीं लाते हैं हम अपना कार्य का शैली को सफल नहीं समझते हैं। और कई हमारे ऐसे कोर्सेज और ऐसे कॉम्पिटिशन होते हैं जहाँ हमने एक टुकड़ी के साथ में एक जीत हासिल करनी है, अगर उसमें आप समय से पहले आ गए लेकिन एक बंदा आपका अभी तक पीछे है, जब तक वो शामिल नहीं होगा आपकी जीत जीत नहीं मानी जाएगी। सो ये एक ऐसी मंजर है जिसको हम सीखते हैं। उसके अलावा जब कोई हमें कलेक्टिव टास्क मिलता है और हम में से कोई बंदा नहीं कर पाता है तो उसको भी जब तक हम साथ में लेकर उस जीत को हासिल ना करें वो जीत जीत नहीं मानी जाती है।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। तो ना केवल कृतज्ञता हम फौज से सीखते हैं, हम टीम स्पिरिट एकता भी हम फौज से ही सीखते हैं। और कहीं ना कहीं जब हमारे युवा ये कहते हैं कि हम फौज में जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जितने भी माता पिता हैं वो गर्व से उनका सीना पहले ही चौड़ा हो जाता है ये कहते हुए कि हमारा बच्चा फौज में जाना चाहता है। और यही फौज की खूबसूरत बात है कि वो सभी युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और हर युवा यही चाहता है कि मैं देश के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना प्रेम सेनाओं में भर्ती होकर दिखाऊं। तो ये जग आपके लिए है, सेनाएं आपके लिए हैं, अब आप उसे कैसे आत्मसात करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है।

0: संदेश टू सोल्जर्स आज के इस कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है और आपको बताना चाहेंगे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल अशोक कुमार। एक सिपाही के लिए, एक सोल्जर के लिए, एक ऑफिसर के लिए, चाहे वो किसी भी पद पे क्यों ना हो, लेकिन जब उसके कार्य को, उसकी जिम्मेदारियों को, उसकी कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया जाता है तो उसके लिए सबसे सुखद पल होता है। आपके लिए भी बहुत सुखद रहा होगा, ये भी कह सकते हैं कि आपने जिस चीज़ का इंतज़ार किया वो आपके आपके शोल्डर्स पर थी, आपकी ड्रेस पर थी, आपकी यूनिफॉर्म पर थी। अति विशिष्ट सेवा मेडल जिससे आपको नवाजा गया आपके सर्विसेज के लिए, आपके योगदान के लिए। तो उस वक्त वो जो पल होता है, वो पल आपको क्या क्या याद दिलाता है? क्या आप अतीत में चले जाते हैं या सिर्फ याद करते हैं कि आज ये जो पल है, ये पल इस वजह से आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आपने बस अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखा था, इसलिए हुआ।
1: इंसान की एक फितरत है कि वो जब भी कोई काम करता है तो वो एक अवार्ड और रिवॉर्ड सोचता है। कई बारी वो अवार्ड शायद उसे तब नहीं मिलता जब वो मोस्ट हम्बली उसको डिज़र्व करता है। कई बारी अवार्ड जो हैं वो ऐसे वक्त पर मिलते हैं जब आपके अंतिम चरण में आप इतना कुछ काम करके गवर्नमेंट आपके रिकग्नाइज करती है तो एक अच्छी फीलिंग आती है। इंसान इस दुनिया में जीता है कुछ कारणों से, जिनमें से वो उम्मीद करता है कि उसके काम किए गए कार्यों का एक एक उसको शाबाशी दी जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो मिले, लेकिन जब मिलती है तो एक अच्छा एहसास होता है। और मोर देन आपके अपने लिए वो एक एहसास, आपके बच्चे जो आपके साथ में आपको यहाँ तक पहुँचाने में जिनका गौरव रहा है, आपके पिताजी, आपके माता जो जिन्होंने आपको बड़े होते हुए देखा और उम्मीद करते हैं कि उनका उनके बेटे को कुछ ऐसा अवार्ड मिला जो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, तो एक काफ़ी गौरव और गर्व की बात होती है। सो जैसे हम कहते हैं कि रिसीविंग द मेडल वॉज अ डीपली हम्बलिंग रिकॉग्निशन, an honor is never a resting point, it is a reaffirmation of the trust that people have in you, chahe wo aapke jawan ho, chahe aapke bacche ho, aapke mata pita ho, aapke rishtedar ho, sabko ek ummeed rehti hai. Aur it serves as a reminder of the dedicated soldiers and the teams whose collective effort made that contribution possible. To sabhi ka isme ek vishwas tha, ek aisi कोशिश थी कि सब ने मिलकर आपको उस पैगाम तक पहुंचाया जिसका आप खुद जिम्मेवार तो थे, लेकिन आपके पीछे जो लोग थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उनका मैं शुक्रगुजार हूं। एंड द अवार्ड रीइंफोर्स्ड माय कमिटमेंट टू कंटिन्यूस ड्यूटी इंश्योरिंग दैट एवरी सब्सिक्वेंट डिसीजन प्लान एंड मेंटरशिप एफर्ट रिफ्लेक्टेड द स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड ऑफ द अवार्ड दैट आई गॉट। सो माय सिंसियर थैंक्स टू एवरीवन हु ओवर द इयर्स was there with me in getting and achieving what I finally achieved.
0: जी बहुत खूब, बहुत खूब। ग्रेटिट्यूड इज़ द वे ऑफ लाइफ और ज़िंदगी जीने का सलीका इस बात से पता लगता है कि हम कितने कृतज्ञ हैं। और आपकी कृतज्ञता फोर्सेस की तरफ, अपने अवार्ड्स की तरफ और आपने जितने भी कार्य किए हैं आज तक उनकी तरफ आज इस शो के माध्यम से हमें सुनाई दी और कहीं ना कहीं हमें भी बहुत सारी प्रेरणा आपसे मिली। एक व्यक्ति जिसका जिक्र ना हमने अभी तक नहीं किया, या बेटर हाफ, शायद उनका आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा होगा, क्योंकि कहते हैं कि एक ऑफिसर को ऑफिसर एक माता पिता बनाते हैं, उसके अंदर

0: वो संस्कार उसमें जीवंत रखते हैं हमेशा, उनके साथ भी उनके बाद भी हमेशा रहते हैं, लेकिन स्पाउस उन्हीं संस्कारों को आगे लेकर चलती है। आपके पीछे बहुत बार उन्होंने घर को संभाला होगा, कंप्लेन भी नहीं की होगी, लेकिन इससे पहले ये मुझे बताइए कि आप उनसे मिले कैसे थे?
1: आपने एक अच्छा सवाल पूछा। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देर इज़ अ वूमन, एंड अनडाउटेडली इट हैज़ बीन माई वाइफ हुज़ नेम इज़ प्रीति। और जो गुड पार्ट है वो ये है कि हमारे जो दोनों के पेरेंट्स थे वो फौज में कोस्टमेट्स थे, जो नेवी में साथ में आए, और हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे। और भाग्यशाली रहे कि हम आपस में हमारी शादी हुई और हमने अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से जिया। और जो भी मैंने हासिल किया उसमें बहुत ज़्यादा हाथ मेरी बेटर हाफ प्रीति का था, एंड शी इज़ रियली वर्कड हार्ड फॉर वॉट एवर आई एम टुडे, एंड माई चिल्ड्रन हु निहारिका एंड आर्यन हु बीन वंडरफुल, एंड दे स्टूड लाइक रॉक बिहाइंड मी इन एवरी यू नो गुड और बैड पैटर्न्स ऑफ लाइफ, एंड इन दी एंड इट वॉज एन अचीवमेंट विच आई कॉन्ट थैंक लेस टू दीज पीपल। एंड प्रीति इज़ नाउ रिमेन्स माई बिगेस्ट क्रिटिक, बट द काइंड ऑफ लेसन दैट शी इज़ गिवन मी इज़ समथिंग विच इज़ यू नो विच आई वोंट हैव डन नॉट डन ऑन माई ओन। एंड मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे भगवान ने अच्छी बच्चे दिए, अच्छी पत्नी दी, माँ बाप पेरेंट्स ने जो हौसला दिया जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। और ये अपने आप में एक अचीवमेंट है जो हर माँ बाप अपने बच्चे में देखता है, हर वाइफ हर हस्बैंड अपनी वाइफ में देखता है, और अपने बच्चों को आँख में आँख मिलाकर उम्मीद करता है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा और आज यहाँ तक पहुँच पाए।
0: वाह, बहुत खूब। और एक ग्रैटिट्यूड हमारी तरफ से तमाम लिसनर्स के लिए जिन्होंने हमें संदेश भेजे हैं और आपको सल्यूट कर रहे हैं। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से जय हिंद यहाँ पर लिखकर भेजा है। बीके दत्त कॉलोनी से शबनम ने, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जिस तरह से प्यार देते हैं हमारे फौजियों को, काबिले तारीफ है। संदेश यहाँ पर भेजा है नुसरत अली ने, और संदेश हमें हमारे पास मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से भी आया है जोया का, और ये आपके करेज को सलाम कर रही हैं, सलाम कर रहे हैं यहाँ पे आहिल अली बीकानेर से। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। यश शिंदे ने हमें संदेश भेजा है मुंबई से, और संदेश भेजने वालों में और भी बहुत सारे दोस्त हैं। ये हैं धारा शिव महाराष्ट्र से, यशवंत इनका नाम है। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद इद्रिस ने संदेश भेजा है, और संदेश भेजने वाले बहुत से दोस्त हैं। कुछ दोस्त भी पूछ रहे हैं कि हम तैयारी कैसे करें, इसके लिए हम अलग सेशन आपके लिए ज़रूर आयोजित करेंगे। यहाँ पर मध्य प्रदेश से अजय का हमारे पास संदेश आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्तों का हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और धन्यवाद देना चाहते हैं मेजर जनरल अशोक कुमार जी का। मैं बस एक बात कहूंगी, वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, बट वंस अ मिलिट्री इंजीनियर इज ऑल्सो अ मिलिट्री इंजीनियर फॉर एवर। ये बात सच है ना?
1: बिल्कुल दुरुस्त है।
0: और इसीलिए इन्होंने काम करना बिल्कुल नहीं छोड़ा है, और ये कहेंगे कि इनकी इंजीनियरिंग आज तक कायम है, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब कहाँ कैसे इन्होंने आपके लिए आपका कोई सपना साकार कर दिया। अगर मन में ये बात आए तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं हमारे ये जो फौजी हैं, फौज में रहकर भी और फौज के बाद भी आपके लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। अब ये एक नगमा FM रेनबो की तरफ से, हम FM रेनबो का क्रेडिट ले रहे हैं, हम प्रीति मैम को ये डेडिकेट कर रहे हैं
1: सो नाइस
0: आपकी
1: ऑफ
0: तरफ
1: यू।
0: से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका एक बार फिर से स्टूडियो
1: थैंक यू
0: आने
1: सो
0: के
1: मच,
0: लिए।
1: थैंक यू सो मच। जय हिंद।
0: जय हिंद।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की 1365वीं कड़ी।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश
1: और मैं अजीत। महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है।
2: लिखते हैं, रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से निभाएं, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर संदेश के लिए। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजनी जंघेल जी ने हमारे परिवार वाले संवाद पर स्लोगन भेजा है। लिखते हैं,
1: शिक्षित परिवार बच्चों को केवल पढ़ना नहीं लेकिन अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से। कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
1: नमस्कार। पेड़ की बात कार्यक्रम सुनते समय जब माइक्रोस्कोप पर तने और पत्ती को बच्चों को दिखाया गया तो हमें अपने छात्र जीवन के वो दिन याद आ गए जब हमने भी बायो लैब में इसी तरह दिन गुजारे थे
2: जी।
1: कार्यक्रम दिलचस्प और जिज्ञासा को शांत करने वाला रहा। उमंग की पूरी टीम को धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देने के लिए।
1: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर जी लिखते हैं, सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें मेहनत का सहारा मिलता है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म से नाता रखता है, उसके लिए हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है, बस विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाइए।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने एआई से संबंधित हमारी बातचीत पर एक विशेष प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 4 तारीख को कार्यक्रम उमंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के बारे में आप दोनों की बातचीत सुनने को मिली। आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी जिसमें एआई के फायदे और नुकसान के बारे में बताया गया, सुनकर बहुत अच्छा लगा। उमंग टीम के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
1: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहकर संदेश भेजने के लिए
2: जी।
1: तो करते हैं शुरुआत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी की
2: जी।
1: तो विमलेश जी, पहले दिन हमने भारत की बात की
2: जी,
1: आज का क्या कार्यक्रम है?
2: हाँ जी जी, आज हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश की वादियों में। मुझे तो हिमाचल सुनते ही वहाँ की सुंदर सुरम्य घाटियाँ, सेबों से लदे बगान और हिमालय की चोटियाँ याद आ जाती हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा एक अमेरिकी व्यक्ति जिसने भारत में सेब को नई पहचान दी।
1: विमलेश जी, हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि आज एक अमेरिकी व्यक्ति की विशेष चर्चा क्यों, इसका औचित्य तो समझाइए।
2: जी जी जी जरूर। देखिए, हमारे भारत की विरासत इतनी समृद्ध है कि इससे प्रभावित होकर बहुत से विदेशी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए, जैसे स्वीडन की मिस मार्गरेट नोबेल जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या बनकर बाद में सिस्टर निवेदिता कहलाईं, और बंगाल की स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: जी बिल्कुल विमलेश जी, मुझे तो फ्रांस की मिस मिर्रा अल्फांसा की याद आ रही है
2: जी,
1: जो श्री अरविंद की शिष्या बनी और बाद में मदर कहलाई
2: जी,
1: और साथ ही साथ मदर टेरेसा भी मुझे याद आती है।
2: तो अजीत जी, इसी क्रम में आज हम श्रोताओं को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहेंगे जिसने भारत में आकर न सिर्फ यहाँ का जीवन जिया बल्कि पूरे प्रदेश की तकदीर बदल दी। अजीत जी, अब आपकी बारी कहानी को आगे बढ़ाने की
1: जी। श्रोताओ जरा सोचिए, एक विदेशी युवक जिसने हिमाचल की पहाड़ियों में नए तरीके से सेब की खेती शुरू की
2: जी,
1: और उस खेती से लाखों किसानों की आजीविका चलने लगी।
2: वाह, ये तो सच में अद्भुत है। कौन था वो युवक?
1: विमलेश जी, उस युवक का नाम था सत्यानंद स्टोक्स
2: जी।
1: उसका मूल नाम सैमुअल इवांस स्टोक जूनियर था। उसका जन्म अमेरिका के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। आराम की जिंदगी उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना।
2: तो वे भारत क्यों आए?
1: युवावस्था में वे मात्र 22 वर्ष की आयु में अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की सेवा की भावना से भारत आए
2: जी,
1: और हिमाचल प्रदेश के कोटगढ़ क्षेत्र में रहने लगे। उन दिनों वहाँ के लोगों का जीवन बहुत कठिन था।
2: श्रोताओ, वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो सिर्फ दूर खड़े होकर केवल सलाह देते हैं, वे लोगों के सुख दुख में सहभागी बने।
1: बिल्कुल, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। बाद में उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया और अपना नाम सत्यानंद रख लिया। उन्होंने भारतीय जीवन पद्धति को भी सम्मान दिया।
2: अजीत जी, हम बात कर रहे थे सेब की खेती के बारे में
1: जी। देखिए,

0: लेंगे। ऐसा नहीं था कि उन दिनों हिमाचल में सेब की खेती नहीं होती थी, समस्या थी गुणवत्ता की।
1: जी।
0: तो उन्होंने यानी सत्यानंद जी ने अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधे मंगवाए और हिमाचल में लगाए।
1: जी।
0: शुरुआत आसान नहीं थी, लोगों को विश्वास ही नहीं था कि इससे कोई बड़ा परिवर्तन आएगा,
1: लेकिन धीरे धीरे जब उन पौधों ने फल देना शुरू किया तो इन उच्च गुणवत्ता वाले सेब के फलों ने बाजारों में धूम मचा दी। उनकी भारी मांग होने लगी और इससे हजारों किसानों के जीवन में भारी परिवर्तन आया।
0: और हम सब जानते हैं कि आज हिमाचल के सेब पूरे देश में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं।
1: जी।
0: न जाने कितने किसानों का जीवन बदल गया, एक व्यक्ति का दूरदर्शी निर्णय लाखों लोगों के लिए आशीर्वाद और वरदान बन गया। इसलिए तो उन्हें यानी सत्यानंद स्टोक्स को हिमाचल का एप्पल मैन भी कहा जाता है।
1: जी हाँ, फलों का व्यापार बढ़ा तो सड़कें भी बनी, बागवानी का विस्तार हुआ, फलों की खेती में नवाचार शुरू हुए, धीरे धीरे उस क्षेत्र का कायाकल्प हो गया। लेकिन श्रोताओं, उनका योगदान केवल खेती तक ही सीमित नहीं था, है ना जी? जी
0: जी हाँ बिमलेश जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सच्चाई ये है कि सत्यानंद जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन किया और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई।
1: जी।
0: जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
1: यानी जिस व्यक्ति ने पहाड़ों में पौधे लगाए थे उसी व्यक्ति ने अन्याय के विरुद्ध भी आवाज उठाई, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है, देशभक्ति केवल जन्म से नहीं होती, कभी कभी सेवा से भी पैदा होती है। अजीत जी, तो अब करते हैं समापन कुछ विचारों के साथ।
0: जी जरूर।
1: श्रोताओ, कल्पना कीजिए, एक दिन था जब उस युवक के हाथ में कुछ पौधे थे और उन पौधों ने वहाँ के लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। शायद हमारे पास हजारों एकड़ जमीन नहीं है, लेकिन हमारे हाथों में भी कोई न कोई पौधा तो अवश्य ही है, कोई विचार, कोई सेवा।
0: जी, शायद कोई प्रतिभा या आंखों के सामने कोई ऐसा बच्चा जिसे हम शिक्षा दे सकते हैं। तो इसलिए
1: कभी किसी काम को छोटा मत समझिए, क्योंकि विशाल वृक्ष भी एक छोटे से बीज या पौधे से आरंभ होते हैं। इसलिए हम जहाँ भी रहें यूं ही जीवन व्यतीत न करें, कुछ ऐसा रोप कर जाएं जिसकी छाया आने वाली पीढ़ियां पा सकें।
0: जी, बहुत अच्छा विचार। तो साथियों, ये थी एक अमेरिकी युवक की भारत से प्रेम की कहानी। आज कभी यदि आप हिमाचल जाएं तो वहां के सेबों से लदे बागों को देखकर इस व्यक्ति को जरूर याद करें, जो सैमुअल इवांस स्टोक्स जूनियर से अब सत्यानंद स्टोक्स के नाम से इतिहास में जाना जाता है।
1: जी, और आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
0: जी, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को आप सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको वहां कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
1: तो प्रस्तुत है आज का प्रश्न।
0: प्रश्न है, सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। पहला कार्यक्रम है मेरे तो गिरधर गोपाल।
1: इस कार्यक्रम में भक्तिन मीराबाई के जीवन और उनकी कृष्ण भक्ति का विशेष उल्लेख किया गया है और चर्चा की गई है कि आज भी आधुनिक साहित्य उनकी कृतियों के प्रति आभारी है।
2: मेरे तो गिरधर गोपाल।

0: मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त। उन्हें भक्ति काल के प्रमुख संतों में गिना जाता है। जन जन में प्रचलित मीरा के भजन उनकी सरल आस्था का सीधा साधा चित्रण है।
1: बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन।
0: इस भक्त कवित्री ने लगभग 1300 भजन लिखे।

मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। वो जोधपुर की एक रियासत मेड़ता के महाराज राव रतन सिंह की बेटी थी। बचपन में ही माता पिता का साया उनके सर से उठ गया था।

0: इसलिए मीरा का पालन पोषण उनके दादाजी राव दूदा ने किया। शिक्षा के साथ साथ मीरा ने प्रशासन, राजनीति और संगीत में भी कुशलता प्राप्त की।
1: राव दूदा मीरा को बहुत लाड़ प्यार से पालते। नन्ही मीरा की भोली भाली बातों पर वो मोहित हुए रहते।
0: एक दिन की बात है, राव दूदा कृष्ण की मूर्ति के आगे पूजा कर रहे थे। तभी बाहर किसी की बारात को देख मीरा अपने दादाजी के पास आई।
2: बाबा, ओ बाबा, देखो तो घोड़े पर चढ़कर कौन जा रहा है?
3: अरे देखूं तो? अरे ये तो बारात जा रही है।
2: देखो चमचम वस्त्र पहने हैं, कैसी सुंदर पगड़ी है। ये कौन है बाबा? ये कहाँ जा रहा है?
3: अरे ये दूल्हा है, बिटिया शादी करने जा रहा है। अभी उसकी बारात जा रही है, फिर किसी लड़की से शादी करके उसे पालकी में लेकर वापस आ जाएगा।
2: और मेरा दूल्हा कौन होगा बाबा?
3: अरे होगा बेटी, वो भी हो जाएगा रानी बिटिया, पर अब तू मुझे पूजा पूरी कर लेने दे।
2: नहीं, पहले आप मुझे बताइए मेरा दूल्हा कौन है, वरना मैं आपको गिरधर गोपाल का श्रृंगार नहीं करने दूंगी।
3: भाई बता दूंगा ना बेटी।
2: नहीं, पहले आप मुझे बताइए।
3: बेटी ये श्रृंगार इसीलिए तो कर रहा हूँ, यही है तेरा दूल्हा।
2: सच बाबा, ये है मेरा दूल्हा।
3: सच्ची भाई?
2: मेरा दूल्हा गिरधर गोपाल।
0: बचपन की इस भोली घटना के बाद से ही मीरा जैसे जैसे बड़ी होती गई कृष्ण भक्ति में रमती गई।

0: चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से मीरा का विवाह हुआ, लेकिन मीरा मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और उनके ध्यान में खोई रहती थी।
1: पति भोजराज और ससुर राणा सांगा मीरा के इस निश्चल व्यवहार को बहुत सहजता से लेते,
0: परंतु ससुराल के अन्य लोगों को मीरा का ये रूप पसंद ना आता था।
2: उदाबाई, देखो तो मीरा तैयार हुई या नहीं।
3: भाभी की बातें मेरी समझ में नहीं आती माँ साहब। मैंने तो सुबह ही उनसे कह दिया था कि शक्ति माँ के दर्शन करने जाना है।
2: हाँ, तो फिर?
3: पर वो ना तो कुछ बोली और ना ही चली।
2: हाँ,
3: बस बैठी उस कृष्ण की मूर्ति की तरफ देखती रही।
2: हाय हाय,
3: जिसे अपने मायके से लाई है।
2: तो क्या अब तक तैयार नहीं हुई?
3: नहीं जी, तैयार होना तो दूर, वहाँ तो गाना बजाना चल रहा है।
4: नैनन में नंदलाल।
1: एक के बाद एक पति भोजराज और ससुर राणा सांगा की मृत्यु के बाद मीरा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा।
0: अब राणा सांगा का छोटा बेटा राणा विक्रमादित्य राजा बन चुका था।
1: विधवा मीरा का यूं गिरधर गोपाल के ध्यान में खोए रहना, नाचना गाना उसे राजघराने की परंपरा के अनुकूल न लगता था। वो अनेक तरीकों से मीरा को डराता धमकाता, मीरा को मारने के षड्यंत्र करता।
5: ये विष अवश्य ही हमारा काम करेगा। भाभी सा तैयार है ना आप?

0: ये आपके गिरधर गोपाल का चरणामृत है भाभी साहब। आपको गिरधर गोपाल में विलीन कर देगा। दासी, दासी।
1: जी, जी, जी राणा जी महाराज।
0: जाओ, ये कटोरा मीरा भाभी साहब को दे आओ। उनसे कहना ये उनके कान्हा का प्रसाद है। क्या कहा? कान्हा का प्रसाद, चरणामृत।
1: जी महाराज।
0: जाओ, जल्दी पहुंचा दो इसे, कहीं देर ना हो जाए।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: गिरधर गोपाल का चरणामृत।
1: रानी सा, रानी सा, रानी सा की जय हो।
2: आओ सखी, भीतर आओ।
1: जी, वो
2: क्या हुआ सखी? तनिक चिंतित सी लग रही हो।
1: वो कुछ नहीं।
2: कहो ना सखी, क्या बात है?
1: वो रानी सा, वो महाराज राणा ने आपके लिए कान्हा का प्रसाद भेजा है। ये चरणामृत।
3: क्या? मेरे कान्हा का प्रसाद?
1: पर हमें तनिक शंका होती है।
3: दो दो हमें, हम अभी पिएंगे।
1: रुकिए रानी सा, रानी सा जरा ठहरिए। रानी सा, क्या क्या मालूम विष हुआ तो?
2: राणा भेजा विष का प्याला, पीवत मस्त होई। दास मीरा लाल गिरधर, होनी हो

माना जाता है कि राणा ने कभी टोकरी में सांप भेजा, कभी मीरा के बिस्तर पर कांटे बिछवाए, लेकिन कृष्ण के प्रति आस्था मीरा को हर कष्ट से बचाती रही।

0: और एक दिन वो भी आया जब मीरा महल के सारे सुख और आराम छोड़कर मेवाड़ त्याग कर वृंदावन की ओर चलती।
1: हाथ में एक तारा लिए जोगन बनी मीरा को यूं रास्तों में नाचते गाते देख लोग हैरान हो जाते।
0: कुछ लोगों को मीरा का ये दिव्य रूप मोहित करता, लेकिन मीरा का यूं नाचना गाना उस समय के कुछ अंधविश्वासी लोगों के लिए बहुत असहनीय था। रास्ते में लोग तरह तरह की बातें करते।
2: भाई साहब, सुना है कि रानी मीरा ने महल छोड़ दिया।
3: अरे छोड़ना ही था
4: और कहीं, विधवा होकर नाचनो गानो
3: और क्या।
2: अरे भाई, पर ऐसी भक्त को भला कोई दीवारों में बांध सकता है क्या।
1: चेहरे पर कैसा दिव्य तेज है।
5: हाँ, कितनी भली है रानी सा।
6: गाती भी बहुत अच्छा है।
2: हाँ, बहुत अच्छा। मैं मिला हूँ एक बार उनसे।
7: वो देखो, वो आ रही हैं, तुम्हारी रानी सा।
8: प्रणाम रानी सा।
9: प्रणाम रानी सा।
10: प्रणाम। जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण।
6: ऐसे पैदल कहाँ जा रही हैं रानी सा।
10: अपने कान्हा के पास वृंदावन।
11: यूँ अपने घर परिवार को छोड़कर।
10: मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई।
2: मगर लोग क्या कहेंगे रानी सा।
7: राजकुमार भोजराज की विधवा और
10: जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
0: इस तरह समाज की और कुल की रीतियों को तोड़ती मीरा वृंदावन जा पहुंची।
12: वृंदावन।

0: इस समय की भी एक घटना बहुत प्रसिद्ध है।
1: कहा जाता है कि उस समय चैतन्य संप्रदाय के परम सिद्ध संत श्री रूप गोस्वामी वहां रहते थे।
2: गोविंद जय जय गोपाल जय जय
3: गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
1: मीराबाई उनसे मिलना और उनके दर्शन करना चाहती थी, परंतु गोस्वामी जी ने कहला भेजा,
4: हम स्त्रियों से नहीं मिलते हैं।
5: क्या सच? गोस्वामी जी ने ऐसा कहा?
6: जी हाँ माता, गोस्वामी जी स्त्रियों से भेंट नहीं करते, उन्होंने सदा इस नियम का पालन किया है।
5: हम तो समझते थे कि वृंदावन में श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। ठीक है, जैसी हरी इच्छा, चलती हूँ। स्वामी जी से कहना, संत देख दौड़ी आई, जगत देख रुई, संत सदा शीश राखूं, राम हृदय होई।

कहते हैं, गोस्वामी जी मीराबाई की इस बात से इतने प्रभावित हुए कि स्वयं नंगे पांव बाहर तक आए और संत मीरा से मिले। मीरा वृंदावन की गलियों में, मंदिरों में नाचती गाती

0: एक दिन वो वृंदावन छोड़ द्वारिकापुरी चली गई।
1: वहां उन्होंने रणछोड़ जी के मंदिर में डेरा जमाया। यहां वो अपने कान्हा की चाकरी करती।

0: मीरा अब तक बहुत ही प्रसिद्ध और जन जन की प्यारी बन चुकी थी।
1: उनकी ये लोकप्रियता उनके मायके मेड़ता और ससुराल मेवाड़ तक भी जा पहुंची। मीरा इस सब से अनजान कृष्ण की भक्ति में खोई रहती।

0: सुंदर।
1: मीरा बाई के दर्शन करके मैं तो धन्य हो गया।
2: कितनी मधुर आवाज।
3: हाँ।
2: सुना है मेड़ता और मेवाड़ दोनों राज्यों से उन्हें बुलावा आया है।
3: क्या?
4: हाँ, पर वो गई नहीं।
1: अरे सुना तो ये भी है कि उन्हें वापस ले जाने के लिए
5: ब्राह्मण भी भेजे गए।
2: तो क्या हमारी मीरा बाई चली जाएंगी?
4: पता नहीं, उनके बिना तो सब कितना सोना सोना लगेगा।
1: हाँ भैया, बहुत सोना हो जाएगा।
6: कहते हैं कि ब्राह्मणों के हठपूर्वक धरना देने पर मीराबाई श्री रणछोड़ जी से आज्ञा लेने मंदिर के भीतर गईं और वहीं मूर्ति में आत्मसात हो गईं।
7: विश्वास जो मानता हो, तर्क जो कहता हो, लेकिन

ये सच है कि मीराबाई सीधी सुगढ़ और सपाट भाषा में कविता रचने वाली अनोखी भक्त कवित्री थी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरे तो गिरधर गोपाल, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन।
1: ये कार्यक्रम बच्चों में गणितीय और संख्या ज्ञान के कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें एक बच्ची के जन्मदिन की पार्टी में हुए मनोरंजक संवाद बच्चों में नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं।
2: तुम भी लोग खाओ मिठाई, ये लो तुम भी लो।
3: मैं तो अपने जन्मदिन पर केक काटता हूँ।
4: मैं भी
5: मैं तो अपने जन्मदिन पे समोसे खिलाता हूँ।
2: मैं तो मेरे घर पे तो जन्मदिन पे तो ढेर सारी मिठाई आती है।
6: हाँ, यहाँ पर रखी तो है कितनी सारी।
7: क्या हर साल इतनी मिठाई आती है?
2: हर साल जब मेरा जन्मदिन होता है तब मैं जितने किलोग्राम की होती हूँ उससे दुगनी मिठाई आती है हमारे घर पे।
7: इतनी ढेर सी मिठाई का क्या करते हो?
2: सबको बांटते हैं और सबको खिलाते हैं। पता है जब मेरा जन्म हुआ था मैं 3 किलोग्राम की थी।
7: अच्छा, फिर तो तुम्हारे घर में 6 किलोग्राम मिठाई आई होगी।
8: हाँ, ये बात तो ठीक है,
7: हो गई दुगनी। अब तुम कितने किलोग्राम की हो कुंजम्मा?
2: अब मैं 30 किलोग्राम की हूँ।
7: तो अब तुम्हारे घर में क्या 60 किलो मिठाई रखी है?
2: हाँ, 60 किलोग्राम है।
3: अगर तुम 30 किलोग्राम और 50 ग्राम की होती तो
2: अरे बस, किलोग्राम जितनी मिठाई लाते हैं। वैसे तो मैं अब भी 30 किलोग्राम और 500 ग्राम की हूँ।
5: इस हिसाब से तो तुम्हारे घर में 61 किलोग्राम मिठाई आनी चाहिए।
3: हाँ हाँ, 61 किलोग्राम।
8: अगर ऐसे तो हाथी की मम्मी भी ऐसी मिठाइयाँ बांटती तो।
2: पता है, हाथी का बच्चा 300 किलोग्राम का होता है।
9: 300 किलोग्राम?
7: तो उसकी मम्मी क्या 600 किलोग्राम मिठाई लाती है?
8: और चीटी की मम्मी उसका भार तो 1 मिलीग्राम होगा।
3: 2 मिलीग्राम की मिठाई कौन बनाएगा?
2: और अगर डायनासोर को मिठाई बांटनी होती तो? तुम छोटे डायनासोर की बात, हम तो मिठाई खाते हैं।
3: हाँ, कहिए 60 किलोग्राम मिठाई खत्म ना हो जाए।
0: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन, और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, जगबंधु और कुसुमलता के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1365वीं कड़ी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनते हैं हमारा निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिलना मिनी रोक रहमांग इंगरे तगा लमक तेलंगी आकाशवाणी श्री विजयपुरम अंगी निकोबारी प्रोग्राम तहांग।
2: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine,

0: ngajin tai hang tin ke ti ke nye par tu limi par na pas te me hol o ha ye ngatil ngang ne sin tanga mu hek inure chang ro je si nel ngi ta ka sa ta i ta fan kan ro ta la harap nga yen
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं और प्रस्तुत है तेलुगु कार्यक्रम।
2: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम। श्रोतलंदरिकी कृष्णाष्टमी शुभाकांक्षलु।

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि

0: ESLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भूकक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
2: नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5,053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में डीएनए जांच भी शुरू की गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
3: अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम।
2: उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। वहीं गुजरात में भी धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ जगहों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान व्यक्त किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 551 अंक के उछाल के साथ 76,704 जबकि निफ्टी 69 अंक बढ़कर 23,943 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं अमर प्रेम फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। इस गीत के लिए हमें SMS आया है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी हिमाक्ष का। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। हमारे ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत।
1: राधा चली ओ चली ओ चली गोकुल की राधा चली ओ चली चली चली गोकुल की राधा चली करके श्रृंगार वे जमुना के तट पे।

0: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं महुआ फिल्म का गीत। इस गीत को सुनवाने के लिए हमें SMS भेजा है पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा ने।

मिस मैरी, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अब हम आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का गीत। गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान।

दादा बाबू रोड गिरिगिट झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहद, मिफा नवाज़, बेबी चाहत और सादिया। हमारे ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म महबूबा का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में हम शामिल कर रहे हैं गोपाल कृष्ण फिल्म का ये गीत। गीत की फरमाइश की है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।

0: Effective normal life in several districts including Chhatarpur, Satna, Mandla and Mehar. Five gates of the Bargi Dam in Jabalpur have been opened to release water, while water is also being released from the Kutli Dam in Chhatarpur. The weather department has issued an orange alert for very heavy rainfall in several districts including Shivpuri, Guna, Chhatarpur, Sagar, Damoh and Narmadapuram. Heavy rain is likely to continue in many parts of the state over the next 2 days. Abhinav Goyal, Akashwani News, Bhopal.
1: 10 major rivers, including the Ganga, Punpun, Gandak and Kosi, are in spate in Bihar. Flood conditions prevail in 16 districts of the state.
2: In Bihar, 8 rivers, including the Ganga, are flowing above the danger mark. The water level of the Ganga in Patna continues to rise. With increasing backwater pressure in the Punpun and Dardha rivers, surveillance of the protective embankments has been intensified. Instructions have been issued to keep all 108 gates of the Patna flood protection wall closed. Floodwaters are rapidly spreading into low-lying areas of the affected districts, disrupting road connectivity in rural areas. Breaches in embankments at Asthava in Nalanda district and Dhanrua in Patna district have submerged hundreds of acres of crops. In view of the rising water levels of the rivers, the Disaster Management Department has directed Patna and 7 other districts to remain on high alert. In view of the seriousness of the situation, Chief Minister Samrat Chaudhary will conduct an aerial survey of the flood-affected areas today. Savita Parikh, Akashwani News, Patna.
1: At the China Masters Badminton, the Indian pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty will take on Danish pair of Kim Astrup and Anders Karup Rasmussen this evening for a place in the semi-finals in Shenzhen, China. The match is estimated to begin at 4:10 p.m. IST. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Country gets first sub-geosynchronized Earth observation satellite. Prime Minister Narendra Modi says successful launch reflects growing capabilities of India's space sector. BRICS Chief Justices Forum begins in New Delhi to deliberate upon contemporary issues concerning justice delivery and dispute resolution. Centre to make available DNA profiling services for first-degree relatives of missing persons in Nepal. Death toll due to devastating floods rises to 1,282. Festival of Janmashtami being celebrated across the country. IMD predicts heavy to very heavy rainfall over Madhya Pradesh till tomorrow. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्री हरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
4: I am very happy to announce that GSLV.
5: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत

0: भी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
2: ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। इस दौरान प्रतिनिधियों को अनुभव और विचारों के आदान प्रदान का भी अवसर मिलेगा। यह 3 दिवसीय मंच न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली में युद्ध बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली के लोगों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी दोस्ती ने भारत इटली रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों के लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए करीबी सहयोग जारी रखने को लेकर उत्साहित हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहें, expert@AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1282 लोगों की मृत्यु हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट।
5: नवलपरा से पूर्व में 218, नवलपरा से पश्चिम में 208, नुआकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, थाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई है। काठमांडू के अस्पतालों में 2 लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में डीएनए जांच भी शुरू कर दी गई है। इस बीच एक बचाव अभियान में त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना की सुरंग से 2 को जीवित बचाया गया। ये लोग फोटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद 10 दिनों से सुरंग में फंसे हुए थे। आपातकालीन दल ने अब तक 12,000 से अधिक लोगों को बचाया है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई थी। इससे उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गाँवों में भारी तबाही हुई। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
2: इस बीच भारत ने 2 विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है। अभियान के दौरान 572 क्षमा करें कृपया इसको दोबारा सुन लें अभियान के दौरान 575 से अधिक प्राथमिकी भी दर्ज की गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार यह अभियान 12 जून से 31 अगस्त तक चलाया गया। आयोग ने राज्य सरकारों, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए काम किया, साथ ही बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत 13 खाद्य प्रसंस्करण

0: इकाइयों को बंद किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सरदवत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के तहत अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए ₹3,000 सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
1: आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: गुजरात में भी धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन और संदेश मानवता को सत्य, धर्म, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR हिंदी न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश से फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर सहित कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी, गुना, छतरपुर, सागर, दमोह और नर्मदापुरम सहित कई जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: बिहार में गंगा, पुनपुन, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।
3: बिहार में गंगा समेत 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना सुरक्षा दीवार के सभी 108 गेट बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है। नालंदा के अस्थावा और पटना के धनरुआ में तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने पटना समेत 8 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान है। चीन के शेंजन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला डेनमार्क के किम

0: एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन से होगा। मैच भारतीय समयानुसार लगभग शाम 4 बजे शुरू होगा। सात्विक और चिराग ने कल फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव और क्रिस्टो पोपोव को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं पुरुष सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चेक यू से हार के साथ ही किदाम्बी श्रीकांत की चुनौती समाप्त हो गई। महिला सिंगल्स में भी भारत की चुनौती कल समाप्त हो गई। तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम में जारी पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा, इजराइल और चेक गणराज्य को हराया। टूर्नामेंट 6 सितंबर तक चलेगा। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो एएआईबी ने एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली उड़ान से जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट जारी कर दी है। दिल्ली आ रही इस उड़ान को रास्ते में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था, जिसमें कुछ यात्रियों को चोटें आई थीं। रिपोर्ट के अनुसार उड़ान के दोनों क्रू सदस्यों का साइको एक्टिव पदार्थों की जांच की गई। पायलट इन कमांड का प्रारंभिक नमूना नॉन नेगेटिव पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी और अन्य पहलुओं पर विस्तृत जांच चल रही है। एयर इंडिया ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों के किसी भी उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई भी की जाती है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज दोपहर में तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 526 अंक के उछाल से 76,680, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 64 अंक बढ़कर 23,938 पर कारोबार कर रहा था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ एक स्थानों में तेज हवाओं के साथ वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय दोपहर के 2:31 और 10 सेकंड हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए माफ़ कीजिएगा श्रोताओं, दूसरी सभा में शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम चार बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती FM 3 विजयपुरम
1: 100.9 आपका हम सफर।

0: कदम छोटे हो या बड़े, रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल पाने के लिए चलते रहना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक लाइव फोन आउट कार्यक्रम है, इसलिए आप हमें कॉल ना करें, हम स्टूडियो से ही आपको कॉल करेंगे। और आज जिन श्रोताओं से हम जुड़ेंगे उनकी सूची पहले से ही तैयार है, तो देर ना करते हुए बात करते हैं आज के हमारे पहले कॉलर से। हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: मैडम नमस्ते।
0: जी नमस्कार। हेलो,
1: अनिल कवाचे।
0: जी अनिल कवाचे, कैसे हैं आप?
1: राज बैंक के है। सबसे पहले आपको
0: हेलो।
1: हाँ
0: जी, हमारी आवाज सुनाई दे रही है आपको?
1: हाँ बिल्कुल सुनाई दे रही है आपकी आवाज।
0: हेलो।
1: हाँ आवाज आ रही है आपकी। हेलो
0: हेलो।
1: हाँ हाँ मुझे आवाज आ रही है। हेलो
0: श्रोताओं, किसी कारणवश इस श्रोता से हमारी बात नहीं हो पा रही है, तो आइए सुनते हैं हमारी पसंद का ये गीत।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, हमारी बात हो रही है लतीफ़ अहमद से।
1: हाँ, लतीफ़ अहमद रैना कश्मीर सोनामर्ग।
0: जी, कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं।
1: शुक्रिया, धन्यवाद।
0: जी लतीफ़ जी, क्या हाल चाल है कश्मीर का?
1: बस ठीक ठाक है मैडम, अभी तो सुहाना ही मौसम है।
0: जी लतीफ़ जी, आपने इतनी दूर से कॉल किया, पहले हमें गीत बता दीजिए, कौन सा
1: फिल्म का
0: गाना आप
1: नाम है
0: सुनना चाहते
1: सुल्तान।
0: हैं?
1: फिल्म का नाम है सुल्तान, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरे खून, ए सुल्तान। सलमान
0: जी
1: खान का फिल्म है ये।
0: जी जी गीत हम सुनवाएंगे।
1: ये
0: जी
1: गाना पिक्चर हुआ था सोनामर्ग में।
0: अच्छा
1: हाँ, इसकी शूटिंग भी हुआ सोनामर्ग में। हाँ
0: जी
1: जी,
0: जी गीत हम सुनवाएंगे। लतीफ जी, आप करते क्या हैं?
1: बस मैं तो खेती किसानी करता हूँ मैडम।
0: अच्छा, खेती किसानी
1: हाँ
0: में
1: जी,
0: आप क्या करते हैं?
1: यहाँ पे ज्यादा खेती, एक ही फसल तो साल में बनता है। यहाँ तो शरद एरिया है, बहुत ठंडा होता है यहाँ मौसम।
0: क्या सेब उगाते
1: ये
0: हैं?
1: दाल, ये यहाँ पे मक्का और धान होता है बस, और ये दो फसल बनते हैं।
0: अच्छा, तो
1: हाँ
0: चलिए
1: जी,
0: लतीफ जी, आपसे हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम
1: और
0: सुनवाते
1: कुछ
0: हैं
1: साथी
0: आपकी
1: है?
0: पसंद का ये गीत।
1: कुछ साथी है?

0: हेलो डियर फ्रेंड्स,
1: हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार। हितेंद्र दास जी बोल रहे हैं?
1: हाँ, मैं हितेंद्र दास बोल रहा हूँ,
0: जी हितेंद्र
1: ग्राम
0: दास जी, आप
1: कुदाल।
0: कैसे हैं?
1: हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: जी मैं भी ठीक हूँ। और कार्यक्रम में आपका स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। हितेंद्र
1: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: दास जी, आप क्या करते हैं?
1: मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ और ऐसे घर में बच्चों को पढ़ाता हूँ।
0: जी आज स्कूल की छुट्टी होगी ना?
1: हाँ, आज जन्माष्टमी है, इसीलिए स्कूल बंद है।
0: आप जन्म

0: अष्टमी का त्यौहार कैसे मना रहे हैं?
1: मरहुआ मंदिर में हो रहा है, ये महिला लोग कर रहे
0: जी
1: हैं गाना बाजना, और कृष्ण जन्माष्टमी का स्तोत्र संस्कृत मंत्र सब कुछ हो रहा है, और बाद में प्रसाद खिचड़ी फल मूल सब कुछ वह सब हो रहा है।
0: जी आपने कहा कि आप स्कूल के टीचर हैं, तो आपको बच्चों को पढ़ाना कैसा लगता है?
1: हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना।
0: जी हितेन दास जी, आप अपना गीत बता दीजिए।
1: मेरा आज गीत, जैसे आज जन्माष्टमी है इसीलिए जन्माष्टमी रिलेटेड एक गाना सुनना चाहता हूँ। गाना का बोल है, जसमती मैया से बोलो नंदलाला, और मूवी का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम।
0: जी बहुत ही प्यारा गीत है, तो आइए सुनते हैं। कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ, थैंक यू मैम।

0: नंदलाला, और मूवी का नाम है सत्तम शिवम सुंदरम।
1: जी, बहुत ही प्यारा गीत है, तो आइए सुनते हैं। कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हाँ, थैंक यू मैम।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स
1: जी मैम नमस्ते। मेरा
0: जी
1: नाम है सप्तमी विष्णु कुंडू। मैं सादीपुर विजयपुरम से बोल रही हूँ।
0: जी सप्तमी जी, आपको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं और कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू मैम। पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ पूरा मेरा आकाशवाणी टीम को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो, और मेरा सुनने वाले जितने भाई बहन है सबके लिए जन्माष्टमी का बहुत बहुत शुभकामना है मेरे तरफ से।
0: जी आप सबको भी शुभकामनाएं हमारे पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से। बताइए सप्तमी जी, आप करती क्या हैं?
1: मैं एक बिजनेस वुमन हूँ। पहले मैं हाउसवाइफ थी, आज एक मैं बिजनेस वुमन बन गई हूँ, क्योंकि मेरा हस्बैंड का डेथ होने के बाद उनका एक बिजनेस है जो उसको अभी मुझे ही देखभाल करना पड़ती है, तो मैं उसके साथ ही चल रही हूँ।
0: जी बहुत अच्छा सप्तमी जी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो आप गीत बता दीजिए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
1: आज मुझे सुनना है हम साथ साथ।

0: फिल्म का जो एक गाना है मैया जशोदा वाला, क्योंकि ये गाना का साथ मेरे और मेरे बेटी का बहुत एक तालमेल संगम है जो दिलों में हमेशा मेरा गुनगुनाती है। मैं अगर आपका कृपा है तो मैं थोड़ा सा अपना कहानी बता दूं।
1: जी बताइए जरूर।
0: ये गाना का जो मैया जशोदा वाला डांस है, ये मेरा जिंदगी का लास्ट डांस है, क्योंकि मैं शादी से पहले डांस करती थी, तो ये मेरा आखिरी डांस था, वो भी जन्माष्टमी में मैंने किया था। और मेरा बेटी का ये फर्स्ट डांस था जो स्कूल अपना नर्सरी में जब उसका प्रोग्राम हुआ कृष्णा जन्माष्टमी में, तो
1: जी जी
0: इसका ये पहला डांस था।
1: जी ये तो इत्तेफाक हो गया जी, तो आप तो बहुत खुश
0: जी
1: हुई होंगी।
0: जी और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब मैंने उसको ये गाना मैंने ही इसको सिखाई, तो उसको जब स्टेज में गया तो टीचर ने बोला, स्मिता शुरू किया, ओ मुझे देख रही है, क्योंकि मम्मी तो अभी कुछ नहीं कर रही है, तो वो चुप से खा रहा था। मैंने वहां से उसको दिखाया तब तो वो अपना डांस शुरू कर दी।
1: जी चलिए सप्तमी जी, हमें आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, तो आइए सुनवाते हैं
0: मुझे
1: आपकी
0: भी,
1: पसंद का ये बहुत ही प्यारा सा गीत।
0: और मैं एक मिनट में मैं थोड़ा मेरा भाई बहन को याद करती हूँ, अगर आपको इजाजत हो तो।
1: जी जी जरूर।
0: पहले तो आप सुनेंगे, फिर मेरा जितना आकाशवाणी मेरा पूरा टीम है वो सुनेगा, और मेरा भाई लोग में है संतोष जी है, आशुतोष जी है, प्रेमोजीत जी है, अविनाश जी है, अनुप जी है, राकेश जी है, गणेश दास जी है, और बाकी जितना सुनने वाला है स्वतंत्री भाई लोग के, और बहन में भारती जी है, जया जी है, मोनिका जी भी है, और शीतला जी है, संगीता जी, सुतपा जी है, और जिसमें सुनने वाले मेरे पाए प्यारे भाई बहन, सबके लिए आज जन्माष्टमी का बहुत बहुत शुभकामना है। थैंक यू मैम मुझे कॉल करने के लिए।
1: ओके धन्यवाद।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा

0: से संपर्क करें।
1: श्रोताओं, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स में, और हम फिर जुड़ चुके हैं आपके साथ। चलिए बात करते हैं हमारे और भी दोस्तों के साथ। हेलो डियर फ्रेंड्स।
2: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून मैम।
1: गुड आफ्टरनून, मोनिका जी बोल रही हैं श्री विजयपुरम से।
2: जी मैडम, मैं सतानखाई से मोनिका बोल रही हूँ।
1: जी मोनिका जी, कैसी हैं आप?
2: मैं तो बहुत अच्छी हूँ मैडम, आप कैसी हैं?
1: जी हम सब भी ठीक हैं। आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और सुनने वाले सभी दोस्तों को भी।
1: जी आप सबको भी कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं।
2: थैंक यू मैडम।
1: और मोनिका जी क्या करती हैं आप?
2: मैं तो हाउस वाइफ हूँ, घर पे रहती हूँ।
1: और क्या क्या शौक हैं आपके?
2: मुझे घूमना फिरना, गाना सुनने का।
1: जी रेडियो के कार्यक्रम सुनती हैं आप?
2: सभी सुनती हूँ मैडम, मुझे रेडियो का कार्यक्रम बहुत बहुत अच्छे लगते हैं मैडम।
1: कौन सा कार्यक्रम को सुनना आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है?
2: हेलो डियर फ्रेंड, हेलो फ्रेंड।
1: अच्छा, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपको बहुत ज्यादा पसंद है?
2: रेडियो के माध्यम से सबसे दोस्ती हो गई मैडम।
1: जी चलिए बहुत अच्छी बात है। जी मोनिका जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
2: हम लोग यहाँ पर मंदिर में पूजा हो रही है जन्माष्टमी की।
1: जी जी
2: जी
1: जी, आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
2: लगान मूवी का।
1: जी लगान फिल्म का।
2: राधा कैसे ना
1: जी, जी तो मोनिका जी चलिए सुनवाते हैं आपकी।
2: नाम चाहती हूं।
1: जी जी जरूर लीजिए।
2: सबसे पहले तो आप है आकाशवाणी परिवार के सभी सदस्य के साथ, मेरी भांजी विपल, दीपक दसर, बुद्धि मैडम, और शादीपुर से सप्तमी कुंडो दीदी है, स्कूल लाइन से पूर्णिमा मैडम है, विम्बलीगंज से शिप्रा है, बमसर से जया दीदी है, पश्चिम बंगाल से गणेश दास जी है, नैनी चरण जी है, राकेश जी है, बसंती लाल जी है, दिल्ली से धर्मवीर भैया जी है, उनके दो बच्चे है, और पंजाब से पुरुषोत्तम अंकल है, और सुनने वाले सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहती है।
1: जी चलिए मोनिका जी, हम आपको सुनवाते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।
2: थैंक यू मैडम कॉल करने के लिए।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स
1: हेलो डियर फ्रेंड, हिसार से राजेंद्र सैनी बोल रहा हूँ जी। नमस्कार जी। अच्छा
0: जी, नमस्कार राजेंद्र जी, कैसे हैं आप?
1: जी, और जन्माष्टमी की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और आपकी पूरी टीम को। हाँ जी, धन्यवाद आपका हमारा कॉल आज आपने शामिल किया, और आपकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं।
0: जी, आप सबको भी आकाशवाणी पूरे परिवार की तरफ से आप सबको भी कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। जी, आप राजेंद्र जी, आप हरियाणा में
1: धन्यवाद।
0: रहते हैं?
1: हाँ जी, कार्यक्रम आपका रेगुलर सुनता हूँ मैं, आपका अच्छा लगता है। और ये जो आपने विषय बना रखा है कार्यक्रम फोनिंग का, जो आप फोन करते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। हर किसी का फोन इसमें मिल जाता है और लगने की संभावना रहती है।
0: कौन सा कार्यक्रम आपको ज़्यादा अच्छा लगता है?
1: फोनिंग कार्यक्रम में ही ज्यादा जी व्यंजन अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें सबको हो जाता है। और भी कार्यक्रम सुनते हैं शाम को, जैसे एक उसमें आवाज आती है आपकी, जो भाषा वो समझ में नहीं आती, जो वो कार्यक्रम नहीं सुनते। बाकी गीतों के और भी सारे कार्यक्रम सुनते।
0: जी, हरियाणा का मौसम कैसा है अभी?
1: मौसम एक महीने से जी गर्मी यहाँ काफी बढ़ी हुई है, बरसात हो ही नहीं रही, तो पानी की बहुत, धान की फसल अक्सर यहाँ बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें पानी की बहुत ज्यादा कमी आ रही है इसमें।
0: जी, आप खेती किसानी का काम करते हैं राजेंद्र जी?
1: हाँ जी, खेती किसानी का काम करता हूँ और मैं, और साथ में सिलाई का काम भी करता हूँ।
0: जी, खेतों में क्या उगाते हैं आप?
1: खेती में गेहूँ है, जैसे ये चावल है, और ये कपास की फसल अक्सर ज्यादा होती है, चावल और कपास ये ज्यादा होती है यहाँ पे।

0: जी
1: और सब्जियां सब्जियां भी सब हर तरह की सब्जियां भी यहाँ, गोभी आलू सब कुछ पैदा होती।
0: जी जो खेती किसानी का काम करते हुए आप रेडियो के माध्यम से गीत भी सुनते रहते हैं।
1: गीत सुनते अच्छा लगता है, और खेती बाड़ी के कार्यक्रम की जो उनकी भी जानकारी हम आकाशवाणियों से लेते रहते हैं और पूछते रहते हैं, फोन करते रहते हैं, जो बहुत अच्छी जानकारी अभी मिलती है। आकाशवाणी तो एक खेती बाड़ी के लिए है ना, खेती किसानी के लिए तो बहुत ही अच्छा इसमें है, क्योंकि जो अनुभवी डॉक्टर होते हैं वो ना तो दवाइयाँ और सही तरीके से जो सही चीज बताते हैं।
0: जी
1: जी, और आज गाना सुना दिया ना,
0: जी जी
1: कृष्ण
0: गीत गीत बता
1: गोपाल
0: दीजिए।
1: कृष्ण फिल्म का।
0: जी जी
1: हाँ
0: गोपाल
1: जी,
0: कृष्ण
1: तेरी
0: फिल्म का कौन सा गीत?
1: हाँ जी, तेरी माया का ना पाया कोई भेद, मैं महिमा तेरी तो ही जाने, रविंदर जैन जी की आवाज में।
0: जी तो चलिए
1: और हाँ जी, हमारे श्रोता भी धर्मवीर जी भी गांधीनगर से, वो भी बहुत आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं और बहुत तारीफ भी करते रहते हैं आपके कार्यक्रम
0: जी धन्यवाद आपका हमारा
1: में।
0: कार्यक्रम सुनने के लिए और कार्यक्रम को पसंद करने के लिए, और
1: आपका
0: कार्यक्रम
1: भी बहुत, आपका
0: में
1: भी
0: हमसे
1: बहुत
0: जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजेंद्र
1: नमस्कार,
0: जी, तो चलिए हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: धन्यवाद।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स।
1: हाँ जी, नमस्कार मैडम जी।
0: जी नमस्कार, हमारी बात हो रही है लोकेंद्र वर्मा जी से।
1: जी बिल्कुल मैडम जी,
0: जी लोकेंद्र जी, कैसे हैं आप?
1: बस बिल्कुल मैडम जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, आपके आकाशवाणी से जुड़े हुए रहते हैं। काफी दिनों के बाद में आज कॉल पे मेरे पास में कॉल बैक आया है, बहुत खुशी हो रही है।
0: जी
1: जी मैडम जी,
0: जी आप उज्जैन में रहते हैं?
1: हाँ जी मैडम, उज्जैन में रहता हूँ और उज्जैन ये महाकालेश्वर जी ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर उज्जैन में,
0: जी
1: और इसके अलावा यहाँ पर सांदीपनि आश्रम है एक,
0: जी
1: जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी ने 64 दिन की पढ़ाई की थी उस
0: जी
1: आश्रम में, क्योंकि
0: जी
1: मथुरा
0: जी
1: में उन्होंने जन्म लिया था। उनकी जो 64 दिन की शिक्षा दीक्षा है वो यहाँ उज्जैन में सांदीपनि आश्रम में हुई थी, और यहीं पर उनकी सुदामा जी से दोस्ती हुई थी
0: अच्छा
1: इसी आश्रम में। तभी
0: जी
1: कृष्ण सुदामा जी की दोस्ती मतलब चल रही है, कृष्ण सुदामा जी की दोस्ताना।
0: जी जी आप उस जगह पर गए थे?
1: हाँ मैडम, मैं तो हमारे शहर के अंदर ही है ना, तो हम तो जाते ही रहते हैं।
0: जी।
1: और इसके अलावा आश्रम से 15 किलोमीटर दूर एक नारायणा गांव है,
0: जी
1: उस नारायणा गांव का ऐसा इतिहास बताता है कि जो सांदीपनि आश्रम से जो गुरु माता है उन्होंने कृष्ण भगवान और सुधा जी में जी को लकड़ी चुनने के लिए भेजा था जंगल में कि लकड़ी बीन कर लाओ, तो वो लकड़ी बीनते बीनते 15 किलोमीटर दूर वो नारायणा गांव में चले गए थे, और वहां पर जो बारिश हो गई थी तो वो उस गांव में ही रुक गए थे एक पेड़ के पेड़ पर चढ़कर, और उन्होंने जो गठरियां नीचे रखी थी ना लकड़ी की, वो गठरियों से आज भी वह पेड़ बन गया है बड़ा, वो गठरी वहां रखी थी जो,
0: जी
1: तो आज के दिन वहां मेला लगता है, तो अभी हम उस मेले में ही जा रहे हैं।
0: जी चलिए, अच्छी बात है। लोकेंद्र वर्मा जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी उज्जैन के बारे में और श्री कृष्ण जी के बारे में।
1: हाँ,
0: तो
1: और
0: गीत कौन सा सुनना चाहते हैं आप हमें बता
1: गाना
0: दीजिए।
1: ये सुनना है मैडम जी, वो अपने अमर प्रेम फिल्म का
0: जी अमर प्रिय फिल्म
1: उसमें
0: का कौन
1: गाना है
0: सा
1: ना,
0: गीत?
1: बड़ा नटखट है नंदलाला, बड़ा नटखट है ये कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया।
0: जी, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं।
1: जी मैडम जी धन्यवाद। और कुछ दोस्त भी हैं मैडम जी,
0: जी,
1: शारदा प्रसाद जी हैं, राजू यादव जी हैं, रामचरण विश्वकर्मा जी हैं, सतीश रघुवंशी हैं, श्रीपाल गोयल जी हैं, सोनू जी हैं हमारे, करणवीर पॉल जी हैं, रमेश प्रजापति जी हैं, और हमारे ये दोस्त हैं दिलीप पाहुजा जी हैं, अनु कुमार भट्टाचार्य जी, ये सभी मित्र हैं हमारे हेलो फरमाई सेक्टर रेडियो सत्ता ग्रुप के मैडम।
0: चलिए आपके सभी मित्रों के साथ और आपके साथ सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत
1: जी,
0: गीत।
1: आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जन्माष्टमी की।
0: जी धन्यवाद, और आपको भी शुभकामना।
1: जी धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स
1: हेलो, नमस्ते।
0: जी, नमस्कार। हमारी बात हो रही है श्री विजयपुरम से ओसामा जी के साथ।
1: जी, मैं ओसामा अली बात कर रहा हूँ। मैं स्कूल लाइन पे रहता हूँ
0: जी, क्या करते हैं ओसामा जी?
1: जी। मैं यूट्यूब में वीडियोस बनाता हूँ।
0: जी, किस तरह के वीडियो सब बनाते हैं?
1: मैं व्लॉगिंग के बनाता हूँ और गाने के बनाता हूँ, और मैं गाने के शौकीन रखता हूँ, और जैसे कि मास्टर बनाना है गाने के, वैसे सब काम करता हूँ।
0: जी हाँ जी, ओसामा जी, हमारे पास समय की कमी है तो गीत बता दीजिए।
1: जी, गीत है टू फिल्म है टू स्टेट्स, और गीत है मस्त मगन।
0: जी हाँ, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। लीजिए, सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी, धन्यवाद।

0: श्रोताओं, अभी आप हमारा लाइव फोन आउट कार्यक्रम सुन रहे थे। हेलो डियर फ्रेंड्स,
1: हेलो डियर फ्रेंड्स।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर बाद के 3:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारा फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

नमस्कार श्रोताओं, फिल्मी गीतों के इस विशेष कार्यक्रम में हम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। श्रोताओं, कृष्ण एक ऐसा नाम जिसमें प्रेम भी है, भक्ति भी है, शरारत भी है और जीवन को सही राह दिखाने वाला ज्ञान भी। कभी नन्हे काना बनकर माँ यशोदा की आंगन में मुस्कुराए तो कभी मुरली की मधुर तान से पूरे ब्रज को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो आइए इस पावन अवसर पर भक्ति और संगीत से सजाते हैं आज की हमारी ये महफिल।

श्रोताओं, कहते हैं जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। नटखट कान्हा की मुस्कान में बचपन की मासूमियत है, उनकी बांसुरी की धुन में प्रेम है और उनके उपदेशों में जीवन का गहरा सार छिपा है। तो आइए याद करें उसी मुरलीधर नंदलाल और यशोदा नंदन को, जिनका नाम लेते ही मन भक्ति और आनंद से भर उठता है।

कहा जाता है कि श्री कृष्ण केवल प्रेम के देवता ही नहीं बल्कि संगीत, नृत्य और आनंद के भी प्रतीक हैं। उनकी मुरली की धुन हो या राधा के प्रेम का रंग, हर एहसास में कृष्ण की एक सुंदर छवि दिखाई देती है।

श्रोताओं, कृष्ण और राधा का प्रेम भारतीय संस्कृति में प्रेम, समर्पण और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। राधा के बिना कृष्ण की कथा अधूरी है और कृष्ण के बिना राधा का नाम अधूरा।

मैया यशोदा के दुल्हारे कन्हैया की। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप से ही पूरे गोकुल को अपनी शरारतों और मुस्कान से मोह लिया था। कभी माखन की मटकी फोड़ना, कभी गोपियों को सताना और कभी मैया यशोदा से अपनी मासूमियत भरी बातें करना। कान्हा की हर बात लीला और अपने आप में प्रेम से आनंद से भरी है।

श्रोताओं, कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आते ही मन में बस एक ही छवि उभरती है, नंदलाल की माखन चुराते नटखट कान्हा की।

100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे इस स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजने वाले हैं, अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। गीतों भरी कहानी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे साहित्य जगत में रश्मि रविजा के नाम से प्रसिद्ध लेखिका रश्मि वर्मा की कहानी आखिर कब तक।
1: स्नेहा घर में सबसे छोटी थी, तितली की तरह सबके आसपास मंडराती रहती, चिड़िया की तरह फुदक कर कभी घर के अंदर आती तो कभी बाहर। घर वालों की ही नहीं पड़ोसियों की भी बड़ी प्यारी थी। उसके कॉलेज से घर आते ही शर्मा चाची अक्सर कभी गरम हलवे कभी गरम पोहे की प्लेट भेज देती। जब स्नेहा पूछती, आपको कैसे पता चल जाता है मैं घर आ गई? अरे तेरे पंचम सुर के आलाप से पता चल जाता है, जितनी देर घर में तू होती है तेरे गाने की मीठी आवाज आती रहती है। कहीं मेढक भी ना आ जाए कि यही मेरी मेढकी कहाँ गा रही है। ये उससे 2 साल बड़े भाई की आवाज थी। भैया कहकर स्नेहा झपटी तो भैया के हाथों में उसकी चोटी आ गई। बोल और झपटेगी कटखनी बिल्ली कहीं की? वह उसकी चोटी थोड़ी और खींचता और वो चिल्ला पड़ती, माँ। माँ की आवाज सुनते ही भैया चोटी छोड़ किताब में आंखें गड़ा लेता। शर्मा चाची के बच्चे बड़े थे और नौकरी पर दूसरे शहर चले गए थे। उन्हें उन सब की ये शरारत बड़ी भली लगती। माँ दोनों को डांटती तो शर्मा चाची उन्हें समझाती, जाने दो शिवानी की माँ रौनक बनी रहती है, एक दिन मेरे जैसे तरसोगी कि लड़ने को ही सही बच्चे पास तो होते। स्नेहा भैया को जीप चढ़ाकर भाग जाती तो भैया फिर से किताबें फेंक उसके पीछे भागता। माँ सर पर हाथ रख लेती, ओह कोई किसी से कम नहीं। भैया हमेशा चढ़ाता खिजाता रहता, पर स्नेहा को कॉलेज के लिए देर होती तो बाइक से झट कॉलेज छोड़ाता। रात में उसके साथ बैठकर उसे मैथ समझाता। अगर भैया की पेन उसके हाथों गुम हो गई तो पापा जी से शिकायत कर देता। पापा की यूं तो वो सबसे लाडली थी, पर न्याय करने के लिए पापा उसे झूठ मूठ का भी डांट देते तो भैया को ही बुरा लग जाता, फिर उसके लिए चॉकलेट जरूर लेकर आता।

रानी तो जैसे उसकी फ्रेंड फिलोसफर गाइड ही थी। बचपन से ही स्नेहा की किताबों पर कवर लगा देना, उसकी किताबों की रैक ठीक कर देना, अपने दुपट्टे से उसकी गुड़िया की सुंदर साड़ी बना देना, होमवर्क में मदद करना, उसकी शैतानियों को हमेशा छुपाना। दीदी ये सारा कुछ उसके लिए करती। सहेली से लड़ाई हो जाए तो आंसू भी दीदी ही पोंछती। बुआ जब भी यहाँ आती माँ को समझाती, सुनीता इसे भी कुछ रसोई का काम सिखाओ, कल को पराए घर जाएगी, क्या कहेंगे सब कि घर वाले ने कुछ सिखाया ही नहीं है, खानदान का नाम कटवा देगी लड़की। माँ बुआ की बात रखने को उसे किचन में भेज देती और दीदी को आवाज लगाते, शिवानी आज सारा काम गुड़िया से ही करवाना। उसका अच्छा भला नाम था स्नेहा, पर सब गुड़िया ही कहते। जब दोस्त उसे चढ़ाते तो उसे बहुत गुस्सा आता, पर घर वालों को कौन समझाए, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को भी कोई गुड़िया बुलाता है? वो किचन में जाती तो जरूर, पर दरवाजे की ओट में नॉवेल पढ़ती रहती। और दीदी भी मुस्कुराकर

नहीं कहती, बल्कि माँ की आहट सुनते ही उसे आगाह कर देती और स्नेहा झूठ मूठ बर्तन उठाने रखने लगती। माँ को कुछ दाल में काला नजर आता। वो स्नेहा को अविश्वास से देखती तो स्नेहा पलट कर पूछती, क्या हुआ? तुमने कहा ना किचन में काम करने को, तो कर रही हूँ। कल मैथ्स का क्लास टेस्ट है, प्रैक्टिस करनी है, पर जाने दो। कम नंबर आए तो क्या, किचन का काम सीखना ज्यादा जरूरी है ना, आखिर खानदान की नाक का सवाल है। माँ कहती, अच्छा बाबा जा, बहुत काम कर लिया, जा तू पढ़। शिवानी तू भी जा, अब किचन मैं देखती हूँ। स्नेहा चुपके से नॉवेल उठा दीदी की तरफ एक मुस्कुराहट फेंक भाग जाती। दीदी की शादी हो गई तो जैसे स्नेहा पर प्यार न्योछावर करने वाले एक और जन की बढ़ोतरी हो गई। जीजा जी की कोई छोटी बहन नहीं थी, वे अपनी छोटी बहन का सारा शौक उसके जरिए ही पूरी करते। अब कॉलेज में सहेलियां उसका नया बैग, नई सैंडल, नई ड्रेस सब हैरानी से देखती और वो इतरा कर कहती, मेरे जीजा जी लाए हैं बंबई से।

कि बुआ एक रिश्ता ले आई। बड़े अच्छे लोग हैं, लड़का अफसर है, ज्यादा मांग नहीं उनकी, बस देखे भाले घर की लड़की चाहते हैं। मुझसे बरसों का परिचय है। मैंने गुड़िया की बात चलाई तो झट मान गए। पिताजी को लगता था अभी बहुत छोटी है, भैया उसे और आगे पढ़ने देने किसी नौकरी के बाद ही शादी के पक्ष में था। पर बुआ पिताजी से बड़ी थी, माँ की तरह उन्हें पाला था, पिताजी की एक न चली उनके सामने। दीदी की तो शादी होते ही मानो उसके लिए यह घर पराया हो गया। यहाँ के मामलों में वह मुंह नहीं खोलती। नेहा ने जब थोड़ा डरते हुए दीदी को फोन किया, दीदी वहां सबसे बड़ी हो जाऊंगी मैं, कैसे संभालूंगी सब? संभालना क्या है, कोई छोटे बच्चे थोड़े ही हैं वे सब। अच्छा साथ रहेगा, खुश रहेगी तू। यहाँ पर मुंबई में देख, तेरे जीजा जी ऑफिस चले जाते हैं तो सारा दिन मैं अकेले पड़ी रहती हूँ, खाना तक खाने का मन नहीं होता। ज्वाइंट फैमिली में समय अच्छा कट जाता है। फिर दीदी अपने ही अकेलेपन का रोना रोने लगती। दीदी के समझाने पर उसके मन का डर भी जाता रहा। कहीं ये भी लग रहा था, क्या रौब होगा, बड़ी भाभी बनेगी वह, यहाँ तो सबसे छोटा समझ सब बस लाड प्यार ही लुटाते हैं, कोई गंभीरता से लेता ही नहीं। पर ससुराल वालों की गंभीरता का अंदाजा उसे एंगेजमेंट से ही होने लगा। पास में बैठे अजनबी ने जैसे बस एक उचटती सी नजर डाली उस पर, वरना कई कजिन्स को देख चुकी थी, लड़के जैसे बात करने के बहाने ही ढूंढते रहते। शादी की रस्मों में भी होने वाले पति को गंभीर मुखमुद्रा में ही देखा, सहेलियों को ज्यादा मजाक करने की हिम्मत भी नहीं हुई।

माँ ने समझाया था, ससुराल में जल्दी से उठकर सबके लिए चाय बना देना, यहाँ की तरह 8 बजे तक मत सोती रहना। नेहा को भी दिखाना था, वह अपने घर की छोटी लाडली है तो क्या, जिम्मेवारियां संभालना उसे खूब आता है। सुबह ही उठ नहा धो किचन में पहुंच गई, चाय बनाकर ट्रे लेकर निकल ही रही थी कि सासू माँ ने टोक दिया, बहू पल्ला रखो सर पर। अब थोड़ी देर वो इसी

उलझी रही। माथे पर पल्लू रख, जैसे ही ट्रे थामे पल्लू गिर जाए, फिर से पल्लू संभाले। सासू माँ गौर से यह सब देखती रही, पर कहा नहीं कि रहने दो। आखिरकार उसने पल्लू ठुड्डी से दबाया और किसी तरह आगे बढ़ी, तो लगे कि साड़ी अभी पाँव में उलझ जाएगी और वो गिर जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैनेज किया। ससुर जी के सामने ट्रे रखी, सोचा ससुर जी खुश हो जाएंगे और दो घड़ी पास बिठा बातें करेंगे। पर उन्होंने अखबार उठाकर एक बार देखा और फिर अखबार में नजरें गड़ा ली। जब स्नेहा ने बड़ी नम्रता से पूछा, चीनी कितनी चम्मच, सपाट स्वर में उत्तर मिला, एक चम्मच। स्नेहा निराश सी बाहर चली आई, फिर भी उसने कोशिश नहीं छोड़ी। खाने के समय पास खड़ी रहती, पूछती रहती, और सब्जी दूं, रायता दूं, कोई ना कोई बात शुरू कर देती। आज गर्मी बहुत है, आपको ऑफिस से आते वक्त ज्यादा ट्रैफिक तो नहीं मिला? एक दिन ससुर जी ने रूखे स्वर में कह दिया, कुछ चाहिए तो कह दूंगा। स्नेहा का मन बुझ गया। शायद ससुर जी को अपने रूटीन में बदलाव पसंद न था। वे घर में किसी से भी बहुत कम बातें किया करते थे। ससुर जी की आदत उनके बड़े बेटे को भी थी। घर में सिर्फ खाने कपड़े से ही मतलब था। दोनों बाप बेटे टीवी पर समाचार देखते और जैसे ही सासू जी के सीरियल देखने का वक्त होता, दोनों उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते। वह असमंजस में पड़ जाती, पति के साथ कमरे में बैठे या सासू माँ के साथ सीरियल देखे। पति तो अपने लैपटॉप पर दफ्तर का कोई काम लिए बैठे होते। वह कमरे, ड्राइंग रूम और किचन का चक्कर लगाती रहती।

शादी से पहले इतनी खुश थी स्नेहा। हम उम्र देवर और ननद हैं, उसने सोचा था बढ़िया वक्त कटेगा। ननद की कोई बहन नहीं, वो सारा प्यार उड़ेल देगी। पर ननद कॉलेज से सीधी अपने कमरे में जाती और मोबाइल से चिपक जाती। एक आध बार स्नेहा ने कमरे में जाकर बात करने की कोशिश भी की तो ननद ने बड़े अनमने भाव से उत्तर दिया, और वो पलटकर दरवाजे तक भी नहीं पहुंची थी कि ननद पीठ फेरे किसी को फोन पर कह रही थी, अरे भाभी थी कॉलेज से आओ, नहीं कि बहाने से आ जाती हैं कमरे में, इत्मीनान से फोन पर बात भी ना कर सको। स्नेहा ने ननद से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश छोड़ ही दी। उसे लगा था देवर हमेशा भाभियों के प्यारे होते हैं। एक दिन देवर अपने दोस्त के साथ सिनेमा देखने गए थे। सास और पति के मना करने के बावजूद वो उसका इंतजार करती रही, ड्राइंग रूम में चैनल बदलकर समय काटती रही। देवर ने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और उसे ड्राइंग रूम में देख एक मिनट के लिए हेडफोन निकाला और पूछा, अरे भाभी नींद नहीं आ रही आपको, या भैया से लड़ाई हो गई है? हाँ। और फिर कान में हेडफोन लगाए गाने पर झूमते सर हिलाता अपने कमरे में चला गया। स्नेहा ने ही कमरे के दरवाजे पर जाकर पूछा, खाना गर्म करती हूँ, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए। ओह क्या भाभी, आप कितनी ओल्ड फैशन है, मुझे खाना होगा तो माइक्रोवेव में गर्म कर लूंगा, वैसे अक्सर मैं खाना खाकर ही आता हूँ। गुड नाइट भाभी एंड थैंक्स फॉर आस्किंग, कहकर वापस हेडफोन लगा झूमना शुरू कर दिया। इस घर का रंग ढंग ही निराला था। सब एक छत के नीचे रहते थे पर सबकी दुनिया अलग थी। स्नेहा सबकी दुनिया में कदम रखने की कोशिश करती पर दरवाजा बंद पाती, और फिर बंद दरवाजे से टकरा बार बार उसका मन लहूलुहान हो जाता। स्नेहा के पति को घूमने फिरने का कोई शौक नहीं था, उनका देखा जाना अपना शहर था, उन्हें कहीं भी जाने का कोई उत्साह नहीं रहता। शुरू शुरू में स्नेहा ही जिद कर बाहर जाने पर मजबूर करती। पति बड़े बेमन से गंभीर चेहरा बनाए साथ हो लेते, पर हर जगह कोई ना कोई परिचित मिल जाता और फिर तो पति की मुखमुद्रा बिल्कुल बदल जाती। इतने गर्मजोशी से मिलते और बातों का वो सिलसिला शुरू होता कि स्नेहा की उपस्थिति ही भूल जाते। वो उपेक्षित सा महसूस करती, स्नेहा को गुस्सा भी आता, इन सब से कैसे इतना घुल मिलकर बातें कर रहे हैं, उससे बातें करते जुबान पर ताले पड़ जाते हैं। धीरे धीरे बाहर घूमने जाने का उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया।

बस एक सहारा दीदी और सहेलियों के फोन का रहता। फोन पर बात करते वो अपने आसपास का पूरा परिवेश भूल जाती। लगता वही कॉलेज का लॉन है या फिर घर की छत। ऐसे ही एक रविवार की सुबह देर तक बातें की थी दीदी से। दीदी ने उन्हें मुंबई बुलाया था और पतिदेव ने भी हामी भर दी थी। स्नेहा का मन इतना खुश-खुश था कि बाथरूम में देर तक गुनगुनाते हुए नहाती रही। बाहर निकली तब भी गीले बालों को झटकते गाना जारी रहा। कुछ देर बाद जब लंबे बाल पीछे की तरफ फेंक सामने देखा तो पाया दरवाजे पर खड़े पति उसे गौर से देख रहे थे। एक सल्लज मुस्कान फैल गई उसके चेहरे पर। ये ध्यान भी आया यहाँ आकर तो वह गाना ही भूल गई है। पति ने पहली बार उसका गाना सुना है। शायद अभी आकर बाहों में भर लेंगे और कहेंगे कितनी मीठी आवाज है तुम्हारी, हरदम क्यों नहीं गाती। इंतजार में जैसे उसकी सांसें भी रुक गई थी पर कोई आहट नहीं हुई। नजरें उठाकर देखा तो पति अखबार उठा कुर्सी की तरफ जा रहे थे। उसे अपनी तरफ देखता पाकर बोले, इतनी जोर से गा रही हो, बगल के कमरे में ही माँ पापा हैं, कुछ तो सोचा करो। और अखबार फैला लिया सामने। स्नेहा का मन हुआ वो भी पैर पटकती हुई बाहर चली जाए, पर फिर सोचा आज इतवार है और दिन बस शुरू ही हुआ है, सारा दिन अबोला रह जाएगा। किसी तरह आंसू जज्ब करते हुए स्वर को सामान्य बनाते हुए पूछा, दीदी ने बुलाया है, आपने भी हाँ कहा है, कब चलेंगे मुंबई? छुट्टी कहाँ है, इतना काम है दफ्तर में, कैसे जा सकता हूँ? अब वो हाँ तो कहना ही पड़ता है ना, बाद में कोई बहाना बना देंगे। और ये कहते हुए अखबार में डूब गए। स्नेहा जैसे आसमान से गिरी। कितनी खुश थी वह, कितनी सारी योजनाएं बना डाली, अब अपने आंसू रोकना मुश्किल हो गया। किचन में जाकर ढेर सारे प्याज काट डाले। सास ने आश्चर्य से पूछा, इतने सारे प्याज? आंखें नाक पोछते हुए इतना ही कहा, हाँ आज सोचा आलू दो प्याजा बना दूं।

उसने तय कर लिया, अगर घर वालों की अपनी दुनिया है तो वो भी अपनी अलग दुनिया बसा लेगी और खुश रहेगी उसमें, और खाली वक्त में अखबारों के कॉलम देखने लगी, या तो नौकरी करेगी या फिर कोई बढ़िया सा कोर्स। अभी यह तलाश जारी ही थी कि उसे माँ बनने की खुशखबरी मिली। लगा अब घर का माहौल बदल जाएगा। नन्हे बेटे की किलकारी ने घर में रौनक तो ला दी, पर स्नेहा की दिनचर्या में ज्यादा बदलाव नहीं आया, बल्कि नई जिम्मेवारियां और शुमार हो गईं। बेटे को तो सब खूब खिलाते, सारा दिन घर का कोई न कोई सदस्य बेटे को गोद में उठाए फिरता, पर काम सारा स्नेहा के जिम्मे था। स्नेहा जरा इसके कपड़े बदल दो, दूध का टाइम हो गया है, दूध पिला दो, लगता है नींद आ रही है, सुला दो। वो नींद में ही उसके पास आता। कभी कभी स्नेहा को लगने लगता कहीं बड़ा होकर ये ना सोचे माँ सिर्फ काम के लिए ही होती है और बाकी सब लोग साथ खेलने को। मितभाषी पति भी बेटे के साथ खूब खेलते। एक दिन प्रैम खरीद कर ले आए, वो बहुत खुश हुई। अब प्रैम में बेटे को लेटा दोनों पति पत्नी पार्क में उसे घुमाने के लिए ले जाया करेंगे। लेकिन दूसरे दिन ही पति ने ऑफिस से आते ही जल्दी से कपड़े बदले और बोले, इसे तैयार कर दो, जरा मैं घुमा कर ले आता हूँ। वो मन महसूस कर रह गई, हाँ उसे तो किचन देखना है, वो कैसे जा सकती है। जब देवर की भी शादी तय हो गई तो सबसे ज्यादा खुशी स्नेहा को ही। अब उसे एक सहेली मिल जाएगी, वो भी तो दूसरे घर से आएगी, यहाँ के तौर तरीके से अनभिज्ञ। तय कर लिया स्नेहा ने, उसे वो कभी अकेलापन नहीं महसूस होने देगी। पर स्नेहा ने पाया देवरानी ने तो इस घर में घुलने मिलने की कोई कोशिश ही नहीं।

की। पहले दिन ही इतनी देर तक सोती रही कि सासू जी को उसे जगाने के लिए ननद को भेजना पड़ा। और जब देवरानी से नहा धोकर नाश्ते के लिए बाहर आने के लिए कहा गया तो उसने कह दिया, अभी तो तैयार होने में बहुत समय लगेगा, दोनों जन का नाश्ता कमरे में ही भिजवा दी जाए। ननद पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। मेरे हाथों नाश्ता भिजवाने की तो सोचना भी मत। सासू जी ने असहाय हो स्नेहा की तरफ देखा तो वो भागकर कामवाली को बुला लाई। शुक्र है स्नेहा ने उसे अतिरिक्त पैसे का वायदा कर दिन भर के लिए रोक लिया था, वरना स्नेहा को ही देवर देवरानी की सेवा में हाजिर होना पड़ता। देवरानी ने बाद में भी कभी जल्दी उठने की कोशिश नहीं की, बल्कि स्नेहा से ही कहती, आप कैसे इतनी जल्दी उठ जाती हैं, मेरी तो आंख ही नहीं खुलती। क्या बताए स्नेहा, मायके में वो भी तो देर तक सोया करती थी। देवर के ऑफिस जाने के बाद ही देवरानी नहा धोकर बाहर आती। सासू माँ को कुछ टोकने का मौका ही नहीं मिलता और तब तक किचन का सारा काम सिमट गया होता। थोड़ी देर इधर उधर घूम फिर वो अपने कमरे में चली जाती, अपने कपड़े जेवर चूड़ियां संभालती रहती, कमरे को सजाती रहती। सास नंदे भी तारीफ करती, कितने सुंदर ढंग से सजाकर अपना कमरा रखती है। स्नेहा इशारा समझ जाती पर कह नहीं पाती, मैं तो सारा घर ही संभालती रहती हूँ, अपने कमरे की बारी ही नहीं आती। देवरानी दिन में सो जाती और सोकर उठते ही तैयार होना शुरू कर देती। देवर ऑफिस से आ बमुश्किल चाय पीते और पत्नी श्री को लेकर घूमने निकल जाते। सास भी स्नेह से निहारते हुए कहती, एकदम राम सीता सी जोड़ी है, दोनों के ही एक से शौक, नीले घूमने फिरने का शौकीन, बहू भी वैसे ही मिली है। निशान तो अपने भोले राम है, उसे कभी भी घूमने फिरने का शौक नहीं रहा। उनके लाड़ले के कोई शौक ना होने की वजह से स्नेहा कितनी घुटती रही इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता।

देवरानी किसी दिन घूमने नहीं जाती और किचन में आ कभी सब्जी बना देती तो पूरे घर में शोर हो जाता। खाने के टेबल पर सासू जी इंगित करती, आज तो सब्जी छोटी बहू ने बनाई है। और हमेशा मौन रहकर खाना खाने वाले ससुर जी भी बोल पड़ते, अच्छा थोड़ी और तो बहुत बढ़िया बनी है। पतिदेव को लगता उन्हें भी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। वे भी स्वाद लेते हुए बोलते, सचमुच बहुत बढ़िया बनी है। देवर इस प्रशंसा पर ऐसे फूलते जैसे उनकी ही तारीफ हो रही हो। आज सिंहा बेटे को थपकते थपकते खुद भी लेट गई थी, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। शारीरिक थकान से ज्यादा मानसिक थकान थी शायद। वह अपने दिन याद कर रही थी जब नई नई इस घर में आई थी, सबके आसपास मंडराती रहती पर कोई नोटिस भी नहीं लेता, बल्कि अक्सर उपेक्षा ही झेलनी पड़ती। और आज यही देवरानी अपने कमरे में ही बनी रहती है तो पति ससुर सब पूछ लेते हैं, अंकिता नहीं दिख रही, उसकी तबीयत तो ठीक है? स्नेहा से तो किसी ने नहीं पूछा कभी, पर उसने कभी पूछने का मौका भी तो नहीं दिया। बुखार में भी गोलियां लेकर काम में लगी रहती, क्या ये ठीक किया उसने? मायके में किसी ने उसे कभी सामने बिठाकर नहीं समझाया, पर उम्र की सीढ़ियां पार करते हुए कहानियों में, धर्म ग्रंथों में पढ़कर, फिल्मों में देखकर, अपनी दादी नानी बुआ मौसी माँ को देखकर यह एहसास अपने आप मन में घर करता गया कि लड़की को त्याग करना चाहिए, अपनी इच्छा के ऊपर दूसरों की इच्छा सर्वोपरि रखनी चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए, सारा दुख हंसते हंसते सह जाना चाहिए, ससुराल के नियम कायदे बिना ना नुकुर के अपना लेने चाहिए। और स्नेहा ने इन सब में कुछ ज्यादा ही बहादुरी दिखाई, खुद आगे बढ़कर सारे काम अपने ऊपर ले लिए। और अब 2 साल में तो ससुर जी की दवाई, सासू जी की धूप अगरबत्ती, देवर की जीन्स, पति की तो कोई भी चीज अगर ना मिले तो सब एक ही पुकार लगाते, और वो भी दौड़ दौड़ कर सबकी जरूरतें पूरी करती रहती। पर इन सब में इसकी स्थिति इस अदृश्य हवा की तरह हो गई जिसके बिना कोई जी नहीं सकता। सबको उसकी जरूरत है पर हवा दिखाई नहीं देती, हवा के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं महसूस होती, उसका ख्याल रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही उसकी अहमियत समझ में आती है, क्योंकि वो तो हमेशा अपने आसपास बनी हुई है। खुद को मिटाकर वह उस घर में इस तरह घुल मिल गई है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। आज जब अंकिता अलग थलग बनी हुई है तो सब उसका अस्तित्व महसूस तो कर रहे हैं, क्या जग की यही रीत है? सामने झुके लोगों की ही उपेक्षा की जाती है, और अगर कोई आपकी ही उपेक्षा करने लगे तब जाकर उसका अस्तित्व महसूस होता है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 5 बजे हैं। हमारी दूसरी सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं तमिल कार्यक्रम।

अभी आप बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्री विजयपुरम। इस समय संध्या के 6 बजे हैं। पेश है कृषि जगत कार्यक्रम।

0: खेतों की मिट्टी जब माथे पर लगती है तो वो धूल नहीं इस देश का चंदन बन जाती है, और जब हमारे किसान भाई बहन खेत में उतरते हैं तो धरती भी मुस्कुरा उठती है। नमस्कार मेरे किसान भाइयों और बहनों, मैं हूँ आपकी दोस्त रागिनी, और कृषि जगत के आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। कहते हैं कि एक छोटा सा अच्छा विचार आपके जीने का पूरा तरीका बदल सकता है, और कृषि जगत की तो रीत ही यही है कि हम कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा एक नेक विचार से ही करते हैं। तो साथियों, आइए सुनते हैं क्या है नेक विचार। शिक्षा आपको रास्ता बताती है, मेहनत उस रास्ते पर चलाती है, और अच्छा कर्म आपको मंजिल तक पहुंचाता है। जी हाँ, शिक्षा, मेहनत और कर्म, ये तीनों ही सफलता के आधार है। तो किसान साथियों, इस नेक विचार के बाद अब बारी है आज के प्रश्न की, और आज का प्रश्न है, ब्रुसुलोसिस पशुओं की एक संक्रामक बीमारी है या नहीं। इस प्रश्न को फिर एक बार दोहराते हैं, ब्रुसुलोसिस पशुओं की एक संक्रामक बीमारी है या नहीं। किसान साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप सोचते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, इसका सही उत्तर हम आपको कार्यक्रम के अंत से पहले जरूर बताएंगे।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर अब तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए साथियों, आज कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने वाला महापर्व है। हाथ में मुरली, माखन का स्वाद और दिल में बसता है जिसका आशीर्वाद। जब तक सूरज और चांद रहेगा, इस धरती पर कन्हैया का नाम रहेगा। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की अनंत शुभकामनाएं। तो किसान साथियों, आइए सुनते हैं एक वार्ता। विषय है श्री कृष्ण के जीवन संदेश और उसकी महत्वता। वार्ताकार है कुमारी राखी।
4: जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो रक्षा बंधन के बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के आठवें पुत्र थे। मथुरा नगरी का राजा कंस था, जो कि बहुत अत्याचारी था। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। एक समय आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का आठवां पुत्र उसका वध करेगा। यह सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके पति वासुदेव सहित कालकोठरी में डाल दिया। कंस ने देवकी के कृष्ण से पहले के 7 बच्चों को मार डाला। जब देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया, तब भगवान विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया कि वे श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा माता और नंद बाबा के पास पहुंचा आए, जहां वह अपने मामा कंस से सुरक्षित रह सकेगा। श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा माता और नंद बाबा की देखरेख में हुआ। बस उनके जन्म की खुशी में तभी से प्रतिवर्ष जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म देवकी और वासुदेव के घर हुआ था। उस समय मथुरा का राजा कंस था, जो देवकी का भाई भी था। यह भविष्यवाणी

0: सुनकर कि देवकी की आठवीं संतान कंस की मृत्यु का कारण बनेगी, कंस ने देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया। उसने उनके 6 बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। जब उनके 8वें पुत्र कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के सभी सैनिक सो गए। वासुदेव ने दिव्य शक्तियों की सहायता से यमुना नदी पार करके कृष्ण को मथुरा से दूर ले गए। उन्होंने कृष्ण को वृंदावन में नंद बाबा और यशोदा के घर पर छोड़ दिया। यशोदा द्वारा जन्मी बच्ची को लेकर वे मथुरा लौट आए। उन्होंने बच्ची को कंस को सौंप दिया। हमेशा की तरह दुष्ट राजा कंस ने बच्ची को मारने का प्रयास किया। जैसे ही उसने तलवार उठाई, बच्ची उड़ गई और योग माया में परिवर्तित हो गई। उसने कंस को यह भी चेतावनी दी कि जिस बालक से उसकी मृत्यु होगी उसका जन्म हो चुका है। इस प्रकार कृष्ण बच गए और उन्होंने अपना बचपन वृंदावन में सुरक्षित रूप से बिताया। अंत में उन्होंने अपने मामा कंस का वध कर दिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिरों को खास तौर पर सजाया जाता है। जन्माष्टमी पर पूरे दिन व्रत का विधान है। जन्माष्टमी पर सभी 12 बजे तक व्रत रखते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती है और भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और रासलीला का आयोजन होता है। जन्माष्टमी के दिन देश में अनेक जगह दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। दही हांडी प्रतियोगिता में सभी जगह के बाल गोविंदा भाग लेते हैं। छाछ, दही आदि से भरी एक मटकी रस्सी की सहायता से आसमान में लटका भी दी जाती है और बाल गोविंदाओं द्वारा मटकी फोड़ने का प्रयास किया जाता है। दही हांडी प्रतियोगिता में विजेता टीम को उचित इनाम दिए जाते हैं। जो विजेता टीम मटकी फोड़ने में सफल हो जाती है वह इनाम का हकदार होती है। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने का विधान है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार फलाहार करना चाहिए। कोई भी भगवान हमें भूखा रहने के लिए नहीं कहता, इसलिए अपनी श्रद्धा अनुसार व्रत करें। पूरे दिन व्रत में कुछ भी ना खाने से आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए हमें श्री कृष्ण के संदेशों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए।
1: साथियों, अभी आप श्री कृष्ण के जीवन संदेश और उसकी महत्वता पर वार्ता सुन रहे थे और वार्ताकार थी कुमारी राखी। तो किसान साथियों, जरूरी बातें तो हो गई, चलिए अब मन को थोड़ा सा बहलाया जाए। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: साथियों, अभी आपने एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। आशा करते हैं कि यह गीत आपको बहुत पसंद आई होगी।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को

0: राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: किसान साथियों, आइए सुनते हैं टिकाऊ कृषि हेतु जैव विविधता की भूमिका पर एक चर्चा। किसान साथियों, आज बात करते हैं जैव विविधता की। जैव विविधता का मतलब है खेत में, खेत के आसपास अलग अलग तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, फसलें और कीटों का होना। जैव विविधता के चार बड़े फायदे। पहला है, मिट्टी की सेहत बनती है। अलग अलग फसलें जैसे दाल, अनाज, सब्जी लगाने से मिट्टी के पोषक तत्व बने रहते हैं। केचुआ, बैक्टीरिया जैसे जीव मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। एक ही फसल बार बार लगाने से मिट्टी कमजोर हो जाती है। दूसरा है, कीटों से प्राकृतिक बचाव। जब खेत में कई तरह के पौधे और जीव होते हैं तो एक कीट दूसरे कीट को खा जाता है, जैसे मेंढक, चिड़िया, मकड़ी फसल के हानिकारक कीटों को खा जाती है। इससे जहर वाली दवा का खर्च बचता है। तीसरा है, परागण में मदद। मधुमक्खी, तितली जैसे जीव फूलों का परागण करते हैं। अगर ये जीव नहीं होंगे तो फल सब्जी नहीं बनेगी। सरसों, आम, लौकी जैसे फसलों के लिए ये बहुत जरूरी है। और चौथा है, मौसम के बदलाव से बचाव। अगर एक फसल खराब भी हो जाए तो दूसरी फसल बच सकती है। जैसे विविधता से किसान को नुकसान कम होता है और कमाई बनी रहती है। किसान साथियों, जैव विविधता कैसे बढ़ाएं, क्या करें? साथियों, पहला है, फसल चक्र अपनाएं। एक ही फसल लगातार ना लगाएं, धान, दाल, सब्जी, हरी खाद लगाएं। दूसरा है, मिश्रित खेती। एक साथ दो या तीन फसलें जैसे नारियल, काली मिर्च, हल्दी लगाएं। तीसरा है, मेड़ पर पेड़ लगाएं, नीम, सहजन। इससे पक्षियों को घर मिलेगा और मेड़ भी अच्छी रहेगी। चौथा, देसी बीज बैंक बनाएं। गांव में 10 से 15 किसान मिलकर देसी बीज जमा करें। और पांचवा है, खेत में तालाब जीवामृत, जैसे तालाब में मछली पाले, बदक भी पाले। तो किसान साथियों, याद रखिए, जैव विविधता खेती का बीमा है। जितने ज्यादा जीव जंतु और फसलें खेत में होंगी, खेती उतनी ही टिकाऊ होगी और खर्चा उतना ही कम होगा। साथियों, अभी आप सुन रहे थे टिकाऊ कृषि हेतु जैव विविधता की भूमिका पर चर्चा।
2: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes or hidden destinations, your story matters. Create a 1-to-3-minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
1: किसान साथियों, आइए लेते हैं मौसम पर आधारित कृषि परामर्श।
3: अगले दिनों के दौरान दक्षिण अंडमान में 7 से 15 मिलीमीटर तक हल्की वर्षा होने की संभावना है और कुल वर्षा 56 मिलीमीटर तक रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 85 से 88% तथा न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 73 से 74% के बीच रहने की उम्मीद है। हवा की गति 18 से 27 किलोमीटर प्रति घंटा रहने तथा हवा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम से पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में चलने की संभावना है और आकाश का आंशिक रूप से बादल युक्त और बादलों से ढके रहने की संभावना है। इस मौसम के दौरान गरज चमक के साथ तेज हवाओं के कारण खड़ी फसलों के गिरने, युवा पौधों के झुकने और उखड़ने, फलों के गिरने तथा बागवानी फसलों को नुकसान होने के साथ साथ खेतों में रखी कटी हुई उपज खिसकने या क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि खेतों में 2-3 सेंटीमीटर पानी का स्तर बनाए रखें। बालियां बनने की प्रारंभिक अवस्था में नाइट्रोजन की दूसरी मात्रा 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति

0: हेक्टेयर की दर से दी जानी चाहिए। यदि पत्ती लपेटक कीट का प्रकोप दिखाई दे तो नीम तेल 3 से 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। बागवानी करने वाले किसानों को इस बात का ध्यान रखना है कि समय पर निराई गुड़ाई करें, तत्पश्चात अनुशंसित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करें। इसके बाद पौधों में उचित वृद्धि एवं राइजोम के विकास के लिए पौधों के चारों ओर मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। समय पर निराई गुड़ाई करें तथा अनुशंसित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करें। इसके बाद पौधों की उचित वृद्धि एवं राइजोम के विकास के लिए पौधों के चारों ओर मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि कुबड़ के घाव यानी हम सोर के उपचार के लिए पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन और डाईथाई कार्बामाइजीन की गोली दें तथा घाव होने पर घाव पर नीम का तेल और मरहम लगाएं। मछली पालकों को सलाह दी जाती है कि तालाब में मेड़ तथा पानी के प्रवेश एवं निकास संरचनाओं का निरीक्षण करें और भेड़ों को मजबूत और सुरक्षित रखें। यदि पानी की गुणवत्ता उपयुक्त हो तो प्राकृतिक प्लवक उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद को बोरी में भरकर तालाब में रखें। मछलियों की गतिविधियां एवं पानी की स्थिति के अनुसार सामान्य रूप से आहार दें।
1: साथियों, अभी आपने मौसम पर आधारित ये कृषि परामर्श सुना, जो हमें केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सौजन्य से प्राप्त हुई थी।
2: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: किसान साथियों, जैसे कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपसे प्रश्न पूछा था कि ब्रुसेलोसिस पशुओं की एक संक्रामक बीमारी है या नहीं। साथियों, और इस प्रश्न का सही उत्तर है, ब्रुसेलोसिस पशुओं की एक संक्रामक बीमारी है या एक पशुओं से दूसरे में फैलता है। उम्मीद है इस प्रश्नोत्तर के माध्यम से आप सभी भाइयों को इस सवाल का सही उत्तर पता चल गया होगा।

तो किसान भाइयों, बातों और जानकारियों का यह सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अब दीजिए अपनी इस दोस्त रागिनी को इजाजत। नमस्कार।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना

0: आप अभी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: श्रोताओं, अभी आप कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत श्री कृष्ण के जीवन संदेश और उसकी महत्वता पर बातचीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय घड़ी में ठीक 6:30 हुए हैं। अब पेश है समाचार तरंगिणी।
3: आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है समाचार तरंगिणी। इस अंक में मन की बात, जल जीवन मिशन 2.0, आयुष्मान भारत योजना और जन्माष्टमी महोत्सव।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दे।
1: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग विशेषकर हमारे युवा बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
1: देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गाँव है पटवाई। वहाँ आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के इस मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन का आग्रह किया।
1: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार

0: जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करे। यह शिखर सम्मेलन केंद्र और राज्यों को एक मंच पर लाकर जल क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श और समयबद्ध कार्य योजनाएं तैयार करने पर केंद्रित है। शिखर सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर चर्चा की जा रही है। इनमें जल अवसंरचना परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन, जल संचय, जन भागीदारी, कैच द रेन, पेयजल प्रणालियों के जल स्रोतों की स्थिरता और जल जीवन मिशन 2.0 शामिल है। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए केंद्र और राज्यों के बीच साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। सांसद विष्णुपद रे ने आयुष्मान भारत योजना के तहत रेफर मरीजों के लिए आर्थिक सहायता और सुविधाएं बढ़ाने पर केंद्र सरकार और प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। श्री विजयपुरम स्थित सांसद कार्यालय में कल हुई प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 21 अक्टूबर को उन्होंने उपराज्यपाल के समक्ष रेफर मरीजों की सुविधाओं से जुड़े मुद्दे उठाए थे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्वास्थ्य समिति की बैठक में इन पर विचार के बाद रेफरल दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया। स्वास्थ्य सचिव ने 28 अगस्त को इसकी लिखित जानकारी दी। ये बदलाव 1 अगस्त से प्रभावी हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब आय सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है और पात्र मरीजों को 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज मिलेगा। मरीज और एक सहायक को इकोनॉमी क्लास हवाई यात्रा के लिए अधिकतम 40,000 रुपए मिलेंगे। सभी रेफर मरीजों को 1,000 रुपए प्रतिदिन अधिकतम 20 दिन का मजदूरी नुकसान मुआवजा मिलेगा। स्ट्रेचर का खर्च प्रशासन अग्रिम देगा और एयरपोर्ट या हार्बर से एम्बुलेंस या कैब के लिए 3,000 रुपए तक की प्रतिपूर्ति होगी। गंभीर मरीजों के एयर एम्बुलेंस का खर्च प्रशासन उठाएगा और सरकारी एजेंसियों के साथ व्यवस्था अंतिम चरण में है। जीवीपंत अस्पताल में MRI सुविधा अंतिम चरण में है। दवाओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए 30 करोड़ रुपए अलग रखे जाएंगे। सांसद ने कहा कि इन फैसलों से मरीजों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिलेगी।
2: अंडमान निकोबार द्वीपों भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी ने अंडमान निकोबार द्वीपों का एक तोहफा दिया है, खास करके आशा वर्कर का जो नीचे में काम कर रहा है। उन लोग को ऐसे 700 कार्यकर्ता अंडमान में आशा वर्कर है, इनको मिलता था पर मंथ 2,000 रुपया। एक कैशलेस ट्रीटमेंट, मैक्सिमम इनकम सीलिंग, कौन आदमी इसको आयुष्मान कार्ड में आएगा, इंटरटेनमेंट ऑफ इनकम 3 लाख अभी कर दिया 5 लाख, 5 लाख इनकम लिमिट के अंदर में सब आयुष्मान कार्ड में आएगा। इस आयुष्मान कार्ड आने के बाद में वो एंटरटेनमेंट बन जाएगा। अभी बेनिफिट क्या क्या मिला भारत को अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, जो आयुष्मान भारत में आयुष्मान कार्ड में आएगा 21 अक्टूबर 25 साल से पेशेंट को स्पेशल ट्रीटमेंट फैसिलिटीज मिलेगा, आर्थिक मदद मिलेगा।
1: माई भारत श्री विजयपुरम की ओर से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के खिलाड़ियों और युवाओं से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। सांसद विष्णुपद रे, दक्षिण अंडमान की उपायुक्त पूर्वा गर्ग, सूचना प्रसार एवं पर्यटन के सचिव विनायक चमाड़िया सहित माई भारत के अधिकारी, युवा प्रतिनिधि, स्वयंसेवक और खेल प्रेमी मौजूद रहे। कार्यक्रम में खेल जगत से जुड़ी हस्तियों संध्या क्रिस्पोटा, कर्मा टोपो और KP मामू के साथ साथ भारतीय खेल प्राधिकरण श्री विजयपुरम के खिलाड़ियों और एथलीटों ने भी भाग लिया। प्रधानमंत्री के वर्चुअल संवाद के बाद यूथ आइकन हरीश कुमार ने खिलाड़ियों के साथ परिचर्चा का संचालन किया। सांसद विष्णुपद रे ने प्रतिभागियों को स्वस्थ और नशा मुक्त समाज के लिए शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान सचिव विनायक चमाड़िया ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में भी जानकारी दी।
3: बहुत कम लोग जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनको बलिदान देने के बारे में नहीं पता है। आप एक छोटा सा वहाँ के हैं, आप वहाँ का एक छोटा सा रील बना सकते हैं, छोटा सा कंटेंट बना सकते हैं। कितने लोगों ने यहाँ पे अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करी थी फॉर आवर फ्रीडम स्ट्रगल। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं इस पार्ट ऑफ अंडमान में रह रहा हूँ जहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है।
1: दक्षिण अंडमान जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से 5 दिवसीय सी पोर्ट इमिग्रेशन प्रक्रियाओं पर व्यवहारिक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य इमिग्रेशन से संबंधित पुलिस कर्मियों की क्षमताओं और परिचालन तैयारियों को मजबूत करना है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक श्वेता के सुगाथन ने किया। यह कार्यक्रम ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन चेन्नई के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते

वे पुलिस अधीक्षक ने इस बात पर जोर दिया कि इमिग्रेशन संबंधी जिम्मेदारियों के प्रभावी निष्पादन के लिए केवल नियमों का ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यवहारिक समझ, पेशेवर दक्षता और मैदानी स्तर पर समन्वित कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों, विदेशी क्रू सदस्यों और जहाजों से जुड़ी इमिग्रेशन औपचारिकताओं को सुव्यवस्थित, कुशल, एक समान और कानूनी रूप से अनुपालन योग्य तरीके से पूरा करने पर बल दिया। कार्यक्रम में मध्योत्तर अंडमान और निकोबार जिलों 20 पुलिस कर्मियों के साथ साथ इमिग्रेशन एवं फॉरेनर्स शाखा के कर्मी भाग ले रहे हैं। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पहल जेम्स ऑफ इंडिया प्रतियोगिता के तहत हाल ही में महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर RVR मूर्ति ने अपने संबोधन में कहा कि यह प्रतियोगिता दूर दराज के क्षेत्रों के बीच दूरी को कम करने और सभी को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए समान अवसर प्रदान करता है। मुख्य अतिथि नीरजा गुप्ता ने जेम्स ऑफ इंडिया प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान का उद्देश्य देश भर के युवा और उभरती हुई प्रतिभाओं को खोजना, उन्हें तराशना और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। इस दौरान उन्होंने छात्रों को पंजीकरण प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और दिशा निर्देशों के बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान एक विशेष प्रश्नोत्तर सत्र का भी आयोजन किया गया। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन की ओर से विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय के तहत आयोजित की जा रही DCSP कप अंतर गांव सांस्कृतिक प्रतियोगिता के दूसरे दिन वंडूर समुद्र तट पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में फ्रारगंज तहसील के विभिन्न पंचायतों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने नशीली पदार्थों के दुष्प्रभावों और नशा मुक्त समाज के निर्माण के संदेश के साथ नुक्कड़ नाटक तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान जिला पुलिस अधीक्षक श्वेता के सुगाथन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। DCAC कप अंतर गांव सांस्कृतिक प्रतियोगिता का फाइनल कल कार्विन स्कोप तट पर आयोजित किया जाएगा। ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्था और स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के तहत ग्रामीण युवाओं के लिए मुफ्त आवासीय और रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण के लिए अभियान शुरू किया गया है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 100% प्लेसमेंट सहायता प्रदान की जाएगी। ऐश्वर्य विज्ञान एजुकेशनल सोसाइटी निल्लोर और फोरेरियन एजुकेशनल सोसाइटी कोलकाता के तहत विभिन्न ट्रेडों में 8वीं से 12वीं पास विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। पुरुष उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 35 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह के सदस्य AAY, BPL, PHH, मनरेगा और PMJAY के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण परिवार पात्र है। सभी प्रशिक्षण केंद्र दक्षिण अंडमान में स्थित है। निदेशालय की टीमें ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर युवाओं को मार्गदर्शन और दस्तावेज प्रक्रिया में सहायता प्रदान करेगी। इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी और नामांकन के लिए अपने संबंधित खंड विकास अधिकारी या ग्रामीण विकास निदेशालय से संपर्क कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं भारत के सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत को नई दिशा देती है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवद् गीता की शिक्षाएं कठिन समय में सही निर्णय लेने और नैतिक मूल्यों पर कायम रहने की प्रेरणा देती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता कर्तव्य, नैतिकता, न्याय, साहस और जीवन में संतुलन का मार्ग दिखाती है। पूरे देश के साथ द्वीप समूह में भी आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर द्वीपों के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल DK जोशी ने द्वीपवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का प्रतीक है, जिनका जीवन और शाश्वत शिक्षाएं मानवता को ज्ञान, नैतिक साहस और निस्वार्थ सेवा को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। श्रीमद् भगवत गीता का कालजयी संदेश भक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना, सत्य का पालन करना और हर चुनौती का धैर्य के साथ सामना करना हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बना हुआ है।

इसके साथ ही समाचार तरंगिणी का ये अंक समाप्त हुआ। समाचार तरंगिणी आकाशवाणी श्री विजयपुरम के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से तैयार की जाती है। वाचिका अनीता क्रिकेटा, संपादक और प्रस्तुतकर्ता पी हरिकृष्णा।

अभी आप समाचार तरंगिणी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की तीसरी कड़ी।

नमस्कार शानदार श्रोताओं, नवे प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका आरजे चेतन और आज हम एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हर परिवार का हृदय, सकारात्मक माता पिता, बच्चे का संचार। अरे चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, घर के कामकाज निपटा रहे हो या बस फुर्सत में हो, आइए बात करें कि कैसे संचार आपके परिवार में चीजों को पूरी तरह से बदल सकता है। दोस्तों आइए अब छोटों के साथ अपने संबंधों में प्रभावी संचार के जादू की खोज के लिए एक यात्रा शुरू करें। इसकी कल्पना करें एक ऐसी दुनिया जहां आपके बच्चों के साथ आपकी बातचीत एक अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया नृत्य की तरह होती है, जो कि एक सकारात्मक और मजबूत संबंध बनाती है। इस एपिसोड में हम ये विश्लेषण करने जा रहे हैं कि माता पिता बच्चों के बीच संचार क्लिक को क्या गतिशील बनाता है। ये सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है, ये समझ, विश्वास और प्यार का ताना बाना बुनने के बारे में है। सकारात्मक माता पिता बच्चों के संचार के रहस्यों का उजागर करेंगे, ये पता लगाएंगे कि यह पूरे परिवार के लिए कैसे माहौल तैयार करता है। एक ऐसे घर की कल्पना करें जहां हर कोई सुना, महत्व और जुड़ाव महसूस करता हो। जैसे ही हम पारिवारिक गतिशील पर संचार के प्रभाव को देखते हैं, हमें पता चलेगा कि कैसे हमारे बात करने के तरीके में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों हम यही नहीं रुक रहे हैं, यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है। हम आपको आपकी दैनिक बातचीत में कनेक्शन के उस अतिरिक्त स्पर्श को शामिल करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों से लैस करेंगे। इस आरामदायक माहौल की कल्पना करें जहां आपके बच्चे जानते हैं कि उनके विचार मायने रखते हैं और उनकी आवाज परिवार के मिश्रण में गूंजती है। ये सिर्फ उन पर बात करने के बारे में नहीं है, ये समझ और समर्थन की इस गर्माहट को बुनने के बारे में है। सबसे अच्छे समय में पालन पोषण करना एक कठिन काम है, यह समय लेने वाला भी है। पालन पोषण में कई जिम्मेदारियां शामिल होती है, जैसे बच्चों की देखभाल करना, उन्हें वह सिखाना जो उन्हें जानना आवश्यक हो और जीवन भर उनका मार्गदर्शन करना। माता पिता बच्चे का रिश्ता एक अनोखा बंधन है जो एक वयस्क और उनके बच्चे के बीच मौजूद होता है। जहाँ एक वयस्क अपने बच्चे की जरूरत की देखभाल करने और उनके वयस्क होने पर मार्गदर्शन प्रदान करने की जिम्मेदारी लेता है। एक अच्छा माता पिता बच्चे के रिश्ते या जहाँ बच्चा प्यार, स्वीकार और सुरक्षित महसूस करता है, एक अच्छे माता पिता वो होता है जो बच्चों की भावनाओं को सुनता है, अपने बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता है और शारीरिक दंड भी भयानात्मक शोषण नहीं करता है। आदर्श रूप से वो बच्चे को तलाशने की विकसित होने के लिए एक सुरक्षित आश्रम प्रदान करते हैं। वे माता पिता को बिना शर्त समर्थन, मार्गदर्शन, अनुशासन और प्रोत्साहन के माध्यम से सिखाने और प्यार दिखाने का अवसर भी प्रदान करता है। माता पिता बच्चे के रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वो प्यार और विश्वास है जो माता पिता का अपने बच्चों के लिए होता है। यही चीजें उन्हें जिम्मेदार वयस्कों के रूप में विकसित होने में मदद करती है जो बड़े होकर अच्छे नागरिक बनेंगे। बदलते दौर में पारिवारिक रिश्ते काफी कमजोर होने लगे हैं। अमूमन लोग इसके पीछे तरह तरह की वजह बताते हैं, लेकिन रिश्ते के कमजोर होने के पीछे एक मुख्य कारण होता है आपसी कम्युनिकेशन की कमी। दरअसल आज के

समय में हर कोई अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए, अपने सबसे करीबी रिश्ते को समय दे नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण न तो वह एक दूसरे की समस्याएं व मन में चल रही परेशानियों को समझ पाते हैं और ना ही साथ में वक्त बिताने से मिलने वाली खुशी का एहसास हो पाता है। इतना ही नहीं, आपसी कम्युनिकेशन की कमी के कारण आपस में गलतफहमियां पैदा होती है और इससे भी रिश्ते कमजोर होकर बिखरने लग जाते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि फैमिली कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि जब हर कोई अपने काम में इतना व्यस्त है, तो ऐसे में फैमिली कम्युनिकेशन को बेहतर किस तरह बनाया जाए। इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप कुछ छोटे छोटे टिप्स बनाकर ऐसे बेहद आसानी से कर सकते हैं। हो सकता है घर के हर सदस्यों के काम करने का समय अलग है, ऐसे में हर किसी के लिए एक साथ समय निकाल पाना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए आप अपने घर में एक नियम तय कर सकते हैं, जिसमें दिन के 3 मील में से कम एक मील साथ खाएं। इससे आप सभी

0: कुछ छोटे छोटे टिप्स बनाकर ऐसे बेहद आसानी से कर सकते हैं। हो सकता है घर के हर सदस्यों के काम करने का समय अलग है, ऐसे में हर किसी के लिए एक साथ समय निकाल पाना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए आप अपने घर में एक नियम तय कर सकते हैं, जिसमें दिन के 3 मील में से कम एक मील साथ खाएं। इससे आप सभी कुछ वक्त साथ बिताने और फैमिली कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगा। बच्चे की देखरेख करते हुए माता पिता भी काफी कुछ सीखते हैं। भले ही आप अपने बच्चे को कितना भी प्यार करते हो या फिर अपने उसे सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश की हो, लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन के दौरान गलतियां करते हैं तो इससे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाने में एक ब्रिज की तरह काम करती है। अगर ब्रिज कमजोर होता है, ऐसे में रिश्ते अधूरे ही रह जाते हैं। इसीलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि माता पिता अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर लगातार काम करें। आप भले ही कितने अच्छे या मॉडर्न पेरेंट हो, लेकिन अगर आप कुछ कम्युनिकेशन मिस्टेक्स करते हैं तो इसका इफेक्ट बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। वन साइडेड कम्युनिकेशन इज अ मिस्टेक, जिसे अधिकतर पेरेंट्स बार बार दोहराते हैं। अमूमन पेरेंट्स अपनी बात तो बच्चे से कह देते हैं, लेकिन अगर बच्चा कुछ कहना चाहता है तो उसकी सुनते ही नहीं। कई बार हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं या फिर इसे डांट कर चुप कर देते हैं। ऐसा करने से बच्चों को अपने ही घर में काफी अकेला महसूस करने लगता है। कई बार पेरेंट्स जब बच्चे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत अजीब जजमेंटल हो जाते हैं। टिप्पणियों से बच्चे आलोचना महसूस करेंगे, ऐसे में वो प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और इससे बहस शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, कभी कभी बच्चा ये भी सोचने लगता है कि पेरेंट्स उसके बारे में गलत ही सोचते हैं, ऐसे में वो और भी ज्यादा गलत हरकत करना शुरू कर देगा। एक पेरेंट्स के रूप में आपको कभी भी अपने बच्चे से या फिर बच्चे के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये देखा जाता है कि जब कभी बच्चा जिद करता है तो पेरेंट्स उसे शांत करने के लिए झूठा वादा करते हैं, बाद में मुकर जाते हैं, जिससे बच्चे को काफी बुरा लगता है। इतना ही नहीं, इस तरह आप बच्चे के सामने एक गलत उदाहरण भी पेश कर रहे हैं। इससे बच्चे को लगता है कि किसी भी मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने के लिए झूठ बोलना सही है। धीरे धीरे बच्चा हर छोटी छोटी बात पर झूठ बोलना शुरू कर देता है। अक्सर अपने पेरेंट्स से वह बॉन्डिंग नहीं बन पाती है जो वास्तव में उसके बीच होना चाहिए। लगातार बच्चे को ब्लेम करने से उसके मन में अपने पेरेंट्स के लिए एक नेगेटिव इमेज बनती है। कई बार जब पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ समझाना चाहते हैं तो वो वास्तव में उन्हें एक लंबा लेक्चर देते हैं, जिसमें कई बातों को एक साथ शामिल करते हैं। आप यकीनन बच्चों को कुछ ऐसा समझाना चाह रहे हो, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि बच्चा अभी इतना मैच्योर नहीं है, वह आपकी गहराई समझ नहीं पा सकता है। इसीलिए आपको घुमा फिरा के बात करने से बचना चाहिए। बेहतर होगा कि आप उससे एक बारे में एक ही विषय पर बात करें। अगर आप इसे सीधे तौर पर अपनी बात नहीं समझा सकते हैं तो ऐसे में आप उसे एक कहानी के जरिए अपनी बात सिखा सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा कम्युनिकेशन मिस्टेक है जिसे हर पेरेंट को बचना चाहिए। स्पष्ट वशिष्ठ रहे और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करे। दयालु भाषा का प्रयोग आपके बच्चों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करने में मदद करता है। याद रखें, बातचीत से आपके नन्हे मुन्ने को सम्मान और प्यार का एहसास होना चाहिए। इसी के साथ ही आज का लम्हे प्रोग्राम यही खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपने आरजे चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।
1: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की तीसरी कड़ी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रमों का विवरण। पहले लीजिए सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में।

संध्या 7:05 पर आप सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं का समय रहेगा शाम 7:15। संध्या 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया। युवाणी कार्यक्रम आप सुन पाएंगे संध्या 7:30 पर, जिसमें कार्यक्रम होगा हेलो फ्रेंड्स फोन इन प्रोग्राम, विषय होगा कृष्ण जन्मोत्सव। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिए रात्रि 8:00। रोजगार समाचार व गौरवगान प्रसारित होगा रात्रि 8:30 पर, और रात्रि 10:00 विविध भारती मुंबई से प्रसारित होगा प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेश से आते हैं। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारण होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल हमारी पहली सभा की शुरुआत होगी प्रातः 5:25 पर। प्रातः 5:30 पर अनमोल विचार तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। एग्री टिप्स का समय रहेगा प्रातः 5:55, जिसमें आप पशुओं का उत्तम आहार के बारे में सुनेंगे। सवेरे 6:10 पर आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन पाएंगे। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा बच्चे शीर्षक पर सवेरे 6:15 पर। सवेरे 6:30 पर रामचरित मानस गान। वतन के गीत सुनिए 6:40 पर। सवेरे 6:50 पर मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। जन सूचनाएं सवेरे 7:00। प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे 7:05 पर। सवेरे 7:15 पर विविध भारती मुंबई से सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। वही प्राइमरी चैनल पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा देश रागिनी। सवेरे 7:30 पर हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम होगा हेलो डॉक्टर, विषय रहेगा मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और सहयोग, तथा विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कुशाल कुमार बैद्य। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 8:30 पर आप उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को सुनेंगे। फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने का आनंद लीजिए सवेरे 9:00। सवेरे 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में MS शीला का कर्नाटक शैली में गायन आप सुन पाएंगे। कशिश कार्यक्रम सुना जा सकता है सवेरे 10:00। दिन के 11:00 प्रसारित किया जाएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। कल दिन के 11:25 पर माननीय भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। इस समारोह का सीधा प्रसारण दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा दिन के 11:25 पर। दोपहर 12:00 सुनिए तेलुगु कार्यक्रम। मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा 12:30। दोपहर 1:30 पर सुनिए सुगम संगीत। व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम का समय रहेगा दोपहर 1:30। दोपहर 2:30 पर प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा की समाप्ति होगी, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारे स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत आप सुन पाएंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक 2:30 पर। दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम होगा सैनिकों के लिए। हमारी दूसरी सभा की शुरुआत होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम से। शाम 4:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की चौथी कड़ी। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा शाम 4:40 पर। शाम 4:45 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा बहारों की शाम का। तेलुगु कार्यक्रम का समय रहेगा 5:00। 5:30 पर सुनिए बांग्ला कार्यक्रम। किसानवाणी कार्यक्रम शाम 6:00 ज्ञान संस्कार और भविष्य के शिल्पकार शिक्षक विषय पर बातचीत सुनवाई जाएगी। आमने सामने कार्यक्रम का समय रहेगा 6:30। शाम 6:45 पर आप सुन पाएंगे झलकी, और शाम 7:05 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। मौसम की जानकारी, जलानों का यात्रा कार्यक्रम, वर्जन सूचनाएं 7:15 पर। फिल्मी गीतों से सजग कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का समय रहेगा 7:20। युवाणी के तहत संध्या 7:30 पर कार्यक्रम होगा ऐसा भी होता है। चित्रपट संगीत रात्रि 8:00। रात्रि 8:30 पर रोजगार समाचार व गौरव गान प्रसारित किया जाएगा, और रात्रि 10:00 विविध भारती मुंबई से आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। और रात्रि 10:00 आप अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज व कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। इस समय संध्या के 7:00 हैं। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, कल सवेरे 7:30 पर हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम होगा हेलो डॉक्टर।

विषय होगा मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और सहयोग तथा विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कुशाल कुमार वैद्य। कल एग्रीटिप्स कार्यक्रम का समय रहेगा प्रातः 5:55 जिसमें आप पशुओं का उत्तम आहार के बारे में सुनेंगे। इंद्रधनुष कार्यक्रम कल केंद्रित होगा बच्चे शीर्षक पर सवेरे 6:15।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 8:30 पर आप उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को सुनेंगे। फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तहराने सुहाने का आनंद लीजिए सवेरे 9:00। सवेरे 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में MS शीला का कर्नाटक शैली में गायन आप सुन पाएंगे। कशिश कार्यक्रम सुना जा सकता है सवेरे 10:00। दिन के 11:00 कल प्रसारित होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, कल दिन के 11:25 पर माननीय भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस समारोह का सीधा प्रसारण दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा 11:25 पर।

कल हमारी दूसरी सभा की शुरुआत होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम से। किसानवाणी कार्यक्रम में आप शाम 6 बजे ज्ञान, संस्कार और भविष्य के शिल्पकार शिक्षक विषय पर बातचीत सुन पाएंगे।

श्रोताओं, कल रात्रि 10 बजे विविध भारती मुंबई से आप प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत सुन पाएंगे।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। कुछ ही पलों के बाद यानी संध्या 7:05 पर आप सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। इस अंतराल के बाद
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GSLV-F17 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी, देश के लिए इसे गर्व का क्षण बताया।

ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज नई दिल्ली में शुरू हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। पूरे देश के साथ द्वीप समूह में भी आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और खेल और युवा मामले निदेशालय द्वारा नॉर्थ बे में मिनी मैराथन का आयोजन किया जाएगा।

सांध्य समाचारों के साथ मैं के जगदीश्वरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसएलवी F-17 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी और इस शानदार उपलब्धि की सराहना करते हुए इसे देश के लिए गर्व का क्षण बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि EOS-05 ले जा रहे जीएसएलवी F-17 जो जियो सिंक्रोनस कक्षा से भारत का पहला इमेजिंग सैटेलाइट है का सफल प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को प्रतिबिंबित करता है। श्री मोदी ने कहा कि इसरो और भारतीय उद्योग के बीच बढ़ती साझेदारी अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ताकत और विस्तार दे रही है, जिससे पूरे अंतरिक्ष इकोसिस्टम में भारत की क्षमताएं बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसरो और भारतीय उद्योग के बीच बढ़ती साझेदारी हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ताकत और विस्तार दे रही है, जिससे पूरे अंतरिक्ष इकोसिस्टम में भारत की क्षमताएं बढ़ रही हैं। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज नई दिल्ली में शुरू हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। मंच के दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। यह 3 दिवसीय मंच न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया। अभियान के दौरान 575 से अधिक प्राथमिकी भी दर्ज की गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार यह अभियान 12 जून से 31 अगस्त तक चलाया गया। आयोग ने राज्य सरकारों, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए काम किया। साथ ही बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया गया। अनिंस में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए MBBS में प्रवेश के लिए दूसरे चरण का परामर्श 8 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों से सुबह 9 बजे कार्बनस्कोप स्थित अनिंस के न्यू कैंपस में उपस्थित होने को कहा गया है। पात्र उम्मीदवारों की सूची अनिंस की आधिकारिक वेबसाइट और कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया गया है। उम्मीदवारों को परामर्श के समय सत्यापन के लिए सभी आवश्यक मूल दस्तावेज और प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज भी साथ लाना होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, कृष्ण जन्माष्टमी और मिनी मैराथन। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। पूरे देश के साथ द्वीप समूह में भी आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा भाव और भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। द्वीपों के सभी मंदिरों में विशेष रोशनियां की गई हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। इस अवसर पर विभिन्न मंदिरों में नृत्य, संगीत, भजन व विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताएं भी

0: आयोजित की जा रही है। खेल और युवा मामले निदेशालय, शिक्षा निदेशालय और सूचना प्रचार और पर्यटन निदेशालय के सहयोग से नॉर्थ बे में पर्यटन कार्यक्रम कैलेंडर 2026-27 के तहत मिनी मैराथन का आयोजन करेगा। पुरुषों और महिलाओं के लिए 10 किलोमीटर ओपन दौड़ का आयोजन 12 सितंबर को सुबह 6 बजे से किया जाएगा। यह दौड़ चुन्नाभट्टा से शुरू होकर नॉर्थ बे तट होते हुए वापस चुन्नाभट्टा पर सम्पन्न होगी। इस मैराथन में रक्षाकर्मी और द्वीपों के आम नागरिक भाग ले सकते हैं। इसके अलावा सभी कॉलेजों, स्कूलों, संगठनों, संस्थानों और आम जनता से भी कहा गया है कि वे प्रत्येक संस्थान से कम 50 छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करें। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कोलकाता बेंच के उप रजिस्ट्रार द्वारा सूचित किया गया है कि 7 से 18 सितंबर तक पोर्ट ब्लेयर में सर्किट बैठक आयोजित की जाएगी। जिन विभागों में कैट मामले चल रहे हैं उनसे कहा गया है कि वे संबंधित मामलों के दस्तावेजों के साथ सरकारी वकील से संपर्क कर विस्तृत जानकारी दें ताकि मामलों की सुनवाई की जा सके। इस दौरान नए आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। विभागाध्यक्षों से सभी नोडल अधिकारियों को सुनवाई की तारीख पर संबंधित दस्तावेजों के साथ न्यायाधिकरण में उपस्थित रहने की सलाह दी गई है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी तथा डी परीक्षा का आयोजन 8 सितंबर से 12 सितंबर तक किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के ई प्रवेश पत्र निर्धारित परीक्षा तिथि से पहले आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। शिक्षक दिवस समारोह के एक भाग के रूप में आज भातुबस्ती स्कूल मैदान में पुरुषों और महिलाओं के लिए सीआरसी स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट और रस्सा कशी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान के उप शिक्षा अधिकारी ज्ञानशील दुबे मुख्य अतिथि थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि समुदाय की सक्रिय भागीदारी, उत्साहपूर्ण सहभागिता और शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों के बीच खेल और खेल भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। वॉलीबॉल टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग में मोहनपुरा स्कूल ने ग्यारहचरमा स्कूल को हराया, वहीं महिला वर्ग में मॉडल स्कूल अबडीन ने मंगलुटान स्कूल को हराया। रस्साकशी पुरुष वर्ग में मॉडल स्कूल अबडीन ने मोहनपुरा स्कूल को पराजित किया, वहीं महिला वर्ग में मॉडल स्कूल अबडीन ने मोहनपुरा स्कूल को हराया। कार्यक्रम के दौरान विजेता और उपविजेता टीमों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन पर ट्रॉफियां और पदक वितरित किए गए। महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर में इतिहास, कंप्यूटर विज्ञान और खाद्य विज्ञान विषयों में संसाधन व्यक्ति की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार कल सुबह 10 बजे महाविद्यालय के प्राचार्य के कार्यालय में आयोजित किए जाएंगे। संबंधित उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे परिवर्तित तिथि के अनुसार साक्षात्कार में उपस्थित हों। पर्यावरण एवं वन विभाग में वन रेंजर के पद पर नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों का पुनः सत्यापन 7 सितंबर को किया जाएगा। संबंधित उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक वन सदन स्थित प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय की समिति के समक्ष अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित रहें। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GSLV-F17 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी, देश के लिए इसे गर्व का क्षण बताया। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज नई दिल्ली में शुरू हो गया है, सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। पूरे देश के साथ द्वीप समूह में भी आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और खेल और युवा मामले निदेशालय द्वारा नॉर्थ बे में मिनी मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए मौसम, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं।

संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। ये थी मौसम का हाल। अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। कल यानी 5 सितंबर को सुबह 6 बजे MV बम्बुका श्री विजयपुरम से रंगत के लिए रवाना होगा। यह जलयान स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत पहुंचेगा। इसकी वापसी उसी दिन दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कमोटा कल शनिवार 5 तारीख को सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा। इसकी वापसी यात्रा उसी दिन सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। स्वराजदीप के लिए शनिवार 5 तारीख को सुबह 6:15 पर MV स्टेट आइलैंड श्री विजयपुरम से रवाना होगा। यह जलयान सुबह 8:45 पर स्वराजदीप से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा आरम्भ करेगा। MV बाराटान 5 सितंबर को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से रंगत के लिए रवाना होगा। रास्ते में शहीद द्वीप, स्वराजदीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए ये जलयान रंगत पहुंचेगा। अगले दिन 6 तारीख को सुबह 7 बजे इस जलयान की वापसी रंगत से होगी और इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगी। MV रंगत कल यानी 5 तारीख को श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए 11 बजे प्रस्थान करेगा। दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराजदीप के लिए रवाना होगा तथा इसके बाद दोपहर 1:30 पर स्वराजदीप से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा आरंभ करेगा। MV कमोटा श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए कल दोपहर 2:30 पर शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा। शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से इसकी वापसी यात्रा श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानीचंगा कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराजदीप के लिए सुबह 5:30 पर स्वराजदीप शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे।

पहले सुनिए मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की

अब सुनिए जन सूचनाएं। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने भूमि अतिक्रमण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। प्रशासन ने क्षेत्र के ऐसे कई स्थानों से गैरकानूनी रूप से किए गए भूमि कब्जे को मुक्त कराया है। आम लोगों से भी इस मामले में सहयोग की अपील की गई है। सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण की सूचना इन टेलीफोन नंबर पर दी जा सकती है 0319224017, 0319223888 या 1070। सूचना इस व्हाट्सएप नंबर पर भी दी जा सकती है 9531888844। प्रशासन द्वारा सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी। जन सूचनाएं समाप्त हुई।

श्रोताओं, अभी आप मौसम जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:20 हुए हैं। अब पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के एक गीत के साथ, जिसे आवाजें दी है श्रेया घोषाल, उदित नारायण और विशाल ददलानी ने। संगीत विशाल शेखर का है व धुन बनाई है अमिता दत्त गुप्तन ने।

श्रोताओं, आइए अगला गीत सुनते हैं राधा संगम फिल्म से। इस गीत को स्वर दिया है लता मंगेशकर और शबीर कुमार ने, बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने व संगीत अनुमलिक का है।

राधा संगम फिल्म के इस गीत के साथ ही दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युवाणी।

युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के दिन कृष्ण जन्मोत्सव हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पवित्र त्योहार मनाया जाता है। इसे जन्माष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। उनके माता पिता देवकी और वासुदेव थे। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस के अत्याचारों से लोगों को मुक्त कराने और धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म लिया था। उनके जन्म की खुशी में मंदिरों और घरों को सुंदर ढंग से सजाया जाता है। भक्तजन उपवास रखते हैं और रात में 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन और पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, कई स्थानों पर दही हांडी का आयोजन भी किया जाता है। बच्चे और बड़े उत्साह से इसमें भाग लेते हैं। जन्माष्टमी हमें श्री कृष्ण के प्रेम, करुणा, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह त्योहार हमारे जीवन में खुशी, भक्ति और सद्भाव का संदेश लेकर आता है। इसलिए आप सभी श्रोताओं को कृष्ण जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: दोस्तों, आज शुक्रवार है और हम आपके लिए लेकर आए हैं फोन इन पर आधारित कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आप भी हमसे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमें कॉल करें गुरुवार शाम 4 बजे से 4:30 तक इन नंबरों पर 2323-6232-558। हमारा स्टडी कोड है 0312। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो फ्रेंड।
1: हाँ नमस्ते।
0: नमस्कार, आपका नाम, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़
0: जी। नमस्कार योगेश जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है
0: जी। तो बताइए, आज की शाम कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म संजोग से सुनवा देंगे, का नंदलाला ब्रिज का उजाला है।
0: बहुत ही प्यारा गीत है। और वैसे आप करते क्या हैं?
1: खेती बाड़ी का है मूल काम
0: जी। तो अभी कौन सी फसल लगाई है आपने?
1: अभी तो धान है सभी खेतों में
0: जी। जी, आज के दिन ये गीत किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे आप?
1: कुछ मित्र है हमारे रेडियो के, लोकेंद्र वर्मा जी है, श्रीपाल गोयल जी है, दिलीप पाहुजा जी है, काराम जी हैं और धीरज जी है और सभी साथ।
0: तो योगेश जी, हमें आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। चलिए, हम आपको आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो फ्रेंड।
1: जी नमस्ते
0: नमस्कार, आपका नाम, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी। मैडम संतोष कुमार राव बात कर रहा था, उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: नमस्कार संतोष जी, कैसे हैं आप?
1: मैडम बहुत अच्छे हैं, लगातार युवावाणी कार्यक्रम और श्री विजयपुरम से प्रसारित सभी कार्यक्रमों का आनंद उठाते हैं। बहुत ही शालीनता और बेहतरीन प्रस्तुति होती है मैडम जी आपकी।
0: जी हमें बहुत खुशी हुई कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, और ऐसे ही आगे सुनते रहिए। तो बताइए, आज की शाम कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल मैम, आपको और सुनने वाले सभी साथियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं रहेंगी। और एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, फिल्म का नाम है बाहुबली 2
0: जी,
1: और बहुत ही प्यारा सा गीत है मैडम, मोर बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया।
0: तो वैसे संतोष जी, आज के दिन ये गीत आप किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल मैडम, ये गीत मैं सुनवाना चाहता हूँ, मेरी प्यारी सी दीदी है सप्तमी विष्णु कुंडम जी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जुड़ती है, उनको यह गाना डेडिकेट रहेगा। सम्मानीय मांगीलाल चंदेल जी हैं गुना सुनौती मध्य प्रदेश के श्रोता, और राम बाबू शर्मा जी हैं भोपाल मध्य प्रदेश के श्रोता, गजराज सिंह लोधी जी हैं और गोविंद वैष्णव जी हैं राजगढ़ मध्य प्रदेश
0: जी। तो चलिए संतोष जी, आपको आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो फ्रेंड,
1: हाय मैडम, नमस्ते।
0: नमस्कार। आपका नाम, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: इंदौर से अनिल कौशाली
0: जी अनिल जी, कैसे हैं आप?
1: इस समय आपसे बात कर रहे हैं।
0: जी तो बताइए, आज की शाम कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है सपने साजन का
0: जी,
1: और आवाज है कुमार सानू, अलका याग्निक और साक्षो की, और गीत है मेरा पागल जिया ना माने।
0: जी जी तो वैसे ये गीत आज के दिन किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: देखिए, हम आता तो आकाशवाणी विजयपुरम पूरी टीम के साथ सुनना है।
0: जी अनिल जी, तो चलिए हम आपको आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुँचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 1 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दें। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ फोन इन पर आधारित कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त सबीना बानो को इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ

श्रोताओं, अभी आप युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो फ्रेंड्स फोन इन प्रोग्राम सुन रहे थे। विषय था कृष्ण जन्मोत्सव। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 8 बजे हैं। अब आरंभ होता है हमारा कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

नमस्कार श्रोताओं, चित्रपट संगीत के इस सुरीले सफर में आपका हार्दिक स्वागत है। हर गीत अपने साथ कुछ यादें, कुछ एहसास और कुछ खूबसूरत भावनाएं भरे होते हैं। तो इसी भावना के साथ आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सुनते हैं पहला गीत खुद्दार फिल्म से। इस गीत को अपनी आवाज़ें दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर और साथियों ने। संगीत राजेश रोशन का है तथा

श्रोताओं आइए चित्रपट संगीत में अगला गीत सुनते हैं बोल राधा बोल फिल्म से। इस गीत को अपनी आवाज़ें दी है अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति ने। बोल समीर के हैं व धुन बनाई है आनंद मिलन ने।

0: श्रोताओं, चित्रपट संगीत यूं ही जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद।
1: Attention, national recognition for your hard work. For those making outstanding contributions to the animal husbandry and dairy sector and embracing innovative practices, the Department of Animal Husbandry and Dairying, Government of India, invites nominations for the prestigious National Gopal Ratna Awards 2026. The awards recognize excellence in three categories: Best Dairy Farmer, Best Dairy Cooperative Society, Best Artificial Insemination Technician. And there is more. Special provisions have been made for the Northeastern region and Himalayan states. Nomination period 10th August to 10th September 2026. So what are you waiting for? Apply today at www.awards.gov.in or visit your nearest CSC center to submit your nomination. National Gopal Ratna Awards 2026, issued in public interest by the Department of Animal Husbandry and Dairying, Government of India. ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओं, चित्रपट संगीत में आपका पुनः स्वागत है। आइए अगला गीत सुनते हैं मुगले आजम फिल्म से।

श्रोताओं, चित्रपट संगीत में अगला गीत सुनते हैं मीरा का मोहन फिल्म से। इस गीत को अपनी आवाज़ें दी है अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू और साथियों ने। बोल इंदिवर के हैं तथा धुन बनाई है अरुण पौडवाल ने।

0: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, आइए अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म का नाम है शागिर्द। इस

श्रोताओं, शागिर्द फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का हमारा चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए रोजगार समाचार। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन के आधार पर योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती के अंतर्गत ग्रुप ए के 2 पद पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक सलाहकार संचार के 1-1 पद रिक्त है। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी तथा सहायक सलाहकार संचार पदों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर 11 के अनुसार होगा। नियुक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली में की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, रक्षा बल अथवा अन्य सरकारी विभाग के समकक्ष पद पर नियमित रूप से कार्यरत हो अथवा वेतन स्तर

9 में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हो। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी अथवा दूरसंचार में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। वहीं सहायक सलाहकार संचार पद के लिए उपरोक्त विषयों में स्नातक डिग्री या सक्षम योग्यता के साथ रक्षा बलों, केंद्रीय पुलिस संगठन, पुलिस वायरलेस एवं संचार अथवा दूरसंचार परियोजनाओं के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है। दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर उचित माध्यम से अवसर सचिव प्रशासन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण A1 सफदरंज एनक्लेव नई दिल्ली 110029 के पते पर भेज सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने एसी विज्ञापन के संदर्भ में पूरी आवेदन किया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन भेजना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 1 अगस्त 2026 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देख सकते हैं। रोजगार समाचार अब यहीं संपन्न होता है। अब सुनिए गौरव गान।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

श्रोताओं, अभी आप गौरवगान सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता।

0: बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देश और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये शर्त रखी है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके न्यायिक अधिकारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की अनुमति मिलने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के योग्यता और प्रदर्शन मूल्यांकन से गुजरना होगा। न्यायालय ने इन राज्यों में इस वर्ष 31 मार्च को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारियों के लिए भी सीमित अवसर खोला ताकि वे न्यायिक सेवा में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यहाँ कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, Possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने

और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन।

0: सितंबर 2026 तक। तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है।
2: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
3: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
2: And recovery efforts in the country.
1: श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर और अधिक फॉरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। इसके बाद नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुवाकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, धाडिंग में 60 और तन्हू में 38 लोगों की मृत्यु हुई। काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान 2 और लोगों की मृत्यु हुई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वॉर्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने यह बात कही। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय वार्ता को संबोधित कर रहे थे। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अपलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि यह सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताएं दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज डिजिटल अरेस्ट के 3 बड़े मामलों में देश भर में कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र 6 के अंतर्गत 3 लोगों को हिरासत में लिया।
6: देश भर में लगातार बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए देश के 20 राज्यों में 89 स्थानों पर छानबीन का अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी। राजस्थान के जालसाज ने 7,67,00,000 रुपए, गुजरात के जालसाज ने 19,24,00,000 रुपए और राजस्थान के ही एक अन्य जालसाज ने 15,45,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की। एजेंसी ने डिजिटल अरेस्ट के संगठित

0: अपराध से निपटने का संकल्प भी दोहराया। यह ऐसी समस्या है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी देश भर के नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बताया है। अभिनव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
1: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज बडगाम जिले में एक आतंकी को मार गिराया। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्र में आतंकियों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अभियान शुरू किया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी से एक राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
2: द्वारका के जगत मंदिर में फल, दाल चावल, मिठाई और 56 भोग के खास प्रसाद के चढ़ावे के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर और पुलिस अधिकारियों ने भक्तों के लिए बैरिकेडिंग, सीसीटीवी सर्वेलेंस और ड्रोन मॉनिटरिंग जैसे इंतजाम किए हैं। डाकोर के राजा रणछोजी मंदिर में सजावट आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। दूसरी ओर अहमदाबाद के इस्कॉन और भारत के हरे कृष्ण मंदिर समेत कई कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर युवाओं ने खास रासलीला का आयोजन किया। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरलम में भी जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल से गणपत्यार मंदिर से लाल चौक तक शोभा यात्रा निकाली। कुलगाम के वेसु क्षेत्र में कश्मीरी पंडितों ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर रंगारंग झांकी और शोभा यात्रा निकाली। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है।
3: पटना, भोजपुर, भागलपुर और पश्चिम चंपारण समेत बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 9 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। प्रभावित परिवारों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैंप कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के साथ साथ राहत और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रूप और एंडर्स स्कारूप रासमुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यूर से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से तेज वर्षा हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Three-day BRICS Chief Justices Forum begins in New Delhi to deliberate upon contemporary issues concerning justice delivery and dispute resolution. Italian Prime Minister Giorgia Meloni thanks Prime Minister Narendra Modi for wishes, says India-Italy ties are stronger than ever. External Affairs Ministry says 166 Indian nationals rescued in flash floods hit Nepal so far. 275 Indian nationals remain missing. Flood situation in Bihar remains grim as all major rivers are in spate. Relief and rescue operations underway in affected areas. Festival of Janmashtami been celebrated with religious faith and fervour across the country. And in badminton, Indian duo of Sattvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty enters men's double semi-final of China Masters.

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमें आई है तेलंगाना चौटुपल से। इनके नाम है कस्तूरी, रामुडू, वुमु देवी, पृथ्वी और नारायण। ये सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये गीत सुनना चाहते हैं, तो आइए ये फिल्म का गीत हम सुनते हैं।

0: श्रोताओं, संदेश से आते हैं कार्यक्रम में। अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल

0: माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: श्रोताओं, संदेश से आते हैं कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं राधा और संगम फिल्म के गीत के साथ। ये फरमाइश हमें आई है राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से। ये है सिद्धार्थ गौंडे, अर्चना ताई, हीरामंड, प्रलय प्रसिद्धि और प्रतिमा गौंडे। तो आइए सभी को सुनवाते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमें आई है हिरन नगरी सेक्टर 4 उदयपुर से राहुल, रेनू, मोहित, नमिता, कार्तिक, शानू और संजीव व संपूर्ण यादव परिवार की ओर से। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये नगमा।

श्रोताओं, इस गीत की फरमाइश हमें आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। ये है पीएस नहावकार निर्मला विशाल मलाकपुर महाराष्ट्र से, नारायण इंगले सोपन तांडे और आशीष मुरेकर। तो चलिए सुनवाते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें आई है बन्ने बुजुर्ग पलेरा टिकमागढ़ मध्य प्रदेश से। ये हैं विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम व आशीष व संपूर्ण विश्वकर्मा परिवार। तो आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अंतिम नगमा इनकी पसंद का।

श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम संदेश आते हैं अब यही संपन्न होता है। आशा है आपकी पसंद के गीतों से सजा या संगीतमय प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अब सुनिए मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसी दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मछुआरों को लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। इस समय रात्रि के 10:30 और 18 सेकेंड हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती पर FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 14वीं तिथि तदनुसार 5 सितंबर सन 2026 इस समय सुबह के 5:28.40 हुए हैं। हमारी आज की पहली स्थानीय प्रसारण सेवा में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।